FM 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 मई सन 2026। सवेरे के ठीक 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने

0: जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं खुद पर विश्वास करो, सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम विवरण लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान होगा भाग 180। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम और शाम 6:45 पर सुनेगा संगीत सरिता। श्रृंखला होगी महिला रचनाकारों की बंदिशें कलाकार गायिका विदुषी कल्पना झोकरकर भाग 4। गायन सहभाग अनुजा झोकरकर, तबला यति भागवत और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनावणे, निवेदन ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। 7:00 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिए 7:30 से हमें राही प्यार के। 8:00 समाचार प्रभात 8:15 पर सुबह त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। 10:00 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। 11:00 रंग तरंग। 12:00 हिंदी समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर। 2:00 त्रिवेणी और 2:15 पर दोपहर समाचार। पर सदाबहार नगमे। 3:00 सखी सहेलियों के अंतर्गत सुनेगा शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग, साड़ियों का संसार, चिकन की साड़ियां कलाकारी और शब्द हमारे विचार आपके सामंजस्य व्यंजन होंगे, फलों के जायके। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान। इसके अंतर्गत सुने सुप्रसिद्ध रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। शाम 5:00 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:30 पर कार्यक्रम विवरण सुनिएगा झरोखा के अंतर्गत। शाम 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता। 7:00 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिए। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। 8:00 हवा महल में सुनिए नाटिका आराम बड़ी चीज है, लेखन शांति मेहरोत्रा का, निर्देशन रूपम नारायण पांडे का। 8:15 पर चित्रलोक। 8:45 पर समाचार संध्या। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। 10:00 छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 रंग तरंग।

आपको फिर से बता दें, 1 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुरीला सफर और 2 बजे त्रिवेणी। 9:30 पर सुबह और रात आज के फनकार कार्यक्रम सुनिएगा। ये केंद्रित होगा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। सुबह 10 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा। शाम 4 बजे आपको फिर से बता दें, पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुनिए सुप्रसिद्ध रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरापान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में ये आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल होते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें ये श्रृंखला लेकर हम फिर उपस्थित हैं। कल्पना जी, आज इस कड़ी में हम किस बात की चर्चा करने वाले हैं ये तो आप जानकारी दीजिएगा ही, लेकिन पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि महिलाओं ने किस तरह की बंदिशें रची और किस तरह की बंदिशों का समावेश किया, और एक प्रश्न और है साथ में कि उन्होंने क्या ध्रुपद और धमार भी रचा?
1: जी, कई महिलाओं ने अपने हिसाब से ध्रुपद, धमार, होरी
0: जी
1: और तराने अलग अलग प्रकार के, इस तरह के अलग अलग गीत प्रकारों को भी संगीतबद्ध किया है
0: जी।
1: क्योंकि उस समय का दौर कुछ अलग था। बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हूँ। महिलाओं का बाहर गाना बजाना
0: मुश्किल था,
1: नहीं के बराबर था। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ और जो सामाजिक जो कुरीतियां अलग होते गई और महिलाओं को स्वतंत्रता जैसे प्राप्त होने लगी, तो उनकी गायन शैली में अलग अलग रचनाओं का समावेश हुआ और उनको बाहर लोगों के सामने गाने की इजाजत जब मिली तब उनको अपने भावों को प्रकट करने और गायकी का ढंग अपने अलग से बताने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेज मिला, क्या कहते हैं, मंच मिला
0: जी।
1: और जिसके कारण वो अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार की बंदिशों के द्वारा करती गई
0: जी। तो गायन के कौन कौन से प्रकार उन्होंने रचे?
1: बहुत ज्यादा तो ध्रुपद धमार नहीं रचा है, लेकिन कुछ हद तक बंदिशें उसकी भी बनाई गई हैं। अधिकतर विलंबित द्रुत ख्याल तराने, इनका अधिकतर प्रचलन हुआ
0: जी,
1: रचनाओं का निर्माण हुआ। और ठुमरी, दादरे, होरी, चैती, कजरी, उपशास्त्रीय संगीत के इन प्रकारों को भी कई महिलाओं ने बहुत अच्छे सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं
0: जी। तो बताइए कि आज की इस कड़ी में किन रचनाकार की आप चर्चा करना चाहेंगी और कौन सा राग सम्मिलित करेंगी?
1: जी जी, आज की हमारी रचनाकार है डॉक्टर श्रीमती सुशीला पोहनकर जी
0: जी,
1: जो कि बहुत सुंदर रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। बहुत अच्छी उनकी गायकी थी, अत्यंत सुंदर भावपूर्ण बंदिशों का उन्होंने निर्माण किया है
0: जी।
1: तो सुशीला जी ने अपने पिता बालकृष्ण जोशी

0: जिनको बाबूराव जोशी कहते थे, उनसे उन्होंने संगीत की शिक्षा पाई। बाबूराव जी बहुत उत्तम हारमोनियम एवं ऑर्गन वादक भी थे। सुशीला जी ने पीएचडी भी हासिल की एवं जबलपुर महाविद्यालय में संगीत की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहकर और बाद में प्राचार्य पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। अनेक विद्यार्थियों को वो तालीम देती रही और बहुत सुंदर सुंदर बंदिशों का निर्माण किया
1: जी। और आपकी इन बातों से भी हमारे श्रोताओं को तालीम मिल रही है
0: जी।
1: तो बताइए अब कौन सा राग आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे?
0: आज उन्होंने बनाई हुई बंदिशों में से हम राग श्री में दो बंदिशें आपको सुनवाते हैं
1: जी। तो राग श्री किस समय गाया बजाया जाता है और क्या है इस राग का चलन
0: जी? श्री राग पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में गंधार एवं धैवत स्वर वर्जित है। इसकी जाति औडव संपूर्ण कही जाती है और इसका वादी ऋषभ है, संवादी पंचम है और गान समय इसका सूर्यास्त के समय का है। ऋषभ पंचम की संगति जो है बहुत ही मनोहारी लगती है
1: जी।
0: तो मैं अब आपको श्री राग का थोड़ा चलन बताती हूँ
1: जी। स्वागत है।

0: अब इसमें कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगी?
1: इसमें मध्यलय तीन ताल में एक बंदिश प्रस्तुत करती हूँ, जिसके बोल हैं, पत्तियां झर लागी शिशिर ऋतु की।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: और उसके बाद द्रुत एक ताल में एक बंदिश, आओ संजारे घर आओ।
0: वाह,

0: वाह कल्पना जी, आपने अपनी गायकी से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया और ऐसा सुंदर दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित हुआ। कितनी सुंदर बंदिश थी। और अब बताइए, इस कड़ी में अब क्या शामिल करेंगे?
1: अब मैं डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी ने बनाई हुई रचनाओं में से राग भूपाली में एक तराना प्रस्तुत करती हूँ
0: जी।
1: हालांकि मैंने भी उनसे शिक्षा प्राप्त की है, तो मैं चाहूंगी कि ये बहुत सुंदर तराना मैं आपके सामने पेश करूँ।

0: वाह, बहुत सुंदर तराना आपने प्रस्तुत किया। अब क्या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं?
1: अब मैं डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी की आवाज में, उन्होंने ही बनाई हुई राग देश में, एक बंदिश आपको सुनाऊंगी।

0: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग। संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: FM 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार अलवर। नमस्कार अलवर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज बात करेंगे गर्मियों में रखे खास ख्याल और मिशन लाइफ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के विषय पर। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक गीत।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे गर्मियों में रखे खास ख्याल और मिशन लाइफ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के विषय पर। तो श्रोताओं, गर्मियों में लू से बचाव और पशु पक्षियों की देखभाल बहुत ज़रूरी है, खासकर राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में, जब तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और शरीर का तापमान कंट्रोल नहीं हो पाता तो उसे लू लगना कहते हैं। लू लगने के बाद कुछ खास लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि तेज़ बुखार, 102 डिग्री से ज़्यादा बुखार हो, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी या जी मिचलाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, शरीर में कमज़ोरी, बेहोशी की हालत आदि, ये सभी लक्षण दिखे तो तुरंत ध्यान दें। लू लगने पर मरीज को सबसे पहले छाया या ठंडी जगह पर ले जाएं, शरीर को गीले कपड़े से पोंछें, पानी ORS का घोल या नींबू पानी दें और हालत गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। श्रोताओं, थोड़ी सी सावधानी रखकर हम लू से बच सकते हैं, जैसे कि घर से बाहर निकलते वक्त समय पर ध्यान दें, 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। गर्मियों में हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें, सिर पर टोपी, गमछा या दुपट्टा रखें, दिन में 3-4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। ORS घोल, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, कैरी की छाछ, कैरी का पाना आदि पीते रहें। ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना कम करें। कूलर पंखे से कमरे को ठंडा रखें। खिड़की पर पर्दे या गीले कपड़े लगाएं। इसके साथ ही एक बात का और खास ख्याल रखें कि AC को 24 से 26 डिग्री के तापमान पर ही चलाएं। रात के समय 26 से 27 डिग्री का तापमान रखें और स्लिप मोड यूज़ करें। बहुत कम तापमान पर AC ना चलाएं और पंखे के साथ AC को चलाएं, जिससे ठंडक बेहतर मिलेगी। लगातार 16-17 डिग्री के तापमान पर AC को चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण AC में कई बार ब्लास्ट हो जाते हैं। अगर आप AC को सही तापमान पर चलाते हैं तो उससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, साथ ही आपका जो बिजली का बिल आएगा वो भी कम आएगा। इस प्रकार आप ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक गीत सुनने का, तो लीजिए सुनते हैं ये गीत।

0: मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर एसटीडी कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युववाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।
1: श्रोताओं, गीत सुनने से पहले हम बात कर रहे थे कि लू से किस प्रकार बचा जा सकता है। गर्मियों के मौसम में आप अपने साथ साथ पशु पक्षियों का भी खास ख्याल रखें। अपने घर की छत पर, बालकनी में या फिर घर के आंगन में पशु पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखें। ये पानी आप प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें, इस बात का विशेष ख्याल रखें। साथ ही ये पानी आप रोज बदलें ताकि गंदे पानी से कोई बीमारी ना फैले। पक्षियों के लिए बाजरा, चावल, गेहूं आदि का दाना रखें। गाय कुत्तों को बचा हुआ साफ खाना दे सकते हैं। जानवरों के लिए पेड़ या शेड लगाकर छाया की व्यवस्था करें। अगर पालतू जानवर हैं तो उन्हें धूप से बचा कर रखें। शुद्ध प्लास्टिक के बर्तन में रखा पानी जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए मिट्टी या स्टील के बर्तन का उपयोग करें। और कहीं भी घायल या बीमार पशु पक्षी जानवर दिखे तो स्थानीय पशु सेवा संस्था से संपर्क करें। श्रोताओं, आप सुनते हैं एक और गीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, अलवर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका

श्रोताओ, कार्यक्रम में अब बात करते हैं मिशन लाइफ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के विषय पर। श्रोताओ, मिशन लाइफ भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसे भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया ताकि हर व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्यों से पृथ्वी को बचाने में योगदान दे सके। मिशन लाइफ एक वैश्विक पहल है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता से प्रेरित है। श्रोताओं, अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें तो हम पृथ्वी को बचाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं, जिसके लिए हमें पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के उपाय करने चाहिए, जैसे कि पानी और बिजली की बचत करें, इनके अनावश्यक उपयोग से बचें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े या जूट के बैग का प्रयोग करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, पेड़ पौधे लगाएं, निजी वाहनों का प्रयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कचरा प्रबंधन पर ध्यान दें, गीले और सूखे कचरे को अलग करें, रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग पर ध्यान दें, वस्तुओं को फेंकने की बजाय दोबारा उपयोग करें या किसी ज़रूरत

मंद को उपयोग के लिए दें। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाने चाहिए जो प्रकृति के अनुकूल हो। मिशन लाइफ एक ऐसा अभियान है जो हमें जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हम एक स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। चलते चलते कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने आपसे बात की मिशन लाइफ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के विषय पर। ऐसी ही जानकारी के लिए सुनते रहें नमस्कार अलवर कार्यक्रम, जो कि प्रत्येक सुबह 7 बजे आकाशवाणी अलवर के साइस्का चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो मिलते हैं

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना नागिन फिल्म से। आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। गीत के बोल लिखे थे वर्मा मलिक ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं यारा दिलदारा फिल्म से, उदित नारायण अनुराधा पोडवाल की आवाज में। गीत रचना है मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत है जतिन ललित का।

सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

श्रोताओ, ये गीत अभी आपने सुना थानेदार फिल्म से। आवाजें थी बप्पी लहरी, अनुराधा पोडवाल और साथियों की। गीत के बोल लिखे थे अनजान ने, संगीत था बप्पी लहरी का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण, सपना

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपने सुना स्त्री फिल्म से। आवाजें थी बादशाह, निकिता गांधी, सचिन जिगर की। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तोलम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है।

0: अटल जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
2: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
1: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान

0: कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
1: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य ₹10 बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना

0: सूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है। सवेरे के ठीक 8:15 हो रहे हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंकज उदास की गाई गजलें।

श्रोताओ, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गाई गजलें। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
3: और मैं हूँ आपका साथी अजीत। नमस्कार। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा से अधिक शक्तिशाली कोई और माध्यम नहीं है जिसने मानवता और पूरे विश्व का उपकार किया है। अच्छी शिक्षा ही हमें सही अर्थों में मानवता सिखाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। श्रोताओं, इस संदर्भ में मुझे महान भौतिक विज्ञानी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध कथन याद आता है। उन्होंने कहा था,
2: शिक्षा केवल कुछ तथ्यों को याद करना नहीं है, लेकिन ये मन और मस्तिष्क को नवाचारी ढंग से सोचने के लिए विकसित करना है।
3: जी, तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
3: और संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देश दीप दास।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी एवं अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में सुश्रुत के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ यमुना नदी के उद्गम और बकरवाल जनजाति के जीवन पर दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। भविष्य में भी ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की हमें आपसे अपेक्षा है।
2: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की।
2: कल हमने बुनियादी जानकारी ली थी सागर और महासागर की और इनके बीच के अंतर को जाना था। आज जानेंगे एक और रोचक बात। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को बताइए ना कि वो रोचक बात क्या है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे।
3: विमलेश जी, बहुत पहले इसी कार्यक्रम में मैंने अपना संस्मरण बताया था, आपको याद होगा
2: जी।
3: और वो ये था कि जब मैं पहली बार चेन्नई के समुद्री तट मरीना बीच पर गया था
2: जी,
3: तो समुद्र की विशालता को देखकर मैं चकित रह गया था। लेकिन आपको याद तो जरूर होगा कि मैंने वहाँ क्या किया था सबसे पहले।
2: अजीत जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने सबसे पहले समुद्र के पानी को चखा था।
3: जी, आपको बिल्कुल याद है, पाठ्य पुस्तकों में तो पढ़ा था कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया था।
2: तो फिर क्यों ना आज चर्चा की जाए कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है।
3: अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली विमलेश जी। तो फिर आइए सबसे पहले जाने की शुरुआत कहाँ से होती है।
2: शुरुआत होती है वर्षा से। वर्षा का पानी जब धरती पर गिरता है, ये पानी मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है
3: जी।
2: मिट्टी और चट्टानों में कई प्रकार के खनिज होते हैं जो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं। मुख्य खनिज है सोडियम क्लोराइड।
3: जी जी, नमक का रासायनिक नाम भी सोडियम क्लोराइड ही तो है।
2: बिल्कुल। फिर होता ये है कि वर्षा का जल या भूमिगत झरनों का जल बहता हुआ नदियों में मिल जाता है। नदियाँ इन घुले हुए खनिजों को बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। सैकड़ों नदियाँ यदि अपवाद छोड़ दें तो समुद्र में ही मिलती हैं।
3: तो फिर इस तरह हर दिन, हर घंटे, हर मिनट थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक समुद्र में जमा होता रहता है।
2: बिल्कुल।
3: अब विमलेश जी, हम बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कोई एक दो दिनों की तो होती नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है ना।
2: जी जी जी, फिर तो जाहिर है कि लाखों करोड़ों वर्षों में नदियों ने कितना नमक समुद्र में जमा कर दिया होगा। चलिए अब एक दूसरे आयाम को समझते हैं। दूसरा आयाम है वाष्पीकरण।
3: तो दूसरे आयाम को जरा आप ही विस्तार से समझाइए।
2: जी जरूर। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक नहीं उड़ता, नमक वहीं रह जाता है। एक उदाहरण देती हूँ
3: जी।
2: यदि आप किसी बर्तन के पानी में नमक घोलकर उस पानी को गर्म करें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक वहीं रह जाएगा। यही प्रक्रिया समुद्र में भी होती है।
3: विमलेश जी, श्रोताओं को बता दें कि एक और भी बहुत बड़ा कारण है
2: जी
3: समुद्र के पानी के खारा होने का।
2: बताइए।
3: और वो ये है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और पानी के अन्य स्रोत भी तो होते हैं
2: जी,
3: जो पानी में नमक मिलाते हैं। यानी नमक सिर्फ नदियों से ही नहीं लेकिन समुद्र के अंदर से भी आता है
2: जी। ये बात तो है, लेकिन अजीत जी मेरे मन में एक और प्रश्न है, वो ये है

0: कि इस प्रकार तो नमक बढ़ता ही रहेगा, फिर पानी कहाँ बचेगा, वो तो नमक का गाढ़ा घोल बन जाएगा। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ।
1: वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने विमलेश जी। यही तो कमाल है प्रकृति का। दरअसल होता यह है कि कुछ नमक समुद्री जीव उपयोग कर लेते हैं, जैसे कोरल, और कुछ नमक समुद्र की तलहटी में ही रह जाता
0: जी।
1: है। तभी तो समुद्र में नमक की मात्रा में संतुलन बना रहता है।
0: जी सचमुच अद्भुत है प्रकृति। इस संतुलन को आंकड़ों में ऐसे समझना चाहिए कि औसतन समुद्र के पानी में 3.5% नमक होता है, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। तो श्रोताओ, अब ये भी जानिए, श्रृंखला में आज की चर्चा हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है द स्मार्ट मंकी।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से एक बंदर की मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है, और विशेषकर कूड़े के समुचित निपटान की चर्चा की गई है।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. Have you seen people throwing packets or bottles in the park or on the road? Talk about it. After having biscuits, what do you do with the wrapper? Is there a dustbin in your school? Do you know where it is?
1: The Smart Monkey. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Artist, Farhan Ali Naqvi. Recorded by Sangeet Kumar. Assistance in production, Jagabandhu Jana. Directed and produced by Ajit Horo.

0: तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: राग देसी।
1: राग रस बरसे श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में राग देसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग देसी की व्युत्पत्ति, थाट, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में।

राग देसी। राग देसी की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद अर्थात कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी कभी इसमें कोमल धैवत अर्थात कोमल ध का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके आरोह में गंधार और धैवत यानी ग और ध ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर पंचम यानी प है और संवादी स्वर ऋषभ यानी रे है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग देसी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग देसी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग देसी की स्वर मालिका की स्थाई

अभी आपने राग देसी की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है आजादी का ध्वज लहराया। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की

0: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
4: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर एसटीडी कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले। राजस्थान सहित 6 राज्यों के लिए 23,437 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंग नहर शताब्दी समारोह को जन जागरूकता अभियान बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए चयनित जिलों में आधुनिक बस पोर्ट विकसित किए जाएंगे। और RGHS योजना में पिछले 2 सालों में अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर्स को 7,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत करीब 5,600 करोड़ रुपए खर्च कर देश में कपास क्षेत्र की बाधाओं, घटती पैदावार और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर किया जाएगा। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी दी जाएगी। वहीं गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। साथ ही लगभग 23,437 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें नागदा मथुरा तीसरी और चौथी रेल लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं से राजस्थान सहित 6 जो कि 19 जिलों में रेल नेटवर्क में 901 किलोमीटर तक की बढ़ोतरी होगी। नागदा मथुरा रेल परियोजना से रणथंबोर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से रेल संपर्क में सुधार होगा। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंग नहर शताब्दी समारोह को लेकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने शताब्दी समारोह को जन जागरूकता अभियान बनाने के निर्देश दिए। इस समारोह श्रृंखला के तहत नहर क्षेत्र की 12 अनाज मंडियों में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम होंगे। इस दौरान किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीक, ड्रिप सिस्टम और जल संरक्षण विषयों पर विशेषज्ञों की ओर से जानकारी दी जाएगी। साथ ही साइकिल रैली, नुक्कड़ नाटकों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को समारोह से जोड़ा जाएगा। ये समारोह इस साल 26 अक्टूबर से अगले साल 26 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बस टर्मिनलों का पुनर्विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल इस बारे में बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को चयनित जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी से वर्ल्ड क्लास आधुनिक बस पोर्ट विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस पोर्ट क्षेत्रीय परिवहन के प्रमुख केंद्र के रूप में बनाए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। उन्होंने अधिकारियों को बस पोर्ट्स के प्रभावी संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए समग्र कार्य योजना बनाने को कहा। गौरतलब है कि ये आधुनिक बस पोर्ट उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर और बूंदी जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे।

0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्यवाही में दो ठेकेदारों को भी पकड़ा गया है। एसीबी के पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि मौके से 4,04,000 रूपए की रिश्वत राशि बरामद की गई है। उधर एसीबी की डूंगरपुर टीम ने साइबर पुलिस थाने के एएसआई और उसके लिए दलाली कर रहे पूर्व पार्षद को भी 1,00,000 रूपए की रिश्वत की राशि साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं डीडवाना कुचामन में सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार को भी 1,00,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में भुगतान व्यवस्था को नियमित और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले करीब 2 सालों में इस योजना के तहत अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर्स को लगभग 7,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बताया कि योजना में पिछले महीने लगभग 300 करोड़ रुपए जारी किए गए, वहीं मई महीने में करीब 150 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बकाया भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से जल्द करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर RGHS में फर्जीवाड़े को लेकर सीकर में एक डॉक्टर और लैब संचालक की गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से SOG में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। SOG के DIG परस देशमुख ने बताया कि सीकर में हुई कार्रवाई के बाद SOG ने RGHS में जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में इसकी पड़ताल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि कुछ अस्पताल लैब संचालकों की मिलीभगत से कई गुना ज्यादा का भुगतान क्लेम कर रहे हैं। इसे देखते हुए SOG पूरे प्रदेश में RGHS की जांच करेगी। डीग के जल महलों में मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने जल महलों का निरीक्षण कर इन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 20 करोड़ रुपए की राशि से एस्केप का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि महलों के सरोवरों में साफ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
1: एक जो डीग स्केप का सरोवर में पानी आता है स्केप को पकड़ने का काम, उस काम की सैंक्शन की प्रक्रिया अभी चल रही है। जो बजट घोषणा में अनाउंसमेंट हुई थी तो जल्दी उसका भी टेंडर करा के उसका काम इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू करा दिया जाएगा, इससे काफी हद तक इसमें आराम मिल जाएगा। जहां तक दोनों सरोवर की और किले की खाई की बात है, इसकी साफ सफाई रेगुलर, उसके लिए मैंने नगर परिषद कंपनी को निर्देशित किया है कि वो इसका प्रस्ताव तैयार करें, उसके बाद हम राज्य सरकार में उसको भिजवाकर जहां से भी फंड अवेलेबल हो सके फंड अवेलेबल कराकर और इसकी साफ सफाई और इसके एरेशन फाउंटेन वगैरह की कार्रवाई हम करवाएंगे।
0: प्रदेश में कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कल भी आंधी बारिश का सिलसिला बना रहा। भरतपुर और करौली में भी हल्के से मध्यम बरसात हुई। वहीं पाली में बीती रात झमाझम पानी बरसा और तेज हवाएं चली। कई स्थानों पर बिजली के पोल गिर गए और ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने आज भी दौसा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड सहित कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ बरसात का येलो अलर्ट बताया है। अगले 3-4 दिन अधिकतर हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार जताए गए हैं। 9 मई से गर्मी की फिर रफ्तार पकड़ने का अनुमान है। सीमावर्ती इलाकों में हीट वेव का दौर देखने को मिल सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले। राजस्थान सहित 6 राज्यों के लिए 23,437 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंग नहर शताब्दी समारोह को जन जागरूकता अभियान बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए चयनित जिलों में आधुनिक बस पोर्ट विकसित किए जाएंगे। और RGHS योजना में पिछले 2 सालों में अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर्स को 7,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz

0: यह आकाशवाणी अलवर का सा इसका चैनल है। श्रोताओं लीजिए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई के अंदर से
1: मंदाकिनी जोशी की बातचीत।

तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मीका सिंह और नक्श अजीज की आवाजें थी। इरशाद कामिल के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर इस समय चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक।

अरमान खान की आवाज में हक फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कौशल किशोर ने इसे लिखा था और विशाल मिश्रा ने इस गीत को संगीत से संवारा था।

ताल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी सोनू निगम, अनुराधा, सुजाता, ए आर रहमान की, आनंद बख्शी के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। इसी गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप समृद्ध हो, आप खुश रहें।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गडेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आप

1 मई 1988 को ये स्टार पैदा हुई थी बेंगलोर में। अनुष्का की पैदाइश बेंगलोर की है, लेकिन उनके माता पिता का ताल्लुक गढ़वाल उत्तराखंड से है। उनके पिता आर्मी ऑफिसर हैं और पोस्टिंग की वजह से उन्हें कई स्थानों पर रहना होता है, इसलिए अनुष्का की स्कूली पढ़ाई आर्मी स्कूल में पूरी हुई और आर्ट्स में विशिष्ट विषय के साथ उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ बेंगलोर में। मुंबई तो अनुष्का पहुंची पढ़ाई पूरी करने के बाद, जहां उन्हें निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में साइन किया और

रब ने बना दी जोड़ी अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म है। और यह भी आपको बताएं दोस्तों कि आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में यशराज फिल्म्स के बैनर के अंतर्गत अनुष्का को 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अनुबंधित किया था और ये वादा उन्होंने निभाया भी। दोस्तों अनुष्का दरअसल फिल्मों में आने की क्रेजी बिल्कुल नहीं थी, वो एक सुपर मॉडल बनना चाहती थी और इसी सिलसिले में फिल्मों में प्रवेश से पहले अनुष्का रैंप पर उतरी एक बड़ी कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए सन 2007 में। उनका मॉडलिंग का यह सिलसिला जारी रहा लेकिन रब ने तो जैसे उनकी जोड़ी खास तौर से फिल्मों के साथ ही बनाई थी सो अनुष्का बन गई।

ये गाना फिल्म बदमाश कंपनी का था, बिल्कुल ठीक पहचाना दोस्तों आपने। सन 2008 में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने जो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके तहत अनुष्का की ये दूसरी रिलीज थी। बदमाश कंपनी में अनुष्का के हीरो थे शाहिद कपूर और ये साल था सन 2010। सिलसिला आगे बढ़ा, सुनहरे पर्दे पर अनुष्का की चमक भी रफ्तार रफ्तार सुनहरी होती जा रही थी। लोगों ने उनके काम को गंभीरता से लिया और फिल्म क्रिटिक ने भी उनके संजीदा और सटीक अभिनय की तारीफों के पुल बांध दिए। रब ने बना दी जोड़ी के लिए सन 2009 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अनुष्का को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकित भी किया गया।

और सन 2010 में ही आई फिल्म बैंड बाजा बारात, जिसमें अनुष्का के नायक बने उस समय के नवोदित अभिनेता रणवीर सिंह। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ अनुष्का शर्मा का 3 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था फिल्म बैंड

बैंड बाजा बारात फिल्म के लिए सन 2011 में अनुष्का शर्मा को नामांकित किया गया फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए और स्टार स्क्रीन अवार्ड के तहत एक बार फिर से बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। पुरस्कार भले ही उन्हें ना मिला हो दोस्तों, लेकिन प्रशंसकों का प्रतिसाद बेहद मिला और चल पड़ी फिल्म बैंड बाजा बारात।

पटियाला हाउस के सभी मेंबर्स को लोगों ने पसंद किया और अनुष्का ने एक और कदम आगे बढ़ाया रणवीर सिंह के साथ। फिल्म आपने जरूर देखी होगी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल।

जहां तक अवार्ड्स की बात है तो वैसे अनुष्का के लिए सबसे पहले काम ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको बताना चाहेंगे, जब तक है जान फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्का को मिल चुका है।

तो ये गाना आपने सुन लिया। और ये भी याद दिला दें आपको कि 2013 में रिलीज मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म में भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं अनुष्का शर्मा ने।

0: सन 2014 में रिलीज पीके फिल्म में भी अनुष्का शर्मा ने बेहतरीन काम किया और मुख्य जो इसके नायक हैं वो तो हैं आमिर खान।
1: तुझे तक तक

सन 2015 में अनुष्का शर्मा ने 10H10 फिल्म में काम किया, जो आप जानते हैं कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और इसको प्रोड्यूस भी अनुष्का शर्मा ने ही किया।

0: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था प्रोड्यूसर और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, वो ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए श्रोताओं सुनते हैं कुछ संदेश।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे।
4: इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और इन सबसे पीछे छिपे हुए एक बहुत ही भोली और बहुत ही समझदार शख्सियत के मालिक मनोज कुमार, जिनका फिल्मी करियर लगभग 4.5 दशक पुराना है और आज भी मनोज कुमार जी के विचार, उनकी सोच इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति और इस आज के युवा के प्रति उतने ही मायने रखती है जितने की उनकी फिल्में। उन्होंने हमेशा ही एक सोच समझ के एक दायरे को बांधते हुए फिल्में तैयार की हैं और एक अलग ही सोच उनकी फिल्मों से झलकती रही है। मनोज कुमार जी का सफ़र कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी फिल्मी इनिंग कैसी रही और आज वो किस तरीके से फिल्मी दुनिया को लेते हैं, देश को लेते हैं, समाज को लेते हैं और इंसानियत को लेते हैं, सारा कुछ हम उनकी जबानी जानना चाहेंगे। मनोज कुमार जी, सेल्यूलॉइड के सितारे में आपका स्वागत है।
5: रविराज जी, आपने मेरी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा कर दी है।
4: मैं तो प्रशंसा ही नहीं कर सका, जिस तरीके का दौर आपने जिया है, जिस तरीके की सोच आपने दी है, जिस तरीके की समझ आपने समाज को दी है,
5: उसमें भूतकाल की तरफ मैं देखना ही नहीं चाहता। क्या किया उसको नहीं देखना चाहता, मैं आज में जीना चाहता हूँ।
4: क्या बात है,
5: खास कोई बात शुरू करनी हो तो
4: हमारे श्रोता एक वाक्य से समझ गए होंगे कि आज उनकी जिंदगी का फलसफा क्या है और क्या देने वाले हैं इस हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। मनोज जी, हम तो शुरुआत करते हैं उस हरि को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मनोज कुमार में घूम गया है।
5: उस हरि कृष्ण को मैं भी मिस करता हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ। आपने कहा कि बचपन से लेके अब तक का सफर, तो ये जो सफर है ये एक गठड़ी है, एक पोटली है जिसमें दुख सुख हैं, उसको ना ही खोला जाए तो अच्छा है।
4: आज आपको खोलना होगा हमारे श्रोताओं के खातिर और आपके चाहने वालों के खातिर जो कि जानना चाहते हैं मनोज कुमार को और ज्यादा और ज्यादा।
5: उस व्यक्ति का बचपन क्या होगा जिसकी उम्र में 10 साल में पार्टीशन हो गई, लाहौर से दिल्ली रिफ्यूजी कैंप में आ गए, तो 10 साल की उम्र में जिस पे ये बात बीत जाए आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोग ज़्यादा भावुक हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या दुख दर्द होंगे। तो उस पोटली को कि दुख ना याद करते हुए मैं कहता हूँ कि जिंदगी का जो सफ़र अब तक बहुत अच्छा गुजरा। कभी सोचा नहीं था कि प्रभु इतनी कृपा करेंगे। मुझे बचपन में फिल्में देखना का शौक था, सभी को है और सभी हीरो बनना चाहते हैं। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि मुझे न्योता आया, मैं बम्बई आ गया। फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल हुई। मेरी पहली अपीयरेंस जो है पर्दे पे वो एक 19 साल की उम्र में एक बुड्ढे की थी। मैंने एक एक्स्ट्रा से शुरू किया, वो फिल्म फैशन थी। तो हरि कृष्ण से मनोज कुमार बनने में बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी।
4: अच्छा, बचपन कैसा रहा बताइए, कि वो जो 9 साल 10 साल के जो पहले के दिन थे, जब पार्टीशन के पहले के उन दिनों, आप किस तरीके से अपनी शरारतें वगैरह, अगर हरि के पास थी तो किस तरीके की शरारतें हुआ करती थी, या कितना संजीदा था हरि?
5: संजीदा इतना लाहौर में नहीं था जितना दिल्ली आके हो गया था। मैं जो हालात गुजरे उस वक्त परिवार पे, तो उससे कुछ ज़्यादा संजीदा हो गया। तो जिसका आउटलेट मुझे मिला स्पोर्ट्स में, मैं हॉकी और क्रिकेट अच्छे लेवल पे दिल्ली में खेल लेता था। जब शौक आया कि एक्टर बनना है, बम्बई जाना है, तो 1956 में मैं जब बम्बई आया तो 2 सपने लेके आया था। एक तो हीरो बनूंगा और दूसरा सपना था कि 3 लाख रुपया कमाऊंगा। 1 लाख रुपया माता पिता के लिए, 1 लाख रुपया भाई बहनों के लिए और 1 लाख अपने लिए। उसके बाद प्रभु ने इतना दिया, मैं उसको बोनस समझता हूँ। इसीलिए मैंने, जबकि मेरी उम्र नहीं थी, लोग डराते थे कि डायरेक्शन में मत जाओ, देखो राज कपूर सभी नहीं बन सकते, प्रेमनाथ जी का क्या हाल हुआ, लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर मेरे

उधर का जो हरि कृष्ण था वो उसमें बड़े वलवले थे। उसने कहा कि मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, अब इस माध्यम से मैं देश के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, धर्म के प्रति जो दे सकूं फिल्मों के द्वारा वो दूं, तो इसलिए मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, पता नहीं कौन कौन सा टर बन गया, मुझे तो इतना ही याद है। बाकी मेरी फिल्में शुरू में चली नहीं थी। मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी शशि, इसको मैं शादी से पहले जानता था, हमारा लव मैरिज भी कह सकते हैं आप, से 3 लाख रुपए हो गए तो शादी भी कर ली, और शादी के बाद मेरी फिल्म रिलीज हुई हरियाली और रास्ता, और ये मेरे जीवन की पहली सफल फिल्म और सिल्वर जुबली फिल्म थी।

0: मनोज जी, आज हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को विस्तार पूर्वक बताएं, ख़ास तौर से एक हरी में एक कलाकार या फिल्म अभिनेता बनने का एक सपना कब उठा और कब वो पहला दिन था जब आपने तय किया कि हाँ, मुझे फिल्मों में ही अपना भविष्य ढूंढना है।
1: देखिए, मैंने 10 साल की उम्र में पहली फिल्म देखी थी जुगनू, उसमें नूरजहां और दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब का नाम उसमें शायद सूरज था, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, घर आ गए। फिर कुछ 20-25 दिन या महीने बाद मेरे मामू मुझे मैजिस्टिक टॉकीज दिल्ली में फिल्मिस्तान की शहीद फिल्म देखने ले गए। तो जब बाहर पोस्टर देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, मामा ये सूरज है। वो कहते ना, ये दिलीप कुमार है। मैं कहूँ, ये सूरज है वो वाला जो मर गया था। वो बोले, नहीं देख, पढ़, उर्दू में लिखा हुआ था दिलीप कुमार फिल्म शहीद में। मैंने फिल्म देखी, वो आदमी फिर मर जाता है। तो मैं हैरान परेशान कि एक आदमी दो दो बार कैसे मरता है। वो मेरे चचा का कत्ल हो गया था, तो कुछ दिन ये सोचता रहा कि शायद वो जिंदा आ जाए ताकि वो भी दूसरी बार मरेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिल्मों से लगाव जुड़ा, फिर लगा कि माध्यम बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, पारिवारिक व्यवसाय था?
1: रिफ्यूजी कैंप में भी हम जब थे तो सेल्फ सपोर्टिंग कैंप में थे, जिसमें खाना पीना आदमी अपने खुद खरीदता है। एक्चुअली अगर सब कुछ आप कारखाने फैक्ट्रियां ज़मीनें छोड़ के आ जाएं तो दिल्ली में आपको कुछ लाल किले का या रामलीला ग्राउंड थोड़ी देर देगा।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: भूखे नंगे भी नहीं थे, गुजर अच्छी थी।
0: जिस दौर में हम बात कर रहे हैं उसको लेकर कोई गीत याद करें?
1: गीत तो जी पहले ही वो गीत हम गाया करते थे जुगनू देखने से पहले, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है।

0: मनोज जी, आपने बताया आपने बचपन के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही और स्कूल में जब आप जिस तरीके से आपने वो सपना देखा था और दिलीप कुमार को पर्दे पर मरते हुए देखा और उसके बाद आप में एक कलाकार तैयार होना शुरू हुआ कि ये बड़ा अच्छा माध्यम है।
1: क्योंकि रिफ्यूजी कैंप में स्कूल कॉलेजेस नहीं थे तो मेरे पिताजी ने साथ में ही दिल्ली के गाँव पड़ता था नांगलोई वहाँ डाल दिया। वहाँ हिंदी माध्यम था तो लाहौर तो मैं उर्दू पढ़ता था तो कुछ चार एक महीने वहाँ पढ़ पाया। फिर पिताजी मुझे पिलानी ले गए, वो तूफान आ गया, पिताजी वापस नहीं जा सके तो उन्होंने देखा यहाँ तो सब्जी भी अमरूद की बनती है। उन्होंने कहा जहाँ खाना पीना ही अच्छा नहीं वहाँ पढ़ाई क्या अच्छी होगी, चलो वापस। वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ी लिखूँ, लेकिन मैं कब फेल हुआ कब पास हुआ कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ ये मेरे माता पिता ने कभी नहीं पूछा। ये मेरे पे उनका इतना विश्वास कैसे था मैं समझ नहीं पाया। मेरे पिताजी ने आज तक नहीं पूछा क्यों भाई क्या मार्क्स आए पेपर कैसा हुआ, ना। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि मैं जब दिल्ली से बंबई के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक चिट्ठी है ट्रेन चले तो पढ़ लेना। बाकी जो एक पिता लिख सकता है खत में वो लिखा हुआ था, लेकिन चार लास्ट की लाइनें जो है मुझे याद हैं। सन आई हैव फुल फेथ इन माई ब्लड कैन कमिट मिस्टेक्स बट नॉट ब्लंडर्स एंड रिमेंबर सन दोज हु आर डेस्टिन्ड टू बी हैंग्ड कैन नॉट बी ड्राउन्ड।
0: क्या बात है।
1: तो यही विश्वास मेरा मेरे संतान के प्रति है कि मेरा खून गलती कर सकता है ब्लंडर नहीं कर सकता, बाकी किस्मत में अगर टू बी हैंग्ड है तो ड्रोन नहीं हो सकते, अगर ड्रोन होकर मरना है तो हैंग नहीं हो सकते।
0: अच्छी बात कही आपने। आपके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास आपको रहा है और आपने जैसा कि बताया कि 1,00,000 रुपए आप अपने भाई बहनों के लिए करना चाहते थे, अपने भाई बहनों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: जिन दिनों मुझे बम्बई आना था पिताजी ने अपनी फैक्ट्री दोस्त को दी थी चलाने के लिए और वो लीज के पैसे नहीं देता था। घरेलू हालत काफी खस्ता थी, मुझसे एक छोटी बहन थी, दो बहनें और एक भाई, वो भी

0: नहीं थे
1: कि पंजाब से बटाला शहर से पिताजी के दोस्त आए मिस्टर टकसाली साहब, वो स्विंग मशीन की जो बॉडी होती है वो उन्होंने बनाई थी और दिल्ली में उन्हें मार्केट क्रिएट करनी थी। तो मैंने उनको कहा चुपके से कि अंकल आप बताइए मत, ये मैं ट्राई करूं। उन्होंने कहा भाई हाँ कर ले। पहले तो डांटा कि गोस्वामी जी का बेटा हो के ये काम करेगा, ये तो एजेंटों वाला काम है। मैंने कहा जी क्या डिग्निटी ऑफ लेबर है, काम करने में क्या शर्म है, मैं चोरी तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली चांदनी चौक नई सड़क पे ये मशीन के खोल बिकते हैं। तो मैं साइकिल पे बांध के कुछ 7-8 मील दूर है वो जगह घर से, तो वहाँ गया तो 3 चक्कर मैंने पहले सारी सड़क के लगाए और एक दुकान अच्छी थी उस पर बहुत भीड़ थी, मैं वहीं खड़ा हो गया। तो लंच टाइम हुआ तो लोग चले गए, तो सरदार साहब ने मुझे देखा कि नया चेहरा है, शक्ल से भी ठीक ठाक लग रहा है, कपड़े भी ठीक हैं, क्या है भाई। मैंने उनसे

0: कि ये काम करेगा, ये तो एजेंटों वाला काम है। मैंने कहा जी क्या डिग्निटी ऑफ लेबर है, काम करने में क्या शर्म है, मैं चोरी तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली चांदनी चौक नई सड़क पे ये मशीन के खोल बिकते हैं। तो मैं साइकिल पे बांध के कुछ 7-8 मील दूर है वो जगह घर से, तो वहाँ गया तो 3 चक्कर मैंने पहले सारी सड़क के लगाए और एक दुकान अच्छी थी उस पर बहुत भीड़ थी, मैं वहीं खड़ा हो गया। तो लंच टाइम हुआ तो लोग चले गए, तो सरदार साहब ने मुझे देखा कि नया चेहरा है, शक्ल से भी ठीक ठाक लग रहा है, कपड़े भी ठीक हैं, क्या है भाई। मैंने उनसे कुछ छुपाया नहीं जी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और मैं ये ट्राई करने आया हूँ। उन्होंने खोल की बॉडी देखी, पसंद किया और 2 महीने मैंने काम किया और बटाला से टकसाली साहब ने खत लिख दिया कि और ऑर्डर नहीं लो, मैं इतने ऑर्डर नहीं भुगतान कर सकता। तो 2 महीने में मैंने 29,000 रुपया कमीशन कमाई थी। फिर पिताजी कहते थे कि साइकिल पे क्यों जाते हो, 4-व्हीलर पे जाओ, मेरा शौक फिल्में देखना, फोटो भी खिंचवाओ, कमीज भी अच्छी पहनो। तो वो मैं साइकिल पे जाता था, वो जो पैसे थे वो बच जाते थे और मैं शशि के साथ पिक्चर भी देख लेता था। तो साइकिल चला के जो पैसे बचते थे उनसे मेरा ये मनोरंजन का काम हो जाता था।
1: जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी शशि जी से मुलाकात रही।
0: मुलाकात ये है कि मेरे एक दोस्त हैं रवि करके, मैं उनके यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ने जाया करता था, वो मेरे क्लास फेलो थे। आंखों ही आंखों में कहते हैं ना बात हो गई, जैसे पंचोली साहब का एक गीत है, नैनों के बांध की रीत अनोखी, रीत अनोखी, बांध चले और नैन ना देखे। तब क्या हो गया ये पता नहीं, हुआ जरूर है।
1: बड़ी रोचक कहानी है। तो ये क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय जब आपने शशि जी को पहली बार देखा?
0: 15-16।
1: वाह, और पहली नजर का प्यार।
0: हाँ, लेकिन बातचीत करने में 1 साल लग गया था, हेलो भी नहीं कर सकते थे।
1: वाह, और उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई, फिर आप इतने बड़े कलाकार बने, इतने बड़े सितारे बन गए।
0: फिर मैंने पिताजी को यहाँ से इशारतन एक इशारा दिया था, तो वो जानते हैं, पिता तो जानते हैं सब कुछ, वो उनके यहाँ चले गए तो 1 मिनट में बात तय हो गई। माता पिता ने भी नहीं कहा, लेकिन मेरी पत्नी ने 22 साल फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए मेरे पिताजी से घूंघट निकाला।
1: क्या बात है, वाह।
0: फिर वो बीमार थे तो उन्होंने खुद उठवाया कि तू मेरी बेटी है, हमने कभी चाहे ना था कि घूंघट निकालो, मगर उसने परंपरा के अनुसार ये काम किया।
1: और आप अपने प्यार को जब एक सितारे के रूप में स्थापित हो जाने के बाद जब आपने उनसे विवाह किया तो उस समय का अनुभव कैसा रहा? और उस समय तक तो आप जाना माना नाम बन चुके थे। और
0: ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पांव हमेशा धरती पे रहे, ना मैं गर्दन उठा के चला हूँ। ये फैक्ट है, मैं चलता भी हूँ तो गर्दन मेरी नीचे होती है। मुझे कोई अंतर नहीं लगा कि मैं स्टार बन गया हूँ, ना मैं स्टार की तरह रहा कभी, ना मैंने कभी सेक्रेटरी रखा, ना स्टार वाली पार्टियां की। अपना अपना मेंटल एटीट्यूड भी होता है।
1: कोई अच्छा सा गीत याद आ रहा हो आपको?
0: आपने कहा तो मुझे एकदम अपने गाने का ध्यान आया, जीवन चलने का नाम। जीवन

0: मनोज जी, बचपन में जो सबसे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है और वो पूरी ज़िंदगी भर रिफ्लेक्ट करता है, कभी माता का प्रभाव होता है, पिता का प्रभाव होता है, या कोई ऐसी शख्सियत होती है आपके आसपास की जिसको आप आगे लेकर चलते हैं पूरी ज़िंदगी ता ज़िंदगी। अपनी माँ के बारे में भी कुछ बताएंगे।
1: बात ये कि मैं ज़्यादातर अपने ननिहाल में रहा, माँ मेरी कुछ बीमार रहती थी ज़्यादा। जो धार्मिक भावनाएँ हैं या जो रुचि पड़ी वो अपनी माँ और अपनी नानी से ली मैंने। बाकी जहाँ तक एक कंट्रोलिंग, एक यूनाइटेड फैमिली रहना, एक डिसिप्लिन पर्सन रहना, वो मैंने अपने पिताजी से बहुत सीखा। क्योंकि 13 अगस्त 1947 के करीब खबर मिली थी कि मेरे चाचा जी का कत्ल कर दिया गया। 25 साल भी एज नहीं थी उनकी।
0: ये विभाजन की त्रासदी
1: जी। और पिताजी नढाल थे, दीवानों से सर मार रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठे, मुझे 6 बजे उठाया, चलो तैयार हो जाओ नहा के। कहाँ, 15 अगस्त 1947 में मुझे मेरे पिताजी लाल किला ले गए और मैंने झंडा देखा, मैंने लाल किला भी देखा। मुझे उस वक्त लगा, एक थोड़ी सी सोच ऐसी लगी कि कल तक रात तक मेरे पिताजी का ये हाल था, आज सुबह ये भावना है, ये झंडा, ये आज़ादी, ये इतना कीमती है कि एक आदमी अपने दुख दर्द भूल गया, ये कहीं मेरे दिल में बस गया। मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं कहा कि सुनो बैठो, ये संस्कार सीखो, ये बात सीखो, कभी नहीं कहा। इनडायरेक्टली बातों बातों में कह जाते थे।
0: देश प्रेम का जो जज्बा था वो मेरे ख्याल से वो बीज था।
1: हालांकि लाहौर में जुलूस निकलते थे, जब INA का केस चल रहा था लाल किले में, तो जुलूस में शामिल हो जाता था, फिर लाल किले से आई आवाज़ सैगल ढिल्लो शाहनवाज, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं थी, वो एक बच्चे सारे हैं तो मैं भी शामिल हो जाऊं। लेकिन जो असली बीज पड़ा एक सोच का, वो 15 अगस्त को पड़ा,
0: देश की आज़ादी के दिन ही। तकरीबन 13 साल के रहे आप।
1: उस दिन एक और घटना घटी कि पानी पिया मैंने तो उसने मुझे टका मांगा। मेरे को तो लगा पहाड़ गिर गया मेरे सर पे, हम तो पानी पिलाने को पुण्य समझते हैं। मैंने पिताजी से शिकायत की कि आदमी पानी के पैसे मांग रहा है। कहते यार पानी, हम तो दरिया के दरिया छोड़ आए हैं आज़ादी के लिए, तो पानी के 2 पैसों को रो रहा है, हम तो दरिया छोड़ आए।
2: विविध भारती पर आपने ट्यून किया है कार्यक्रम सेल्युलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता, निर्माता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार।
0: मनोज जी, हम चलते हैं आपके फिल्मी सफर की तरफ, और आपने पहले छोटी छोटी भूमिकाओं के से शुरुआत की अपने अभिनय की। तब क्या आपने सोचा था कि आपका जो कलाकार है वो एक मनोज कुमार के रूप में विशाल एक वृक्ष का अख्तियार कर लेगा?
1: जितना हुआ उतना नहीं सोचा था। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन परमात्मा इस स्टेज पे ले आएगा। हो सकता है ये जगह, ये मकाम जहाँ मैं पहुँचाऊँ आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। कि जिंदगी में पहली फिल्म देखी दिलीप कुमार की, कि ये दिलीप कुमार है, ये सूरज है, ये मर जाता है, तो वो 10 साल के बच्चे के कोरा दिमाग, कोरा दिल, उस पे दिलीप कुमार का नाम लिखा गया। एक वक्त वो आया कि दिलीप कुमार साहब फिल्म बना कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन कहा हमेशा यही जाता है कि दिलीप साहब की फिल्म है, तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म आदमी में लिया। तो ये कभी सोचा नहीं था कि मैं दिलीप कुमार साहब के साथ काम करूंगा, ये तो हुआ। लेकिन ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आया था कि मैं एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर जाके दिलीप कुमार साहब को साइन करूंगा।

0: और वो सेट पे मेरे लिखे हुए डायलॉग बोलेंगे, वो मेरी डायरेक्शन के अंडर काम करेंगे। इतना नहीं सोचा था, इस इतना कुछ हो गया, इसके आगे मैं भगवान से मांगू तो इतने मांग सकता हूँ कि भाई अब तक अच्छा जीवन कटा, आगे भी कृपा रखना, और तो कुछ मांगने को है नहीं।
1: जबरदस्त बात कही आपने। आदमी फिल्म का कोई अगर गीत आपको याद आ रहा हो?
0: उस फिल्म में एक गीत था, दिलीप साहब और मुझ पर फिल्म आया गया था, कैसी हसीन ये बहारों की रात।

0: रोता हूँ, इससे पहले कि मनोज कुमार से भारत कुमार बनने के सफर के बारे में हम आगे बढ़े, हम जानना चाहेंगे मनोज जी कि आपने मनोज कुमार नाम कैसे रखा अपना।
1: ये जिस हरि या हरि कृष्ण गोस्वामी की बात करते हैं, जब वो 11 साल का था या 12 साल का था, उसने फिल्म देखी, उस फिल्म में भी

0: दिलीप कुमार साहब थे और उसमें उनका नाम मनोज था। ये मैं शाबाश देता हूँ अपने बचपन को कि उसी वक्त ठान लिया था कि अगर फिल्म में आया तो ये ही नाम रखूंगा।
1: जिस तरीके से दिलीप साहब की बातचीत हो रही है, आप जाहिर है हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि मनोज जी की जो शख्सियत है उस पर दिलीप साहब का जबरदस्त प्रभाव रहा है, आपके अभिनय में भी वो कहीं कहीं झलकता रहा है, तो ये डेलिबरेटली था कि मतलब आपने जान करके इसको लिया?
0: नहीं, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं कोई मतलब ये नहीं कहना चाहता कि मैं बेगुनाह हूं। एक तो जो आपका आइडियल रहा हो तो शायद वो टेम्परामेंट कहीं आ जाता है। दिलीप साहब का जो टेम्परामेंट है वो अंडर प्ले का था। कुछ मेरी जाती जिंदगी भी ऐसी थी जो इंट्रोवर्ट और टिमिड स्लो ऐसे, तो क्योंकि आपने फिल्म आदमी देखी होगी, आदमी में दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था, उसमें दो दिलीप कुमार नहीं थे।
1: बिल्कुल सही।
0: क्रांति में आपने देखा दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था। मेरा बार बार ये कहना कि दिलीप साहब की फिल्म देखी, दिलीप साहब से मुतासर हुआ, दिलीप साहब से ये हुआ, वो शायद इस रोशनी में लिया जाता है कि मैं दिलीप साहब की कॉपी करता हूँ। हो सकता है कोई मैनरिज्म किस वक्त मिल जाए।
1: तो इसमें फिर किसी की एक्टिंग की बात नहीं आ जाती है कि ये किसी से कॉपीड है या किसी को ध्यान में रखते हुए, किसी को प्रेरणा बनाते हुए की गई एक्टिंग है, बल्कि मनोज कुमार तो अपने आप में एक अलग संस्थान भी है। और आज तो हम बात करते हैं जब अलग अलग मैनरिज्म की, अलग अलग स्टाइल की एक्टिंग के, तो एक स्कूल मनोज कुमार का भी रहा है जिन्होंने की एक अलग तरीके का एक शेड दिया है अभिनय को, एक उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। शायद शहीद से और उपकार के दौर से आपका जो वो आधा चेहरा वाला जो सिस्टम रहा है और आंखें बंद करने वाला जो हिसाब किताब रहा है, इसके बारे में भी हमें खुलासा करके कुछ बताएं।
0: जहाँ तक आंखें बंद करने का सवाल है, ये मैंने डेलिब्रेट कभी नहीं किया, मैंने बिल्कुल सीन को नेचुरल सीन समझ के किया। शायद अगर कोई सोचने वाली बात आ जाए तो शायद आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे कि आप बगैर आंखें बंद किए छींक नहीं सकते, तो अगर सोच वाली बात आ जाए तो या तो आदमी आसमान की तरफ देखेगा, नीचे देखेगा, या आंखें बंद करके कुछ सोचने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा मैनरिज्म करूंगा, मैं हाथ ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। एक टेक होती थी तो उसमें मैं कुछ करता था, दूसरी टेक होती थी उसमें मैं कुछ करता था। मैंने करेक्टर को निभाया है, सीन को निभाया है, मैंने कतई ध्यान नहीं दिया कि तू मनोज कुमार है, तूने ये करना है, तूने ये करना नहीं। मेरी तो चिंता रहती थी कि दूसरे ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
1: मनोज कुमार के भीतर एक अभिनेता रहा है शुरू से, ये निर्देशक के रूप में कब परिवर्तित होता चला गया या निर्देशकीय रास्ते पर कब चलने लगा, और फिर लेखक ने कब जन्म लेना शुरू कर दिया?
0: लेखक तो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ,
1: शुरुआती दौर में आपने बताया था।
0: बाकी मैंने कहानी लिखी हुई थी शहीद, जो भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव इनके कॉमरेड्स के ऊपर थी। तो मेरे दोस्त हैं केवल बी कश्यप साहब, वो पीआरओ का काम करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा यार मैं थक गया हूँ फोटोज खींच खींच के और ऑफिसेज में जाके कि इसकी फ़ोटो छापो उसकी फ़ोटो छापो, मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। उस वक्त मैं सेलेबल हीरो जो कहते हैं कि जिसकी पिक्चर बिक जाए उस पदवी तक आ गया था। हाँ, मैंने कहा बनाओ फिल्म। मैंने कहा साधना जी हैं, सायरा जी हैं, आशा पारेख है, किसी को लेके बना। कहता नहीं, मुझे बनानी वही फिल्म है जो तूने सुनाई थी कहानी। मैंने कहा केवल पहली फिल्म बना रहा है, इससे पहले दो फिल्में भगत सिंह जी पे बन चुकी हैं जो चली नहीं है, ये तो जोखिम लेगा। कहता यार कुछ नहीं। मैंने कहा लेना है तो फिर बना लो। तो ये तय हुआ कि वो शहीद बनाएंगे। फिर हमारे सहयोगी थे मेरे एस राम शर्मा, वो मंझे हुए थे, उनको बोला भाई आप डायरेक्शन में आ जाओ। तो केवल साहब उन दिनों शंकर जयकिशन साहब, ओपी नैयर साहब और रवि साहब इन म्यूजिक डायरेक्टर्स की पब्लिसिटी किया करते थे, तो केवल जी के लिए ये था कि यार ये नहीं होगा तो शंकर जयकिशन का म्यूजिक बिकता है, शंकर जयकिशन बिकते हैं, ओपी नैयर साहब बिकते हैं, रवि साहब बिकते हैं। मैंने कहा केवल बात बहुत सिंपल है, अगर ये फिल्म बनानी है तो इस फिल्म के लिए मुझे म्यूजिक डायरेक्टर प्रेम धवन चाहिए। कहने लगे वो कौन है? मैंने कहा वो गाने लिखते हैं। कहने लगे यार एक दो गाने ले लेंगे उनसे। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म अगर बनानी है तो इसमें, कहता उन्होंने कभी म्यूजिक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तू कैसे जानता? मैं कहा मैं जानता हूँ, ये बड़प्पन है केवल का कि उसने मेरी बात मान ली। हम प्रेम धवन साहब के घर गए उनको यकीन नहीं आया, उन्होंने दो

दिन मांगे, मैंने कहा नहीं, अगर आपने म्यूजिक नहीं देना तो ये फिल्म नहीं बनेगी। उन्होंने हाँ की और शहीद सब नए लड़कों के साथ बनी और प्रेम धवन साहब ने म्यूजिक दिया, म्यूजिक जो आज भी चलता है। और डायरेक्शन का क्या हुआ, चूंकि लिखे हुए सीन मेरे थे, कहानी सब कुछ मेरे पास थी, तो पैसे की बहुत दिक्कत थी। हमको अक्सर दो यूनिट बनाने पड़ते कि इधर ये कर लो, तो एक तरफ मुझे जाना पड़ा, मैं गया नहीं उस रास्ते पे, मुझे जाना पड़ा। जब वो मैं डायरेक्शन करने लग गया तो फिर मेरे अंदर डायरेक्टर ही आ गया।

नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम

फिर शहीद बनने के बाद जब दिल्ली में इसका प्रीमियर हुआ तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे, वो 3 घंटे उन्होंने फिल्म देखी, तालियां बजाई, उसके बाद स्पीच भी दी। फिर मुझे बोला कि सुबह सबको घर पे लेके आओ, बाकी तो कुछ लोग जा चुके थे, तो मैं उनकी कोठी पे पहुंचा तो जो किचन गार्डन सा होता है उसमें खड़े थे, तो बहुत शाबाश दी, बहुत कलेजे से लगाया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बचपन में ले गए, मैं उसके बाद सोया नहीं सारी रात, वही जीवन में चला गया था। तो ऐसे ही उन्होंने मासूम नजरों से देखते हुए कहा कि सुनो, मैंने नारा दिया है जय जवान जय किसान, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी, मैंने कहा जी बन जाएगी। मैंने सीताराम साहब से कहा कि मुझे डायरी और 2-3 बॉल पेन ले दो, मैं डीलक्स से चला और सोया नहीं, 24 घंटे में उपकार लिखे।

0: मैंने स्क्रिप्ट में, मेरी पत्नी सामने बैठी है, मैंने स्क्रिप्ट पूरा लिखने में कभी 3 से 4 दिन से नहीं लिए।
1: हम चाहेंगे कि शशि जी भी हमारे साथ ज्वाइन करें और मनोज जी के बारे में, जो एक घर में एक अभिनेता और निर्देशक और लेखक और निर्माता के इतने सारे जो आयाम हैं उनको छोड़कर किस तरीके से मनोज जी पेश आते हैं।
0: नहीं, इससे पहले कि आप उनसे बुलवाएं, मैं आपको बता दूं कि मेरे सीन पुख्ता क्यों होते हैं कि पहले ये सेंसर करती है, पास करती है, अगर इसको कोई चीज नहीं अच्छी लगेगी तो अटक जाएगी। जब मैं समझूंगा कि ठीक इतना अटक गई है, मेरे को समझाने में कामयाब हो जाए तो मैं इसकी मान लेता हूँ, और अगर गलत है चीज जो इसका सजेशन है वो ठीक नहीं है, अगर मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँ तो ये मान लेती है। बाकी मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, क्या काम किया है, इसका मेरे साथ पूरा सहयोग रहा है।
1: यानी जो कहा जाए कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत शशि जी हैं आपके पीछे।
2: घर में तो ये बिल्कुल घरेलू ही रहते हैं और दिनचर्या भी इनकी जैसे सुबह आम आदमियों की तरह होती है, वैसे ही सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, सैर करने जाते हैं, सादा भोजन लेते हैं। भोजन में भी ज़्यादातर इनका यही होता है, मूंग की दाल और दूधी की सब्जी, दो चीज़ें इनकी फेवरेट है।
1: और स्वभाव किस तरीके का है, कि जिस तरीके से बोला जाता है कि एक सफल कलाकार अगर खासतौर से होता है तो बहुत टेम्पर्ड होते हैं, टेम्परामेंट उनका बहुत हाई होता है, तो घर में भी ये सब चीज़ें झलकती हैं या फिर बहुत शांति से पेश आते हैं और पारिवारिक तरीके से रहते हैं?
2: शांति से पेश आते हैं, लेकिन कभी कभी मूड गर्म भी हो जाता है।
0: कोई सुविधा जिंदगी की ना मिले ये गुजर कर लेगी, लेकिन म्यूजिक, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये इसकी जान है।
1: शशि जी, आप अपने जमाने में जबरदस्त खूबसूरत भी रही हैं और एक सफल कलाकार की पत्नी भी रही हैं, कभी आपको खुद को नहीं लगा कि अभिनय की दुनिया में कदम रखा जाए? खासतौर से आप, हम जानते हैं कि पूरब और पश्चिम की जो कहानी है उसके बेसिक आपके ही हैं और आपका ही एक ये महल था जो सक्सेसफुल रहा है।
2: काम करने का सवाल तो कभी दिल में नहीं आया, क्योंकि पिक्चरों में तो आर्टिफिशियल एक्टिंग होती है, घर में तो हम नेचुरल करते हैं, वो एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है हमें।
1: दूसरी चीज ये जानना चाहते थे कि पूरब और पश्चिम का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से इसको आपने विजुलाइज किया, फिर उसको कागज पर उतारा?
2: मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड वो बाहर रहते थे हमेशा, अब्रॉड में ट्रांसफर हो गई थी उनकी, तो हम हमेशा कहते थे कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ की कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पे ऐसे है, बच्चे होंगे तो कैसा होगा, क्या होगा। उस पॉइंट को देख के सोच के कैसा वातावरण वहाँ का है, यहाँ का कैसा है, तो उसके ऊपर ऐसा ब्रेन ड्रेन के ऊपर कुछ आइडिया आया।

0: मनोज जी, एक निर्देशक जीवित हुआ आपके भीतर जब आपको जिम्मेदारी का एहसास हुआ फिल्म में, जिस तरीके से आपके शहीद के दौरान आपने बताया, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा के बाद जब आपने उपकार शुरुआत की और जय जवान जय किसान का जो नारा है उसको इनकॉर्पोरेट किया फिल्म में, तो वो अपने अनुभव बताइए। उसमें आपने एक और चेंज किया था कि एक जबरदस्त या जिसके पर्दे पर आते ही लोग दहल उठते थे, ऐसे खलनायक को एक शानदार और एक बड़ी जीवंत भूमिका दी थी मलंग बाबा की। वो प्राण साहब थे जिनकी इमेज आपने तोड़ी थी और बदली थी।
1: प्राण साहब का एज ए विलन इतना भयानक रूप था कि अगर आप उनके साल देख लें और उन वर्षों में देख लीजिए, घर वालों ने किसी बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा होगा।
0: ये बिल्कुल हकीकत है।
1: लेकिन मेरी कन्विक्शन ये थी कि एक अच्छा कलाकार उस पे स्टैंप लग जाती है, मैं इनको, ये इंसान अच्छे हैं, ये कलाकार अच्छे हैं, तो क्या वजह है कि ये अच्छा रोल नहीं करेंगे। तो मेरी कन्विक्शन थी। थोड़ा सा प्राण साहब भी हेजिटेंट थे कि यार ये कैसा रोल है। और फिर उस फिल्म में एक गीत था उनके ऊपर, कस्मे वादे प्यार वफा, तो मुझे स्वर्गीय कल्याण जी भाई भी, राज खोसला साहब, ये सब कहते थे अरे क्या पागल हो गए यार, बैकग्राउंड में रख दो ये गाना, प्राण जी के मुंह से मत गवाओ। प्राण साहब जो थे, वो जो रोल था उनके अंदर रच गया था।
0: वाकई उपकार का ये उपकार था प्राण साहब के ऊपर, और हम चाहेंगे कि इस फिल्म का भी एक कोई गीत सुन लिया जाए।
1: बात प्राण साहब की हो रही है और मलंग बाबा की हो रही है, तो बात उस गीत की भी हुई, तो क्यों ना उसी गीत को सुनाया जाए। कस्मे वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का।

सेल्यूलॉइड के सितारे, अभी आप फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार से रविराज प्रणामी की बातचीत सुन रहे थे। आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया रीटा रवेलो और साइमन परेरा ने। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: लीजिए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: रंग तरंग,
4: रंग तरंग,
3: रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का

तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मिर्जा गालिब के इस कलाम के साथ, स्वर मोहम्मद रफी का और मौसिकार खयाम साहब।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और कलाम मिर्जा गालिब का था। आइए अब सुनते हैं पायल देव की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। गीतकार कुणाल वर्मा हैं और संगीत दिया है जीत गांगुली ने।

ये स्वर था पायल दवे का और आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये गैर फिल्मी रचना। कार्यक्रम में आप सुनिए अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति गीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

कार्यक्रम में अब सुनिए संदेश शांडिल्य के संगीत निर्देशन में अनिल पांडे का लिखा ओकार फिल्मी गीत। गायिका है शुभा मुदगल।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म हमराही की कव्वाली, आवाजें पन्ना डे, महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर और साथियों की थी। इस कव्वाली को लिखा था शकील बानो भोपाली ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजें, मनोज मुंतशिर के बोल, अभिजीत वगानी का संगीत है ये।

ये आवाजें अरमान मलिक और नीति मोहन की थी। आपने इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत सुना। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में गुलजार साहब की ये रचना। संगीत दिया है वसंत देसाई ने।

यह आवाज आशा भोंसले की थी और रचना गुलजार साहब की थी। लीजिए अब सुनिए मन्ना डे और साथियों की आवाजों में मुरली मनोहर स्वरूप का लिखा ये भक्ति गीत।

समा जब मैंने जाना चाहती है मुझको भी तू बेपना।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश साबरी बंधुओं की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कव्वाली।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं शोभा गुरटू की आवाज में संत मीराबाई का ये भजन।

शोभा गुरु की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना और रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मीर तकी मीर का कलाम फनकार मेहदी हसन।

0: मीर तकी मीर के इस कलाम के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी

0: टीबीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है। इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षा निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए गीतकार साहिर लुधियानवी की कुछ गीत रचनाएं लेकर आए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एसडी वर्मन के संगीत निर्देशन से, आवाजें किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम है टैक्सी ड्राइवर।

0: बाड़े की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, डेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

कार्यक्रम का अगला गीत साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ और एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के हैं। फिल्म का नाम है जाल।

ये स्वर लता मंगेशकर और साथियों की फिल्म जाल के लिए थे। कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में है, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आज और कल।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत साहिर लुधियानवी की रचना, रवि के संगीत निर्देशन में, स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम है आज और कल। कृपया से दोबारा सुने कार्यक्रम का अगला गीत जगजीत कौर की आवाज में है, फिल्म का नाम है शगुन, गीतकार साहिर लुधियानवी है और संगीतकार खयाम साहब।

जगजीत कौर की आवाज में ये था फिल्म शगुन का गीत। आइए सुनते हैं एन दत्ता का संगीत, मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाजें। फिल्म का नाम है दीदी।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार साहिर लुधियानवी को चुना है।

0: कभी कभी।
1: ये स्वर लता मंगेशकर का था, फिल्म का नाम था आंखें। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे रवि।
0: आएगी जरूर।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
0: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
0: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

कार्यक्रम का अगला गीत जयदेव के संगीत निर्देशन में है। गीत साहिर लुधियानवी का, आवाजें आशा भोंसले और साथियों की। ये फिल्म है मुझे जीने दो।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की रचना, रवि के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है वक्त और स्वर आशा भोसले और महेंद्र कपूर के।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनू।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे? नहीं,

0: अब की नहीं सदियों की शनासाई हो।
1: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
2: कहो, तुम भी कहो।
1: खुद पे इतराते न जाओगे?
2: नहीं, खुद पे नहीं,

0: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
1: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म प्यासा से हमने लिया है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और धुन सचिन देव बर्मन की है।

हेमंत कुमार को अभी अपनी फिल्म प्यास हमें सुना। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज। फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। गीत रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत रचना एन दत्ता की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म काजल का गीत रचना साहिर लुधियानवी की और तर्ज रवि की।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करने वाली रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और परिचालन दक्षता में सुधार होगा, साथ ही देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुँच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस निर्णय को देश की न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने वाला बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे न्याय प्रक्रिया त्वरित होगी और गरीब तथा दूर दराज के याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी और संवैधानिक मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बस टर्मिनलों का पुनर्विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल इस बारे में बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को चयनित जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी से वर्ल्ड क्लास आधुनिक बस पोर्ट विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस पोर्ट क्षेत्रीय परिवहन के प्रमुख केंद्र के रूप में बनाए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। उन्होंने अधिकारियों को बस पोर्ट के प्रभावी संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए समग्र कार्य योजना बनाने को कहा। गौरतलब है कि ये आधुनिक बस पोर्ट उदयपुर

बीकानेर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर और अजमेर तथा बूंदी जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे। मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दूसरी बार के लिए 15 मई से शुरू होगी। ये परीक्षाएं 21 मई तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि परीक्षा के सफल और सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षा के लिए राज्य के 1300 स्कूलों के करीब 21,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इन्हें प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र किन्हीं 3 विषयों में दूसरी बार की परीक्षा में शामिल होकर अंक सुधार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। भरतपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना बहनेरा के पास ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई। हादसे का शिकार मोटरसाइकिल सवार ये युवक आगरा के रहने वाले थे और एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए भरतपुर आ रहे थे। उधर भांसवाड़ा में अनास नदी में कल एक नाव पलट गई। घटना अर्थुना क्षेत्र के भैंसाऊ गांव में हुई। नाव में सवार 9 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, वहीं 2 लोग लापता हैं। इनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राज्य में मई महीने के पहले सप्ताह की शुरुआत भीषण गर्मी की बजाय आंधी बारिश से हुई है। इससे अधिकतर हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान इस दौरान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। बाड़मेर में दिन का पारा कल सबसे अधिक 41.8 डिग्री मापा गया। सीकर, पाली, जालौर, भरतपुर, बारा, बांसवाड़ा और उदयपुर में हुई बारिश के बाद पारे में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। विभाग ने आज और कल के लिए 7 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट बताया है। 9 मई से तापमान में बढ़ोतरी की आशंका है। जैसलमेर और जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। इन क्षेत्रों में हीट वेव चलने की भी संभावना है। बढ़ती गर्मी की आशंका के मद्देनजर चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये गीत हमने लिया था फिल्म दस्तक से। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे मदन मोहन। तो ये आवाज आपने पहचान ली होगी, किसकी आवाज है ये आपको बताना है। हमारे बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं कि हाँ मंदाकिनी जी, हम सुरीले सफर में हम भी आपके साथ हैं और स्वागत और नमस्कार करते हैं, और उन्होंने इस गीत को पहचान भी लिया था कि ये गीत कौन सा है। तो आप सभी इस सफर में हमारे साथ हैं हम उम्मीद करते हैं। और एक श्रोता लिखती है कि बदलते हुए मंजर का नाम है जिंदगी, और दुख के कितने ही झोंके क्यों ना आए, जीवन एक राग में बजने वाला साज नहीं है। इसके साथ सभी रंग हैं, खुशी के, गम के, मिलन के, जुदाई के। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन एक मुकम्मल इंद्रधनुष है। महबूब की पुकार से मन में सतरंगी बाहर खेल उठती है। जीवन का एक सच ये भी है कि दुख और असफलता में व्यक्ति या तो मजबूत बनकर उभरता है या फिर उसका तन जीता रहता है और मन मर जाता है। आपने बहुत सुंदर इबारत लिखी है सखी, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आज हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। थोड़ा कयास लगाइए, दिमाग पर जोर डालिए। ये कार्यक्रम में यही तो मजा है। हमारे कई श्रोता थोड़े से नाराज हैं कि भाई कैसे पता लगाएं, अगर हम ये गाना लिखते हैं तो पता चलता है कि कुछ और निकल आया है, तो क्या हो गया। ये एक मजाक होती है हार जीत तो, लेकिन कितना मजा आता है कि आपने उन गानों को चुना तो सही। हो सकता है आपकी जो च्वाइस है, आपकी जो सोच है, या जहां तक आपने सोचा शायद वो गीत हमने नहीं चुने हो, इसमें क्या हो गया। और अगर चुन भी लिए तो और भी अच्छी बात है कि आपकी और हमारी पसंद एक हो जाती है। तो दिमाग की कसरत है ये, और जब आप दिमाग की कसरत करेंगे, जैसे गणित विषय पर हम करते हैं ना, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल, तो कितना दिमागी कसरत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार की कसरत है इस कार्यक्रम में। और इस कसरत का आनंद लीजिए ना। एक श्रोता लिखते हैं कि दुख के सागर में डूबे नैना, पीड़ा की गिरोहों में उलझी जिंदगी, कभी खुद को ही भूल जाती है, हर खुशी लगती है अजनबी, ये मौसम, ये बहार, ये शाम सुहानी, सब कुछ जैसे बेकार लगे, तन्हाई की चादर ओढ़े मन, अपने ही भीतर हार लगे, ओरे मन सुन जरा वो पुकार, कहीं कोई तेरा करे इंतजार, दर्द के उस पार भी देख जरा कोई तुझसे ही करे प्यार, महबूबा की वो धीमी आहट हवा में घुलकर तुझे छूती है, रूह के सुने आंगन में आकर सुकून की ज्योति से जलती है, एक बार तो महसूस कर ले इस प्यार, इस प्रकृति की सरगम को, बाहर भी है दरिया भी है धड़कन के इस आलम को, ये दुनिया बाहर जितनी सुंदर उतने ही तेरे भीतर है, खुद से मिलना सीख ले मन, यही असली मुकद्दर है, हाँ सच है मन जीना चाहे पर तन हर पल ढलता जाए, इस क्षणभंगुर जीवन में ही जीने का अर्थ निखरता जाए। और आपने लिखा है तो हर पल को गले लगा ले, दर्द में भी मुस्कान सजा ले, सुरीले सफर में आज अपने दिल को फिर से जगा ले। बहुत सुंदर लिखा है आपने, भावों का ये सागर बहता है, सुरीला सफर के इस मंच पर हर दिल खुद से मिलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जनाब आप इतने शानदार कवि हैं, आपकी कविताओं से हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए आज कौन कौन से गीत हैं। और ये जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, इसमें गायक कलाकार कौन थे, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ, ये आवाजें लता मंगेशकर और किन की थी आपको ही बताना है। राजा मेहदी अली खान के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आदरणीय, ये एक ही शब्द से बहुत सारे गाने होते हैं, आप कौन सा शामिल करोगे ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये इसमें ऐसा सोचना ही क्यों है हुजूर? आपने अगर एक ही शब्द के कई गाने निकाल दिए तो कोई गाना तो मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट से, और अगर ना भी मिले तो ये कोई पेपर थोड़ी है जहां हम पास या फेल हो जाएंगे। ये कार्यक्रम है जहां हम इस सुरीले सफर का आनंद लेना चाहते हैं, सिर्फ आनंद उस संगीत का, उस अनमोल, उन अनमोल गीतों का जो हमारे सुनहरी जो गीत संसार है, संगीत की दुनिया है, उन अनमोल गानों का हमें सिर्फ आनंद लेना है। और उस आनंद में, खेल खेल में हम एक कार्यक्रम लेकर आपके लिए आए हैं जहां आपको बताना है कि क्या इस शब्द से जुड़े गीत आपने जो चुने हैं वो हमारी पसंद से मेल खाते हैं कि नहीं। बस इतनी ही तो बात है। जैसे अभी हमारी इबारा आपने पढ़ी थी उसमें नैना शब्द भी आया था और पीड़ा शब्द भी आया था, तो ये गाने आपको मिल गए नैना वर्से रिमझिम रिमझिम, है ना, और मैं कासे कहूं पीड़ अपने जिया की। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को बुना गया है। और अगर हो सकता है आपने इस तरह के और गाने चुने होंगे वो आप हमें लिखें तो वो भी अच्छा लगेगा कि हमारे श्रोताओं ने मशक्कत तो की। एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज का सफर सुरीला तो है फिर भी मन को अंतर्मुख कर देने वाला है, शब्द तो आसानी से चुन लिए जाएंगे परंतु अर्थपूर्ण गीत चुनने में कठिनाई आ रही है, फिर भी हमने ट्राई किया है। ये शाम की तन्हाइयां, ओरे माझी, हमने देखी है सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाएं, जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना है मरना सीख ले, एक बार जरा फिर कह दो, देखो मौसम क्या बाहर है, आगे भी जाने ने तू। बहुत सारे गीतों को आपने लिखा और हमें अच्छा लगा कि आपने एक मेहनत हमारे सामने रखी है कि ये गीत आपकी इबारत से मिलते हैं। हो सकता है इसमें एकाध गीत आपकी जो आपने चुना है वो हमारी इबारत में हो। एक श्रोता ने तो और भी अच्छे तरीके से अपनी बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि सुंदर इबारत दी है आपने दीदी, इसमें भावनाएं, प्रकृति और प्यार तीनों का खूबसूरत मेल है। इस इबारत से गानों के लिए जो संभावित शब्द निकलते हैं वो इस तरह हो सकते हैं, दुख दर्द, सागर, नैना, जिंदगी, बाहर, शाम, तन्हाई, मन, महबूबा, प्यार, प्रकृति, रूह, सुकून, दरिया और जीवन। यानी आपने उन शब्दों को कहीं ना कहीं टटोला है और उनसे जुड़े गीत हमारे इस इबारत में होंगे या आज की महफिल में होंगे, इस जो कार्यक्रम है सुरीला सफर में होंगे, ये आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी अभिव्यक्ति दुख की गहराइयों से निकलकर प्रेम और प्रकृति की उड़ान भरती हुई जीवन के द्वंद्व को सुंदरता से बयान कर रही लगता है। ये पंक्तियां जीवन के सबसे गहरे द्वंद्व, दुख और प्रेम, विरह और प्रकृति और नश्वरता और शाश्वतता को बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। नैना दुख के सागर में डूबे हों, जिंदगी पीड़ाओं में उलझी हो, फिर भी महबूब की पुकार और बाहर चहक रूह को छू जाती है। बाहर प्यार और दरिया की रवानगी ये सिर्फ बाहरी नजारे नहीं है बल्कि ये हमारे अंतर्मन के ही विस्तार हैं। मन जितना जीना चाहता है तन उतना ही मरना जाता है, बढ़ता जाता है। इस शाश्वत सत्य को जीवन का सार है, पहचान लेना चाहिए और हर पल को जीने की प्रेरणा ले लेनी चाहिए। यकीनन इसे महसूस करने मात्र से सुकून मिल सकता है। बिल्कुल, सुकून मिलता है जब हम गहराई से जीवन को जीते हैं। तो

0: जी, तो हमने जैसा कि कहा कि आज इस कार्यक्रम में एक प्रयोग हमने किया है, उन आवाजों को शामिल किया है जो गीतकार के रूप में है या फिर संगीतकार के रूप में है और कभी कभी किन्हीं किन्हीं गीतों में सुनाई देती है। एक सवाल हम थोड़ी देर बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि जो गीत अब तक आपने सुना उसमें वो खास आवाज किसकी थी और अब जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज किसकी है।
1: माझी

शैलेंद्र सिंह का शैलेंद्र का लिखा गीत था और एसडी बर्मन का संगीत था। फिल्म का नाम था बंदिनी। आवाज आपको बतानी ही है किनकी है और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मंदाकिनी जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत जिस गीत से की बहुत ही सुरीला गीत है और सबसे बड़ी बात कि वो जो गीत है मदन मोहन जी की आवाज से आपने शानदार शुरुआत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने भी अपनी बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखी है। हम यूं कह सकते हैं कि उन्होंने भी इस विषय पर एक इबारत खुद लिख दी है। एक सखी लिखती है कि उदासी की चादर जब रूह को घेर लेती है तो दुनिया की हर रौनक फीकी और हर शोर बेगाना सा लगने लगता है। ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया है और खुशियों का रास्ता भूल गया है। लेकिन ए दिल जरा ठहर, खिड़की के बाहर उस ढलती सूरज की लालिमा को देख, उन परिंदों की चहचहाट को सुन जो थक कर भी मुस्कुरा रही है। तेरा हम सफर, तेरी अपनी अंतरात्मा तुझे पुकार रही है, उस साहे को महसूस कर जो हर हाल में तेरे साथ है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक शांत यात्री है, प्रकृति उसका आश्रय स्थल जो भटकते हुए मन को निर्मलता और स्थिरता प्रदान करती है। कस्तूरी मृग की तरह भटकता हुआ मन प्रकृति की गोद में आनंद पाता है। हरी भरी प्रकृति माँ की तरह मन को एकाग्र

कर सकती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी प्यारी प्यारी है, तन्हाइयां, किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग, जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। ये सच है, पर सिर्फ खुद से ही सबसे प्यार करना सिखा देती है प्रकृति, बस कोई इससे जुड़ के देखे तो सही। वो हमें बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है, हम ही हैं जो मोबाइल से लगे रहते हैं और थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं प्रकृति से और उसे निहारते तक नहीं है। बहुत सुंदर। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, मोबाइल, जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने बंदिनी फिल्म

चलते हैं प्रकृति से और उसे निहारते तक नहीं है। बहुत सुंदर। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है मोबाइल, जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने बंदिनी फिल्म का गीत सुना था, कलाकार का नाम आपको बताना है, और एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पूछ ले सीधा साधा सवाल है और सीधा साधा जवाब है कि जब हमने एक प्रयोग आज किया है कि उन आवाजों को हम गीतों में लेकर आए हैं जो कभी कभी सुनने को मिलती हैं, वो गीतकार की आवाज हो सकती है, वो संगीतकार की आवाज हो सकती है ना। तो एक गीत ऐसा है जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो जोड़ी है, उसके संगीतकार जो लक्ष्मीकांत जी हैं, उन्होंने उस गीत में अपनी आवाज दी है। और शायद ये भी सच है कि वो एक ही मात्र गीत है जिसमें लक्ष्मीकांत जी ने अपनी आवाज दी है। वो कौन सा गीत है? हमने उस गीत को इस लिस्ट में आज के सुरीले सफर में शामिल नहीं किया है, आपको बताना है वो कौन सा गीत है। और सुरीले सफर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर और एक और आवाज। फिल्म का नाम मोम की गुड़िया, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लता मंगेशकर के साथ ये आवाज किसकी है आपको तय करना है।

जी तो आपको बताना है फिल्म मॉम की गुड़िया का ये गीत लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और हम आपको बता दें इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें हंसी इसलिए आई कि जो हमारे जागरूक श्रोता हैं, संगीत प्रेमी श्रोता है, वो तो समझ गए होंगे कि ये आवाज किसकी थी। एक श्रोता लिखती हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने वैसे लिखा है कि मंदाकिनी जी आपने पहले मदन मोहन जी को सुनवाया था और उसके बाद SD बर्मन जी की आवाज में आपने एक से बढ़कर एक गीत सुनवा रही हैं आज आप। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक श्रोता लिखते हैं कि वो जो गीत आपने वो कौन थी फिल्म का सुनवाया था, उसमें लता जी के साथ तलत महमूद साहब थे। जी नहीं, लता जी के साथ मदन मोहन साहब साथ थे। हाँ, नैना बरसे रिमझिम एक कालजयी गीत है ये, जो मदन मोहन जी की आवाज में है, और उससे पहले तो आपने सुना ही था जो गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म दस्तक का, मदन मोहन जी की आवाज में माहिरी मैं कासे कहूं पीड़ अपने जिया की। तो अब अगला सवाल वही कि मोम की गुड़िया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और आप बहुत सारे श्रोता अपनी जो है प्लेलिस्ट हमें दे रहे हैं कि हमने इन इन गीतों को चुना है। कोई बात नहीं, आपके गीत अगर हमारी गीतमाला से मेल नहीं खा रहे तो क्या हुआ, गीतों का आनंद तो ले रहे हैं और आपने एक कोशिश तो की है कि हाँ ये गीत आज के इस कार्यक्रम में हो सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि आपने जो है कुछ बातें, कुछ गीत और विविध भारती गीतमाला जैसे कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, सुरीला सफर कार्यक्रम भी हमें 50% अच्छा लग रहा है और हमें मजा तो आ रहा है, लेकिन 50% देखिए धीरे धीरे आपको 100% इसमें मजा आने वाला है। जैसे जैसे हमारे दिमाग खुलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पसंद, हमारे विचार और गीतों के लिए दौड़ेंगे ना, तो अच्छा लगेगा कि अरे वाह हम आपकी प्लेलिस्ट के करीब पहुंच गए हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से कि रविंद्र जैन जी के गीत की पंक्तियां याद आ रही है, मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए, इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए। बिल्कुल आपने सही लिखा है और ये गीत आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। कौन सा गीत है ये, इसका जिक्र अगर आप कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका स्वागत है। आज के सफर में इबारत में अनसुलझे रहस्यों के बीच उनके मधुर आवाज के साथ मनमोहक गाने सुनने को मिलने वाले हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर का प्रारूप आपने जिस तरीके से तैयार किया है, उस प्रारूप में कई भ्रांतियां सामने आ रही हैं, जिससे ये महसूस होता है जैसे कि शब्द गाने में हो या नहीं, शब्द गाने में हो या नहीं मायने नहीं रखते, भावार्थ पर भी गाने बज सकते हैं, जैसा कि कल पहले गाने में हुआ, यानी कल के किसी कार्यक्रम में हुआ, इसके बाद श्रोताओं द्वारा कोई गाना सोचना बेमानी सा लगता है। दूसरा इन्होंने लिखा कि शब्द का अनुमान सही हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाना शब्द से शुरू होगा या मुखड़े में कहीं भी होगा, इसका कोई निर्देश नहीं है, किसी विशिष्ट दिन को परिभाषित करने का कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में श्रोताओं के पास कोई विकल्प नहीं है, हम कहेंगे आम तो निकलेगा या इमली, किसी श्रोता को मेरी बात गलत लगे तो साझा कर सकते हैं। अरे बात वो नहीं है कि आपने गलत लिखा है, सही आपका द्वंद्व, आपकी सोच अपनी जगह सही है कि भाई हम किसी गाने को सुनते हैं तो हमें क्या बदले में वो गाना सुनने को मिल जाएगा, यही तो इस कार्यक्रम का मजा है ना, कि आपने क्या चुना, आपकी आपका जो चुनाव है वो हमारे चुनाव से मिलता है या नहीं, यही इस कार्यक्रम का एक कहते हैं कि मोटो है कि इस कार्यक्रम को इसी तरीके से बुना गया है। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए अगला गीत सुनने के लिए, लता मंगेशकर के साथ कौन सी आवाज है ये, फिल्म का नाम है आजाद। और हाँ, हमारी इबारत पढ़कर बताइए कि आपकी लिस्ट में और कौन कौन से गाने हैं जो हमारी लिस्ट से मेल खाते हैं।

जी हाँ, कितना हंसी है सफर, कितना खूबसूरत मौसम है और साथ ही आप सभी हमारे खूबसूरत जो हमारे साथ चल रहे हैं। अब बताइए ना, इतने सुरीले सफर में अगर हम मनोरंजन नहीं करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए तो फिर किसका दोष? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत था ये। आपको बताना था कि लता मंगेशकर के साथ कौन कलाकार है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये चितलकर साहब हैं और सी रामचंद्र के नाम से ये संगीत देते हैं और बहुत ही मधुर आवाज के धनी हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात को लिखा है कि चितलकर साहब की आवाज है जो सी रामचंद्र के नाम से जानी जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 100 बातों में से एक बात इस कार्यक्रम में असल चीज मनोरंजन है जो कि 100% होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक और गीत आनंद बख्शी जी का गाया हुआ था, इसमें आपने चरस फिल्म का गीत नहीं लिया, आजा तेरी याद आई। बिल्कुल सही कहा आपने, अगली बार जब कभी भी ऐसी कोई इबारत हम गढ़ेंगे जिसमें यादों की बात होगी तो हो सकता है ये गीत हो जाए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा था तो दिलीप कुमार के लिए तलत महमूद साहब की आवाज थी। जी नहीं, ये नहीं थी, ये चितलकर साहब की आवाज थी, श्री रामचंद्र साहब की आवाज है, हमारे श्रोताओं ने लिख भी दिया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर लग रहा है और आपने पूछा तो हम बता देते हैं कि ये आवाज जो अभी आपने थोड़ी देर पहले गीत सुनवाया था, गीतकार आनंद बख्शी साहब की थी। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गीत लता मंगेशकर के साथ फिल्म मोम की गुड़िया का था, बागों में बहार आई, इसमें लता जी के साथ

आनंद बख्शी साहब गीत को गा रहे थे। और अब वो पुकार जो हम से हर एक को अच्छी लगती है, हमारा महबूब या हमारी महबूबा जब हमें पुकारे महबूबा महबूबा, तो सोचिए कितने दिल खिल जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना आपके साथ भी, बताइएगा जरूर। कौन से कलाकार हैं आप सभी को मालूम है, फिर भी बताइएगा किस कलाकार ने इस गीत को आवाज दी है।

जी, तो मजा आ गया ना इस गीत को सुनकर। जरूर आप थिरके होंगे, बताना यकीनन आपके पैर बिल्कुल थिरके होंगे, मुझे विश्वास है। और वैसे भी सुरीले सफर का जो हमारा मंतव्य हो यही तो है कि दुखों से निकलकर हम थोड़ा सा खुशी की दुनिया में चले जाएं, जहां हमारे पैर थिरके, जहां हमारे लब मुस्कुराएं और गुनगुनाएं। तो बस वही एक कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए कि हमारे श्रोता जो सुरीले सफर में हमारा साथ देते हैं वो इस कार्यक्रम में अंत तक हमसे जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ कभी कभी जो दुख और परेशानियां आती हैं उसे भी मुकाबला करते रहें। देखिए ना, आप में से कितने श्रोताओं ने कितने सही जवाब दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई आपका जो सवाल था मंदाकिनी जी कि लक्ष्मीकांत जी ने किस फिल्म के लिए गाना गाया था, वो फिल्म थी देश प्रेमी गोरे नहीं।

0: हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, है ना? वो गीत याद आया हमको? गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। ये गीत में जो है लक्ष्मीकांत जी की आवाज थी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारस मणि जो 1963 की फिल्म है, इस फिल्म में भी संगीत के साथ साथ लक्ष्मीकांत जी की आवाज के कुछ अंश मिल सकते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दोस्ताना 1980 की फिल्म, इस गाने के कुछ हिस्सों में लक्ष्मीकांत जी ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ अपनी आवाज दी है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक पहुंचा दिए हैं कि अब तक जो गीत हमने आपको सुनवाए उनमें कौन कौन से कलाकार थे। तो अभी जो गीत आपने सुना फिल्म शोले का, महबूबा महबूबा, ये गीत किस कलाकार ने गाया था आपको पता है, लेकिन आपको हमें बताना है। तो चलते हैं सुरीले सफर के इस सफर में थोड़ा सा और आगे।
1: झुके जो तेरे नैना,
0: जो ये गा रही हैं वो कौन है?

कंगन फिल्म का गीत था, महेंद्र कपूर की आवाज थी और साथ में जो गा रही थी ये आवाज किसकी थी आपको बताना है। गीतकार अनजान थे और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे गाने हैं और हम उन गानों का आनंद उठा रहे हैं। यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर का ये गीत नजर आएंगे इबादत पढ़ने से। और एक श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत में कई शब्द अपने साथ एक कहानी लेकर आए और कुछ शब्द दो तीन दिनों से बार बार अपनी जगह कायम किए हुए हैं। इसलिए आज दुख सागर नैना और उलझी जिंदगी का दर्द बयां करते हुए महबूब प्रकृति प्यार का दामन थामे मन के शाश्वत सत्य को पहचान कर हल पल जीने की बात कर रहा है। अच्छा बताइएगा कौन से शब्द हैं जो दो तीन दिनों में बार बार अपनी जगह कायम है, उसका जिक्र कीजिएगा ताकि अगली बार जब हम अपनी इबारत लिखें तो ध्यान रखें कि उन शब्दों का इस्तेमाल बार बार नहीं हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमारी शादी की 33वीं सालगिरह है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह फलते फूलते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह है। अच्छा, आप थोड़े से नाराज लग रहे हैं। आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। प्रियतमा और प्रियकर एक दूसरे से कब मिलते, कब दिल से दिल मिलता है, ये दोनों के समझ में नहीं आता। क्या प्यार इसी को कहते हैं? विचार पूर्वक सोच समझकर जो होता है उसे प्यार नहीं कहा जाता। किताबों में छपते हैं चाहत के किसे, हकीकत की दुनिया में राहत नहीं है। ये बेकार बेकाम की चीज है। मोहब्बत को झूठी कहानी कहकर उसी झूठी कहानी पे रोने वाले हैं। प्यार किसी ने किया, प्यार लैला ने किया, प्यार राधा ने किया, प्यार मीरा ने किया, सबका प्यार एक ही है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला को सराहा गया और आम आदमी के प्यार को समाज ने कभी शिरीन फरहाद की बात आप कर रहे हैं स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही कुछ किस्से कुछ गीत सुनने के लिए आज का सुरीला सफर शुरू होने वाला है, इंतजार कीजिए। अच्छा, आप नाराज तो नहीं है ना? हम तो डर गए थे कि आप क्या लिखने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं आपके साथ लेख में आए शब्दों को देखते बजने वाले गीतों की संभावना तलाश कर रहा हूं। बहुत सुंदर बात, ताकि अगली बार आपकी तलाश खत्म हो जाए, है ना, आप लिख पाए वो गीत जो हमारी इबारत में लिखे हुए हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जरा सी दुख भरी लग रही है इबारत, गमगीन गीत ज्यादा होंगे। नहीं है ना, मिले जुले गीत है, क्योंकि जिंदगी भी तो मिली जुली है, कभी खुशी कभी गम। एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक अशांत यात्री है और प्रकृति उसका आश्रय स्थल। अच्छा, ये तो हमने पढ़ दिया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी प्यारी प्यारी है, तन्हाइयां किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो खुद से प्यार कर लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो समूह में रहने वाले प्राणी हैं, धरा पर अकेले रहकर जी नहीं सकते, इसलिए कोई प्रिय व्यक्ति पुकार रहा हो तो उसकी पुकार सुन लेनी चाहिए और अपने अंतर मन से महसूस करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वही जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, महबूबा महबूबा। तो कोई आपको पुकार रहा है प्यार से तो उसे सुनिए, क्यों पुकार रहा है, उसको आपकी क्या जरूरत है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सभी जिंदगी में ही हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन की चंचलता को हवा की गति से भी तेज माना गया है, जो पल पल में सुख दुख यादों सपनों और चिंताओं में भटकता है। मन को एकाग्र कर प्रकृति की स्थिरता और जीवंतता के द्वारा संयमित किया जाना चाहिए। और यहाँ इस संदर्भ में प्रकृति को केवल एक परिदृश्य नहीं मन लेना है, बल्कि यहाँ प्रकृति एक माँ, सहचरी और एक शिक्षिका भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और हमारे श्रोता इतनी सुंदर इबारत लिखते हैं कि मुझे लगता है कि लगभग हर एक श्रोता लेखक है और उसे एक किताब लिखनी चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये बताइएगा कि कंगन फिल्म में महेंद्र कपूर के साथ वो कौन थी जो गुनगुना रही थी। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ, फिल्म का नाम है एक बार कहो। माया गोविंद की रचना है, बप्पी लाहिड़ी की धुन है, सुलक्षणा पंडित की आवाज है, और साथ में कौन कलाकार गा रहे हैं आपको पता है, फिर भी हमें बताना है।

जी हाँ, हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही कहा कि महबूबा महबूबा गाना जो है राहुल देव बर्मन की आवाज में था। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं। इस गीत में किसकी आवाज थी, पुरुष स्वर किसका था, आपको बताना है। और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

जी, ये अवस्थी रविंद्र जैन साहब की और फिल्म का नाम था अखियों के झरोखों से। और इससे पहले का गीत जो हमने आपको फिल्म एक बार कहो से सुनवाया था, अभी तक आपके जवाब तो नहीं आए, उसमें सुलक्षणा पंडित के साथ थी बप्पी लाहिड़ी है ना। और अब आज का सुरीला सफर यहीं खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया और अंत तक बने रहे, आपके विचार हम तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्यागपत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज

0: अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
0: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाले किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
3: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज

0: नहीं पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। यह निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियोर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा अगर

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
2: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लीपुरोति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर दो विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था।
3: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये सारी की कोशिश है, एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ, तो इन्वेस्टिगेशन जरा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु

पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सा उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 2:30 और पूरे 15 सेकंड हुए हैं। वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। दोस्तों, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल किसी हीरो के जैसे नहीं होते हैं, न ही उनकी आवाज में वो भारीपन होता है, मगर जब भी वो पर्दे पर आते हैं तो ठहर जाती है हर एक नजर। वो कभी मुनीम जी बनकर हिसाब मांगते तो कभी लालची साहूकार बनकर आंखें दिखाते, मगर असल में वो अपनी सादगी से हर दिल को जीत ले जाते। जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। और कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज एक ऐसे कलाकार को याद करेंगे हम जिसके बिना बॉलीवुड का वो सुनहरा दौर अधूरा सा लगता है। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी नेजल वॉइस से, यानी कि नाक वाली आवाज से, और अपने एक अलग ही अनोखे अंदाज से छोटे छोटे किरदारों को भी असरदार बना दिया। वो किरदार कभी बहुत बड़े रूप में फिल्मों में नहीं आया, छोटे छोटे उसने किरदार निभाए, लेकिन वो छोटे छोटे किरदार भी उसकी एक पहचान बन गए। जी दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम उसी कलाकार के नाम, उस कलाकार का नाम चंद्रशेखर दुबे, यानी कि हम सबके चहे थे सी.एस. दुबे साहब।

जी दोस्तों, जब भी सीएस दुबे साहब के बारे में सोचते हैं या उनका नाम आता है तो जहन में कैसे शख्स की छवि उभर आती है जो या तो पर्दे पर डांट खा रहा होता है या फिर किसी के सामने कुछ चालाकी से कुछ हरकतें कर रहा होता है। लेकिन आपने कभी गौर किया, उनकी डायलॉग डिलीवरी में एक लय था। वो शब्दों को कुछ इस तरह से चबा करके बोलते थे कि दर्शक कभी उन्हें भूल ही नहीं पाए और ना ही भूल पाएंगे। आप देखिए, जब भी वो सिल्वर स्क्रीन पर नजर आते तो उनको देखने के बाद में या तो हमारे जहन में उनके लिए नफरत आ जाती थी या उनको देख के हंसी आ जाती थी, क्योंकि वो किरदार में इस कदर डूब जाते थे कि वो चाहे

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मदारी, फारूक केसर की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी की धुन थी।

ये स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की फिल्म का नाम दो गुंडे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद।

कार्यक्रम का अगला गीत दीपक का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम चंद्रसेना।

कार्यक्रम में पंडित भरत व्यास का गीत सुनिए। कल्याण जी वीर जी शाह की संगीत रचना है। लता मंगेशकर और

0: है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
2: पल पल दिल के।
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: आशा भोसले और महेंद्र कपूर को सुनिए, फिल्म का नाम है धूल का फूल। रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत एन दत्ता का।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भाई बहन का गीत, युगलस्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, शब्दकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार एन दत्ता हैं।

इस युगल गान के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार और मंजरी जी आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नेहा तुमको और सुनने वाले सभी सखियों और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और नेहा एक धुन बज रही थी थोड़ी देर पहले कि दोनों किसी को नजर नहीं आए।
0: हाँ
1: है ना, और चल सखी सहेली में धूम मचाए।
0: नजर तो हम नहीं आएंगे लेकिन अपनी बातों के जरिए हम सभी श्रोताओं से जुड़ जाएंगे।
1: बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और देखो हम सबसे पहले तो विषय ही बता देते हैं कि भाई शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग
0: क्योंकि बहुत जरूरी विषय है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथियों ने भर भर के संदेश भेजे हैं तो पढ़ने में मजा भी आएगा नेहा। और व्यंजन में फलों के जायके, इसके बारे में हम बात करेंगे।
0: और साड़ियों का संसार, क्योंकि अब शादी के सीजन में जाएंगे तो साड़ियों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो आज बात होगी चिकन की साड़ियों की। और शब्द हमारे विचार आपके में हमने आज कौन सा शब्द दिया है?
1: सामंजस्य। जैसे कि हम लोग बैठ के बातें करते हैं तो प्रोग्राम में भी सामंजस्य बिठाते हैं।
0: हाँ?
1: तो हमारे सभी श्रोता भाई लोग अपने इस बातें लिखे हमें संदेश में और हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम सोचते हैं

0: तो हम अकेले कहीं भी नहीं जाएंगे, हम साथ में चलेंगे, सभी मिलजुल कर।
1: बिल्कुल सभी चलेंगे, क्योंकि भाई देखो शादियों का सीजन है।
0: हाँ
1: तो चलो चलते हैं, हम लोग तैयार तो हो ही गए बढ़िया से, चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे भोजन लगे हुए, बहुत सारे सलाद के आइटम तुम्हें दिख रहे हैं ना, आइसक्रीम दिख रही है, रसगुल्ले दिख रहे हैं ना,
0: हम तो वही सारी चीजें ही देखते हैं। पहले खाने पीने में क्या है, वही चावल दाल सब्जी रोटी, अब देखना है तो कुछ आइसक्रीम देखा जाए, गुलाब जामुन वगैरह, कुछ मिठाइयाँ देखी जाए।
1: बिल्कुल, और जाते ही हम लोग की नजर ऐसे ही पड़ जाती है कि क्या क्या चीज अच्छी है, और अगर कुल्फी दिख जाए इन दिनों तो बहुत मजा आता है। कुल्फी के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है, लोग खाना भूल जाते हैं, पहले वो सब खाने लग जाते हैं। लेकिन जो शादियों के सीजन में क्या होता है नेहा, अक्सर हमने देखा है कि खाने की बहुत बर्बादी होती है, लोग प्लेटों में सब चीजें एक साथ ही परसने लग जाते हैं, एक चमचा इसका, एक चमचा उसका, एक चमचा कढ़ी का, एक चमचा दाल का, तो ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें हो जाती है। फिर उसमें जब खाया नहीं, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, तो वो चीजें बचती जाती, फिर बहुत सारी चीजें इसी तरह फिकती बहुत है कहना चाहिए।
0: हाँ और बहुत सारी ले लेते हैं ऐसे, चले ठीक है सारी चीजें अगर मेरे को चखने का मन भी है तो थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं चखने के हिसाब से, फिर लगता है कि इतनी लाइन लग जाएगी, फिर हम कब आएंगे कैसे करेंगे, तो इसके लिए वो ज्यादा ज्यादा ले लेते हैं कि अगर अच्छी लगी तो हमें एक कटोरी खानी है, तो वो पूरी एक कटोरी भर लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं लगी तो एक कटोरी वेस्ट भी तो जाएगा।
1: हाँ लेकिन वो भरते बहुत है, इसी तरह कई तरह के सूप के स्टाइल भी दिख जाते हैं, तो टमाटर का सूप ले लिया और ये अपने दूसरा सॉस वाला सूप ले लिया, तो इस तरह से बहुत सारे सूप होते हैं, कॉर्न सूप ले लिया, तो इतनी सारी चीजें हो जाती है कि आप एक के ऊपर एक परत लगाते जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप जब अच्छा नहीं लगता तो आप छोड़ देते हैं।
0: हाँ और आप अपने शरीर के अंदर भी क्या क्या छोड़ रहे हो, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि खाना

0: आमतौर पर शादियां शाम को होती हैं, रात में खाना मिलता है उसमें, तो रात में जब आप ये खाते हैं, तेलीय भोजन खाते हैं, सूप या ग्रिल्ड पनीर जैसी चीजें अगर आप लेते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको ऐसे लेते हो कि कुछ दूसरी चीजें ले लेते हैं आप खाने के लिए, जो एकदम पूड़ी वगैरह ले ली आपने, बहुत सारी मिठाइयां खा ली, और तो ये रात में आपको परेशान भी कर सकते हैं।
1: लेकिन अब शादी में गए तो कोई सोचता भी नहीं, बहुत कम ही लोग हैं जो इस चीजों पर ध्यान देते हैं। और कई बार नेहा देखा है कि बहुत सारे सलाद के स्टाल लगे होते हैं तरह तरह के, तो लोग उसको भी लेने लग जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि ये इतना आपको आप खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, तो वो सब चीजें आप ऐसे ही प्लेट रखते जाते हैं। कई बार तो होता है प्लेट में सलाद पर सा नहीं पसंद आया, वो प्लेट ऐसी आपने उसमें डस्टबिन जो रखा रहता है उसमें डाल दिया, फिर आपने दूसरी प्लेट ले ली। तो आजकल प्लेटों का भी एक सीमित क्वांटिटी में आप यूज करें, उसका भी अलग अलग पेमेंट।
0: मेजबानों की बात को आपका ध्यान रखना चाहिए कि आपने भले ही एक सलाद खा के प्लेट नीचे रख दी है, लेकिन जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो प्लेट्स गिनकर ही पैसे लेते हैं कई बार, तो आपने भले ही कुछ नहीं खाया उसमें लेकिन पैसे उसके देने पड़ रहे हैं। तो एक तो एक ही प्लेट यूज कर सकते हैं, और दूसरा काम ये कि थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे बुफे सिस्टम का वो रहता है, आमतौर पे सब अपना खाना खुद लेकर खाते हैं, तो ऐसे में अगर आपने एक बार अपनी प्लेट सजा ली है तो हमने तो अब तक जितना जाना है, तो वही एक सिस्टम है कि अगर आपने अपनी प्लेट सजा ली और आपने खाना शुरू कर दिया है तो आप लाइन के बीच में भी जाकर अपना खाना ले सकते हैं, आपको पूरी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। तो आप थोड़ा थोड़ा अगर ले लेते हैं तो वो खत्म होने के बाद आप फिर से ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं,
1: आराम से ले सकते हैं,
0: और गर्म भी मिलेगा।
1: बिल्कुल गर्म भी मिलेगा। और जो शादियों में बच्चे खाने का जो सबसे अच्छा उपयोग होता है कि आप उसको सुरक्षित तरीके से आप किसी को जिसको आप बांट सकते हैं, जिनको जरूरत है, भूखे हैं, मंदिर के आसपास आपको लोग मिल जाएंगे बैठे हुए, जिनको बहुत जरूरत है, आप उनको वो खाना अच्छे से पैक करके जो खाना बच रहा है आप उनको पहुंचा दे तुरंत ही, तो उससे भी एक होता है कि हमने किसी के भूखे का पेट भर दिया है। तो खाने को आप इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए कहना चाहिए, और बच्चे खाने को दूसरों के साझा के साथ साथ एक सुनहरा मौका भी होता है कि हम इसको बनाए रखें, इस चीज को जो हम साझा कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे की एक दूसरे को अच्छा भी लगता है कि हम लेके गए, और दूसरे की आत्मा को संतुष्टि मिलती है उस भोजन को करने से, और बांट कर खाने से तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और बहुत सारी संस्थाएं भी हैं और कार्यालय भी हैं जो यहाँ पर भी आप इन चीजों को दान कर सकते हैं।
0: जी, कई ऐसे आश्रम है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, और उसके साथ साथ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जिनकी जानकारी हर शहर में अलग अलग होती है, लेकिन क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है तो आप सर्च कर सकते हैं। आपको खुद खाना लेके जाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपके पास सुविधा नहीं है, क्योंकि शादी का काम है, दुनिया भर के काम है, आप नहीं जा सकते, तो आप सिर्फ उन्हें फोन कर सकते हैं या एक दिन पहले से भी उन्हें बता सकते हैं, और उसके बाद आप उन्हें फोन करके और उन्हें बता दें, तो बस खाना पैक करना होता है, जो कि क्योंकि केटरिंग के लिए अलग से व्यक्ति होते हैं, उन्हें आप बोल दें तो वो पैक कर देंगे और अपने आप खाना आपका घर से ही चला जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और नेहा, जब जैसे कि भोजन में आप जैसे बनवा रहे हैं, तो जैसे बुफे में एक साथ बहुत सारा खाना लेने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा ले, पसंद आए तो दोबारा उसको ले सकते हैं, मतलब कहना चाहिए छोटे छोटे पोर्शन में आप खाना लीजिए, और प्लेट में उतना ही ले जितना खा सकते हैं। शादी में अक्सर लोग टेस्ट के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और छोड़ देते हैं, और
0: टेस्ट करने जितना ही लीजिए, तो पहले टेस्ट कीजिए, जो अच्छा लगा वो भर के
1: आप खाइए, और जो हमारा जो मेनू सेट करते हैं तो उसको भी सीमित रखना चाहिए, कि नहीं कि बहुत सारे खाने के आइटम रख दिए और एक जैसे कई सारी दालें रख दी, कई सारी रोटी रख दी, तो उनमें भी थोड़ी सी क्वांटिटी कम करें तो कुछ चीजें हमारी बच जाएंगी वेस्ट होने से।
0: तो ये मेजबानों के लिए है कि वो ऐसा ना हो कि बस हमें सबको सब चीजें खिला देनी है, कि कोई आए तो वो सोचे कि अच्छा 36 प्रकार के व्यंजन बने, ऐसा मत कीजिए। आप 16 भी रखेंगे तो भी बहुत ज्यादा ही है वैसे,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आप 16 भी रखेंगे तो भी लोगों का पेट भर जाना है, और जिन्हें नुक्स निकालना है उन्हें तो निकालना, उन्हें 36 में भी निकालना है, 16 में भी निकालना है।
1: जी, तो इसी तरह हम पानी की भी हमने देखी बॉटल होती है, लोग पूरी पूरी बॉटल छोटी ले लेते हैं, एक घुट पिया छोड़ दिया, या तो आप उस बॉटल को साथ में अपने पकड़े रहिए, जब तक उसका पानी ना खत्म हो जाए तब तक आप उसको पीते रहिए, ये ना कीजिए कि आपने लिया और छोड़ दिया। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखे हैं, तो कुछ संदेश पढ़ते हैं। तो हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
0: और एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में बचे हुए खाने का सही उपयोग, शादियों के सीजन में बर्बाद होता है, बहुत खाना बच जाता है या जूठा छोड़ देते हैं, तो जूठा तो नहीं छोड़ना चाहिए। वो भी वही कह रही है कि जितना खाना उतना लीजिए, क्योंकि अगर आपका खाना बन जाता है शादियां विवाह में, तो मैं बताती हूँ बचता है तो क्या करना चाहिए, कह रही है

0: एनजीओ में, कम्युनिटी, ये सब में दान दे सकते हैं जैसा कि हमने भी बताया। और ये खाना आप जब किसी को देते हैं, जो जूठा ना छोड़े, उसके लिए वो कह रहे हैं कि जितना खा सकते हैं उतना ही ले। तो देखिए हमारे श्रोताओं के विचार भी हमसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं,
1: बिल्कुल मिलते हैं, सामंजस्य उन्होंने भी बना के रखा। हाँ। और हमारे और साथी लिखते हैं नेहा कि शादियों में हमने वो समय देखा जब मेहमानों की पंक्तियों में बैठकर खाना खिलाया जाता था। खाना खिलाने वाला हर मेहमान के पास जाता था और पूछता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, सब अपना अपना लेकर खाते हैं। कुछ मेहमान और बच्चे जरूरत से बहुत ज्यादा अपनी प्लेटों में डाल लेते हैं और थोड़ा सा खाकर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। यानी कि पहले के जो हम लोग पतलों में बैठ के, जमीन में बैठ के खाते थे, उसमें
0: जो परोसा जाता था
1: वो पूछते थे कि और लेंगे, तो इस तरह से खाना थोड़ा बच जाता था।
0: लेकिन कभी कभी तो उसमें भी दे दिया जाता, अरे नहीं खाएंगे, खाइए, दो तीन रोटियां दे दी जाती थी जो कि बच जाती थी। पर ठीक है, सबकी नहीं होती थी, सब अपनी मनमर्जी से नहीं करते थे। और हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट और भारी भोजन के बीच स्वास्थ्य को बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। सही उपयोग और उपभोग करने के लिए कुछ सुझाव उन्होंने दिए कि खान पान में संतुलन रखें, भरपेट न खाएं, पार्टी में जाने के पहले घर पर कुछ हल्का खाकर निकलें। ये तो बड़ी अलग सी बात करें, लोग तो कहते हैं कि दो तीन दिन भूखे रहना चाहिए, इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया भाई?
1: तो अपने हिसाब से कहा, लोग बड़ा इंतजार करते हैं,
0: भूख के कारण जरूरत से ज्यादा न खाएं, प्लेट का चयन करें, सलाद और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें, प्लेट में 70% हिस्सा स्वस्थ विकल्प प्रोटीन सलाद लीजिए, बोले 30% मनपसंद व्यंजन रखें, तले हुए भोजन नहीं लें, ग्रिल्ड वाले ले लें या स्टीम्ड होते हैं, रोस्ट होते हैं, उन व्यंजनों को ले लें, मिठाई ना खाएं बोल रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी हमारे ऊपर ऐसा नियंत्रण लगा रहे हैं।
1: अरे बहुत
0: सामंजस्य से नहीं बैठ रहा है मेरा इस कमेंट के साथ, क्योंकि देखिए खाने पीने के लिए मना कर रहे हैं।
1: नहीं, मना तो कर नहीं सकते क्योंकि आजकल हमने देखा ना, आइसक्रीम लेंगे और उसके ऊपर या तो रसगुल्ला पहले लेते हैं, उसके ऊपर दो तीन तरह की आइसक्रीम डाल लेते हैं और बढ़िया एक डिश बना के उसको।
0: देखिए मंजरी जी, इतनी सादा खाने की बातें हो गई, हमारे एक श्रोता ने खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें मना कर दी, उन्होंने तो फुल डाइट के हिसाब से बता दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक अच्छी चीज जो कही है कि वृद्धाश्रम में जरूरतमंदों को अनाथालय वगैरह में दे देना चाहिए बचे हुए भोजन, और बहुत सी रॉबिनहुड आर्मी टाइप के इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं, वो सब कर सकते हैं। और उन्होंने टिप्स भी दिए कि धीरे धीरे चबाकर आराम से खाइए, और शादी में डांस करें या टहलें, ये कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं आखिर।
1: क्या बात
0: तो
1: है?
0: कह रहे हैं कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी, पर हम कह रहे हैं कि तुरंत खाते साथ डांस ना करें, नहीं तो फिर आपको काफी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो पहले अच्छे से पूरी कैलोरी बर्न कर लें जो आप घर से छोटा मोटा खा के आए, और उसके बाद खाएं, बस ज्यादा ना लें। देखिए खाएं सारी चीजें, उससे हमें कोई परहेज नहीं रखना है, लेकिन बस गाना सुनते रहिए।

0: तो इसी तरह से तैयार होकर सब पहुंच जाते हैं शादियों में शामिल होने के लिए। और खाने पीने के बारे में हमारे श्रोता जो है बहुत सी बातें लिख लिख के भेज रहे हैं मंजरी जी।
1: बिल्कुल, मतलब एक साथी लिखते हैं कि शादी के सीजन में भोजन का सही सदुपयोग। शादी विवाह खुशी का अवसर होता है, लेकिन अक्सर उत्सव में बहुत सा भोजन व्यर्थ चला जाता है। भोजन का सही सदुपयोग करना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन ले, भोजन की बर्बादी ना करे और बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों को तक पहुंचाने का प्रयास करें। इससे अन्न का सम्मान भी होगा और समाज में सेवा का भाव भी बढ़ेगा। भोजन का सही उपयोग ही सच्ची समृद्धि की पहचान है। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपने प्लेट में केवल उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। खड़े होकर खाने के बजाय बैठकर धीरे धीरे खाने से पाचन बेहतर होता है। स्वास्थ्य विकल्प चुनें, सलाद, सूप और फल से शुरुआत करें। भारी मैदे वाली रोटियों के गेहूं की चपाती या मिस्सी रोटी को प्राथमिकता दें। पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सके, लेकिन भोजन के तुरंत बाद बहुत पानी पीने से बचें। नेहा बहुत सुंदर सी बात लिखी, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो लोग पहले ही उसमें बैठ गए खाने के लिए, तो खाना भी खा चुके हैं लेकिन अब टेबल घेरे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है।
0: ये एक अलग समस्या है जिस पर हमें एक अलग विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। वैसे तो शादियों का सीजन शुरू है, ऐसा

0: साथी कह रहे हैं कि ज्यादातर शादियों में हम देखते हैं कि इतनी वैरायटी होती है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या खाएं। ऐसा लगता है कि भोजन की बर्बादी देखना हो तो ऐसे स्थानों पर आकर देखें। बहुत कम शादियों में खाने के आइटम कम होते हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ वहाँ ब्रेकफास्ट लंच सभी सुविधाएं, पर दो विद्यार्थी हमेशा ट्रॉली के पास ड्यूटी पर रहते हैं ताकि विद्यार्थी या अन्य स्टाफ भोजन व्यर्थ न जाने देवें। बच्चों को हम कहते हैं कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। काश इसे सभी समझे।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात है। और हमारे और साथी भी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में आजकल भोजन के कई स्टाल लगे होते हैं। इन शादियों में भोजन की बर्बादी भी होती है लेकिन इसका उपयोग नहीं होता। आजकल कई शहरों में संस्था है जो शादियों के में बचे हुए भोजन ले जाते हैं और जरूरतमंद के

0: कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, काश इसे सभी समझे।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात है। और हमारे और साथी भी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में आजकल भोजन के कई स्टॉल लगे होते हैं, इन शादियों में भोजन की बर्बादी भी होती है लेकिन इसका उपयोग नहीं होता। आजकल कई शहरों में संस्था है जो शादियों के में बचे हुए भोजन ले जाते हैं और जरूरतमंद के बीच बांट देते हैं। ऐसी व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए ताकि खाने की बर्बादी ना हो। आजकल शादियों में महिलाओं की पसंद साड़ी होती है, जितने प्रकार के
0: रस्में
1: होती है उतने प्रकार की साड़ी भी लेती हैं। यानी कि आप बहुत परेशान हो गए हैं,
0: गिनती करते हैं कि कितने कितने रस्में हैं उनकी सबकी साड़ियाँ।
1: बिल्कुल, और मतलब साड़ी
0: देखिए ये वाली नहीं हम ले रहे हैं क्योंकि हम खुद
1: भी हो गई है,
0: शिकायत हर शिकायत थोड़ी होती है, ऐसी ऐसी थोड़ी साड़ी भी तो लेने देने चाहिए ना।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग और उसकी बर्बादी को रोकना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे रोकना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारतीय शादियों में लगभग 40% तक तैयार भोजन बर्बाद हो जाता है जबकि बड़ी संख्या में लोग भूख से जूझ रहे हैं। तो भोजन का सही प्रबंधन करके पैसों की तो बचत कर ही सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकते हैं क्योंकि फेंका हुआ भोजन लैंडफिल में मीथेन गैस पैदा करता है।
1: बहुत अच्छी सी जानकारी दी है और सबको सोचना भी चाहिए इन दिनों। और शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग, हमारे साथी लिखते हैं कि इस बारे में हम तो हमेशा ही कहेंगे कि पहले ही थोड़ा ही भोजन थाली में ले, खत्म होने पर यदि भूख है तो और ले लिया जा सकता है, पर यदि बहुत ही ज्यादा ले लेते हैं और नहीं खाते हैं तो भोजन डस्टबिन में जाता है जो सही नहीं है। सखियों, हम जब भी किसी को डस्टबिन में खाना डालते हुए देखते हैं तो उससे जरूर समझाते कि वो ऐसा ना करे बल्कि किसी और को भी देखे तो उन्हें भी समझाएं, पर कभी कभी किसी को बुरा लगता है कि आपका क्या जा रहा है, पर ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अब हम इस बात पर ध्यान रखें। पहले कभी किसी ने इतने अच्छे से नहीं समझाया इस बात को। असल में सखियों, पहले हम भी ऐसा ही करते थे, खाना ज्यादा ले लेते थे फिर खा नहीं पाते थे, पर अब नहीं। आपने बहुत अच्छी सी बात लिखी और आपने अपनी सच्चाई को स्वीकारा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आप ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग सुन लें गीत।
0: बिल्कुल।

0: नेहा, तो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर प्यारी सी कढ़ाई के बारे में, जैसे चिकनकारी कहा जाता है। और इसकी सुंदर बहुत सारी साड़ियां जो होती बहुत सुंदर लगती है और हर कलर की होती हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन मंजरी जी दो बातें देखिए ऐसी आई हैं कमेंट, जिन्हें बिल्कुल भी नकारा नहीं चाहते, मतलब कह सकते हैं कि जिन्हें जिनसे नजर नहीं हट रही हमारी,
0: पढ़ लो,
1: क्योंकि वो हमारे काम की बातें आई है। वो कह रहे हैं कि हम तो अभी एक शादी में गए थे, शेक, आइसक्रीम, राजभोग, रसमलाई, पनीर कोफ्ते पर ही हाथ साफ किया, तलीब उन्हीं चीजों से दूर रहे, खाली मिठाई ही वो खा रहे थे। कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई भाई बंधु हैं। और एक और ये कहा कि
0: नेहा, हम साथियों को ये तो बता दें कि नेहा इस कमेंट को देख के पढ़ के देख रही थी, कह रही थी कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह का कमेंट।
1: हाँ, ये बिल्कुल हमारे भाई बंधु है, कहते हैं हमारा कुछ बिछड़े साथी जैसा लग रहे हैं। और एक कहते हैं कि आजकल शादियों में हमें पता नहीं होता कि क्या खाना है, कितना खाना है, जो मिला सब डालते जाते हैं, हमें वही लेना चाहिए जो पसंद हो। हमने देखा कि ठंडे के साथ गर्म दोनों सेवन करने से जो गलत है, इसका स्वास्थ्य पे असर बुरा पड़ सकता है। तो जिन्होंने कहा ना कि उन्होंने सारी मिठाइयों पर हाथ साफ किया, हम तो कह रहे देखिए प्लेट में जितना रखे, जब तक आप अपनी प्लेट पूरी साफ कर रहे हैं तब तक जो खाना खाइए, अपने रिस्क पर खाइए, ऐसा कह सकते हैं,
0: छोड़िए कुछ भी। तो चलो हम अपने चिकन के विषय पर आ जाते हैं।
1: हाँ, चिकन की साड़ियों पर।
0: चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है कढ़ाई और कशीदाकारी की। ये लखनऊ की कशीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है और लखनवी जरदोजी यहाँ लघु उद्योग है जो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़ों पर अपनी कलाकारी की छाप चढ़ाते हैं। इस उद्योग का ज्यादातर हिस्सा पुराने लखनऊ के चौक इलाके में फैला हुआ है और यहाँ के बाजार चिकन कशीदाकारी के दुकान से भरे हुए हैं। मुरी, जाली वर्क, बखिया, टेपची, टप्पा, इस प्रकार की करीब 36 प्रकार की शैलियां हैं जिनसे कढ़ाई होती है। और इसके माहिर एवं प्रसिद्ध कारीगरों में उस्ताद फयाज खां और हसन मिर्जा साहब का नाम काफी प्रसिद्ध है।
1: और इस हस्तशिल्प उद्योग का खास पहलू तो यह है कि इसमें 95% महिलाएं हैं और ज्यादातर महिलाएं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बसी हुई हैं। और अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग, चिकनकारी का उपयोग मुख्य रूप से कुर्ता, अंगरखा और दुपट्टों पर ही होता था, लेकिन बाद में साड़ियों में आने लगा। पहले कॉटन और मलमल की साड़ियों पर काम होता था, अब जॉर्जेट, सिल्क, सिफॉन, सभी प्रकार की साड़ियों पर चिकनकारी की जाती है। और असली चिकनकारी की अगर हम बात करें तो टांके जो है थोड़े असमान और प्राकृतिक दिखते हैं और पीछे पर धागों की उलझन या बुनावट दिखती है, क्योंकि हाथ से सब होता है और डिजाइन हमेशा अलग और यूनिक होता है, क्योंकि एक जैसा नहीं बन सकता, हाथ से बनाई जा रही है।
0: बिल्कुल, और यहाँ कई बार हमने खुद भी देखा है वहाँ पर कि घर घर में कढ़ाइयाँ होती, महिलाएं, बच्चे, लड़कियां बैठी, सब लोग काट रही होती, तो बड़ी मेहनत लगती है। जब उनके पास घर के काम के पास समय होता है तब वो अपने इस शौक को पूरा करती है।

0: और जहां तक इसकी बात करें तो मुगल काल से शुरू हुआ चिकनकारी का शानदार सफर सैकड़ों देशों से होता हुआ आज भी बदस्तूर जारी है। चिकनकारी का एक खूबसूरत आर्ट पीस लंदन के रॉयल अल्बर्ट म्यूजियम में भी विश्व भर के पर्यटकों की अपनी गाथा सुना रहा है।
1: हाँ।
0: और महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टाकों के द्वारा की गई हाथ की कारीगरी लखनऊ की चिकन कला कहलाती है। अपनी विशिष्टता के कारण ही ये कला सैकड़ों वर्ष से अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है।
1: हाँ।
0: यदि कोई ब्रश और रंगों के सहारे चित्रकारी करे तो इसमें नई बात क्या हुई, लेकिन अगर ब्रश की जगह एक महीन सुई हो और रंगों का काम कच्चे सूत के धागे से लिया जा रहा हो और कैनवास की जगह हो महीन कपड़ा, तो ऐसी चित्रकारी को अनूठी ही कहा जाएगा।
1: बिल्कुल। और बात करें अगर चिकन शब्द की, तो ये फारसी शब्द के चाकिन से बिगड़कर बना है। चाकिन का अर्थ है कशीदाकारी या बेल बूटे उभारना। जिस प्रकार मुगल काल ने भारत की कला, संगीत और संस्कृति को समृद्ध किया और देश को कई अलग अलग इमारतें दी हैं, उसी प्रकार से चिकनकारी भी इस तहजीब की एक अनमोल विरासत हम कह सकते हैं। और चिकनकारी में अगर हम बात करें तो सुई धागे के अलावा यदि कुछ और भी प्रयोग होता है तो वो है आंखों की रोशनी और एक उच्च स्तरीय कलात्मकता का बोध। सुई धागों से जन्मे टांकों और जालियों का एक विस्तृत जटिल किंतु मोहक संसार है। तरह तरह के टांकों और जालियों के अलग अलग नाम हैं और उनकी रचना का एक निश्चित विधान भी है, उनकी निजी विशिष्टताएं हैं, किस तरह से बनाना है, क्या करना है, पूरी एक शैली बनी हुई है, उस तरह से ही वो काम करते हैं।
0: और लगभग 40 प्रकार के टांके और जालियां तो होते ही हैं, जैसे मुरी, फंदा, कांटा, तेपची, पंखड़ी, लौंग, जंजीरा, राह तथा बंगला जाली, मुंद्रा जाली, जाजी, सिदौरा जाली, बुलबुल, चश्म जाली, बखिया आदि नहीं बहुत सारी है। सबसे मुश्किल और कीमती टांका है नुकीली मुरी। कच्चे सूत के 3 या 5 तारों से बारीक सुई से टांके लगाए जाते हैं, जिसे जिस कपड़े पर चिकनकारी की जाती है उसे पहले उस पर बूटा लिखा जाता है, यानी लकड़ी के छापे पर मनचाहे बेल बूटों के नमूने खोद कर इन नमूनों को कच्चे रंगों से कपड़े पर छापा जाता है। इन्हीं नमूनों के आधार पर चिकनकारी करने के लिए उसको तैयार किया जाता है।
1: और ये कर लेने के बाद एक खास प्रकार के उसको धुलाया जाता है, धोने के लिए दिया जाता है और कच्चा रंग वो हटा देते हैं और साथ ही कढ़ी गई कच्चे सूत की कलियों को भी वो उजला कर देते हैं। तो चिकनकारी की असली खूबसूरती की अगर बात करें तो जो जटिल तकनीक है इसकी, किस तरह से इसमें कढ़ाई किया जाता है वही किया जाता है और अलग अलग तरह से इसे बनाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि सभी को बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ही बारीक काम होता है, अलग अलग तरह के मिलते हैं, आजकल मशीनों वाला काम भी मिल रहा है,
0: लेकिन उसकी चिकनकारी की अलग पहचान होती है,
1: आप पहचान सकते हैं।
0: बहुत अच्छे कलर्स में होते हैं, सूती भी होती है, जैसे हाँ। शिफॉन की साड़ियां भी, और आजकल तो आप नाइट गाउन, नाइटी, मैक्सी, इन सब में और साथ में बेडशीट, बेड कवर और सोफा कवर, इन सब पर भी ये वर्क मिलता है। तो बहुत खूबसूरत होता है जब आप खुद भी पहने और घर भी आपको इन सब से सजा हो। कर्टन भी हमने देखे हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स भी चिकन के बनते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है और अच्छी कढ़ाई है। तो हमारी सखियों में किसी ना किसी को तो ये वर्क आता भी होगा।
1: हाँ, और गर्मियों का मौसम है ना, तो उसमें तो सबकी पसंद ही ये बन जाती है।

0: तो नेहा, थोड़ी देर पहले तुम कुछ गुस्सा हो रही थी।
1: नहीं, गुस्सा नहीं होते, हम तो कह रहे थे कि कोई कह रहा है कि खाना अच्छे ज्यादा मत खाओ, कोई कह रहा है कि साड़ियाँ क्यों लेती हर रस्मों के लिए, ये कोई बात हुई? और गुस्सा होने का एक कारण ये भी है कि किसी ने बुलाया ही नहीं है शादी में हमें, और सब बता रहे हैं कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या खा रहे हैं, कहाँ कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, ना हमने नए कपड़े लिए, ना हम किसी शादी में गए, तो गुस्सा होना तो बनता है।
0: बिल्कुल बनता है। चलो ठीक है, हम तुमको कुछ फलों के जायके के बारे में कुछ रेसिपी बता देते हैं, तुम बना खा लेना,
1: कुछ तो गुस्सा कम हो,
0: कुछ तो कम होगा तुम्हारे, मिल जाएगी तुमको। तो हम बताने जा रहे हैं रेसिपी में फ्रूट चाट। तो इसके लिए सामग्री लेनी है साथियों कि सेब, केला, पपीता, अमरूद कटे हुए, और इन सबको आप अपने हिसाब से छील छाल के साफ कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, और एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, और शहद आप अपने मन के हिसाब से लीजिए। और इसको बनाना कैसा है कि सब फलों को आप मिला लीजिए, उसमें नींबू का रस डालें, ऊपर से चाट मसाला, नमक छिड़के, हल्का शहद डालकर मिलाएं, और इसको आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए तब आप इसको खाएं, खिलाएं, और नेहा हमारी खाएगी क्योंकि थोड़ा सा इसको शांति मिल जाएगी।
1: नहीं, हमको शांति मिलेगी जब हम कुछ मीठा खाएंगे, इसलिए हम खाएंगे आम की स्मूदी,
0: बनाओ,
1: जिसकी रेसिपी हमारे पास ही है, तो हम वही खाएंगे क्योंकि आम का मौसम भी चल रहा है और शादी में किसी ने बुलाया नहीं, तो अपना हम खुद ही आम खरीदेंगे, खुद ही बनाएंगे और खाएंगे, खुद ही खाएंगे, खुद ही तैयार होंगे, खुद ही खाएंगे। तो एक आम पका हुआ लेना है, इसके लिए काटकर, एक कप ठंडा दूध, दो चम्मच चीनी या शहद आप ले सकते हैं, बर्फ के टुकड़े इसके लिए ले सकते हैं। मिक्सर में पहले तो आम डालना है, दूध डालना है, चीनी और बर्फ डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है, थोड़ी गाढ़ी स्मूदी तैयार करना है, और इसके ऊपर से आप डाल सकते हैं पिस्ता या बादाम, और इस तरह से सजा लीजिए, ठंडा ठंडा हो जाएगा, और इसके बाद आराम से बैठिए, ऐसे टाइम पे बैठिए जब आसपास कोई ना हो, और पूरा आराम से अकेले खा लीजिए।
0: अच्छा, यानी तुम आज अकेले खाने वाली? तो ये तो मुझे देगी नहीं, कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगी तो हम अपने लिए बना लेंगे स्ट्रॉबेरी दही। इसकी सामग्री हमारे साथ ही नोट करिए, एक कप दही, आधा कप स्ट्रॉबेरी कटी हुई, आधा चम्मच शहद, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इसकी विधि है कि दही को अच्छे से फेंटे, उसमें स्ट्रॉबेरी और शहद मिलाएं, ऊपर से ड्राई फ्रूट डालें, और बस ठंडा करके आप खाएं, बच्चों को खिलाएं, और नेहा को देख दिखा दिखा के खाएं।
1: हम तो देखने ही नहीं जा रहे हैं। और फ्रूट कस्टर्ड भी बना सकते हैं कोई चाहे तो। दो कप दूध, दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसके लिए लगेगा, तीन चार चम्मच चीनी, और इसके लिए फल ले सकते हैं सेब, अंगूर, केला और अनार। और इसकी विधि है कि दूध को उबालिए और थोड़े दूध में कस्टर्ड पाउडर घोलकर मिला लीजिए, जब गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा होने तक पकाना है आपको, और ठंडा होने पे फल डालें। तो मतलब दूध उबलने के बाद कस्टर्ड पाउडर थोड़े से दूध में घोल के आपको मिलाना है, क्योंकि नहीं तो डलियां पड़ जाती हैं, तो अलग से आप इसको घोल के इसमें डाल दीजिए, और ठंडा होने पे इसमें आप फल डालिए और फ्रिज में रख के सर्व कीजिए, स्वाद दोगुना हो जाएगा। हमें दिखा के खाइए या खुद खाइए, हम तो खाने वाले हैं आम की स्मूदी,
0: और फिलहाल सुनने वाले हैं
1: गाना।

0: और कैसे बन रहा है ये अफसाना?
1: ये सामंजस्य बना के बन रहा है। और देखो, सामंजस्य का मतलब होता है लोगों, परिस्थितियों और खुद के साथ संतुलन बनाकर चलना। ये सिर्फ दूसरों को खुश करने का नाम नहीं बल्कि समझदारी से रिश्तों और हालात को संभालना है। और किन किन के साथ सामंजस्य रखा जा सकता है नेहा? की पहले तो खुद के साथ, सबसे पहले अपने विचारों, भावनाओं और जरूरत को समझना जरूरी है। अपनी सीमाएं पहचाने, खुद को समय दें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और परिवार के साथ भी आप सामंजस्य, आप परिवार के साथ बात आती है तो परिवार में सामंजस्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि बहुत सारे रिश्ते होते हैं छोटे बड़े, तो हमें बड़ों का सम्मान करना है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें जो हो जाती है, और छोटों को भी प्यार सम्मान देना है, खुलकर बातचीत करनी है रिश्तों में, तभी सामंजस्य अच्छा बन
0: सकता है। जी, और हमारे साथी लिखते हैं कि सामंजस्य का अर्थ है तालमेल, अनुकूलता या समन्वय, जहां विभिन्न तत्व मिलजुल कर एक सुसंगत रूप बनाते हैं। ये मानसिक या व्यवहारिक स्तर पर संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसमें पर्यायवाची शब्दों में मेल, तालमेल, संतुलन, अनुकूलता, समन्वय, समझौता, सद्भाव और सामंजस्यता शामिल हैं। इन्होंने सारे शब्दों का भी एक सामंजस्य बना दिया हमारे लिए।
1: बहुत अच्छी सी बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, एक शब्द हमारे विचार आपके इस बात का प्रतीक है कि भाषा केवल एक माध्यम है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब वो हमारे सच्चे विचारों और इरादों के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठा सके। सामंजस्य प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और शब्दों में ईमानदार, साफ सुथरा और प्रामाणिक होना आवश्यक है। जब हम अपने मूल्यों को जीते हैं और उनके अनुरूप ही बात करते हैं, तब हमारे जीवन में स्पष्टता और समृद्धि आती है।
0: और एक और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य शब्द के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा, तो सामंजस्य से अगर जीवन में नहीं हो तो आप कोई काम बिना तनाव के, अगर सामंजस्य हो तो आप कोई भी काम बिना तनाव के कर सकते हैं, बिना ज्यादा दिक्कत के, वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जीवन में जो बुरी परिस्थितियां भी आएंगी, अगर वहां भी अगर आपके पास समान रहते हैं, अगर आप समान रहते हैं, सामंजस्य बनाकर रहते हैं।

0: तो वो परिस्थितियां भी टल जाएंगी और अच्छे दिन आपके जीवन में वापस आ जाएंगे।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी और लिखते हैं कि जब हम जोश भरी आवाज में सुनते हैं वैभव, सूर्यवंशी और यशस्वी वाली बातें, तो ये आपसी सामंजस्य दिखाते हैं। कुल 23 रन जोड़ लिए हैं तो कितना अच्छा लगता है, इन्होंने लिखा है। दो मन उनके विचार और कृतियों की साधने वाला समान दुआ यानी सामंजस्य, जिसमें आपसी तालमेल, अनुकूलता, समन्वय, संतुलन और एक रूपता होती है। हमारा दैनिक जीवन खेल, संगीत और कला क्षेत्र के साथ राजकीय और सामाजिक व्यवहार में भी सामंजस्य होता है, जिससे रिश्ते मधुर हो जाते हैं, संघ भावना बढ़ जाती है और लक्ष्य प्राप्ति आसान बन जाती है।
0: और हमारी और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य जीवन को सुंदर और सरल बनाने की कला है। जहाँ विचारों, व्यवहार और संबंधों में तालमेल होता है, वहाँ शांति और प्रेम बना रहता है। परिवार, समाज और मित्र, हर रिश्ते की मजबूती का आधार सामंजस्य ही है। सामंजस्य से मतभेद भी सहजता से सुलझ जाते हैं और जीवन में खुशियों का संचार होता है। और असली खुशियां आती हैं जब सामंजस्य बना रहे बातों और गीतों के बीच।
1: तो गीत सुन लेते हैं।

तो देखो हमारे साथी लिखते हैं नेहा कि सामंजस्य का अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, विचारों में संतुलन रखना और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना। जहाँ सामंजस्य होता है वहाँ रिश्तों में मजबूती और कार्यों में सफलता निश्चित होती है। जैसे संगीत में अलग अलग सुर मिलकर मधुर धुन बनाते हैं, वैसे ही जीवन में अलग अलग स्वभाव और विचार जब एक साथ जुड़ते हैं तब सुंदर संबंध बनते हैं। परिवार, मित्रता और समाज, हर जगह सामंजस्य का विशेष महत्व है। ये न केवल मतभेद कम करता है बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास को भी बढ़ाता है। आइए हम सभी अपने व्यवहार में सामंजस्य

0: जैसे अपनाकर जीवन को और सुंदर, सरल और आनंदमय बनाए।
1: और हमारे एक साथी ने तो अपनी दुविधा लिख दी है और अच्छा। कैसे उनके जीवन में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, वो बता रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से गर्दन की जकड़न के कारण विविध भारती और मोबाइल के साथ अपना तालमेल यानी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। आज थोड़ा सुधार है तो चला कि आज वो जुड़ गए। जैसे अच्छी रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथकर एक ठोस पिंड बनाना पड़ता है, उसी तरह अच्छे संबंध को कायम रखने के लिए व्यक्तियों के समूह के बीच सहयोग रूपी आटे को भी अच्छी तरह से गूंथ देना पड़ता है, तभी जिंदगी का सफर सुहाना बना रहेगा। हम कह रहे हैं कि अगर उनको गर्दन में दर्द है तो वो विविध भारती सिर्फ सुन सकते हैं ना।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हुए आपके कमेंट हम बाद में मतलब शामिल तो हो ही जाएंगे, तो उतना सामंजस्य हम बिठा सकते।
0: आप अपना ख्याल रखिए और हाँ। फिर हम सुनिए अगला कमेंट संदेश। हमारे साथी ने लिखा है कि परिवार मुझे जो पसंद है वो है ज्वाइंट फैमिली, जो हमारी भारतीय संस्कृति भी है। ज्वाइंट फैमिली में घर के मुख्य के सामने, मुखिया के सामने घर के हर सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती, क्योंकि हर सदस्य की अपनी अपनी पसंद होती है, जनरेशन गैप की समस्या। परंतु घर का मुखिया अगर ये उसमें ये काबिलियत है तो अपने परिवार की नैया पार लगा लेता है, तभी सभी में सामंजस्य बैठाकर। बिल्कुल सही बात है, जो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं हर एक का, लेकिन सबको भी समझना चाहिए कि हमारे वो क्या कह रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को भी समझना चाहिए। सामंजस्य तभी बैठता है जब हम एक दूसरे की बात को थोड़ा सुनना पसंद करते हैं।
1: तो कुल मिलाकर हमारे सभी साथी यही कह रहे हैं कि सबसे मिलजुल कर अगर हम बातें करें और सबकी बातों को ध्यान रखें, शरीर के बीच में भी सामंजस्य बिठाएं, विचारों में सामंजस्य बिठाएं, तो जीवन अच्छा हो सकता है। तो क्यों ना एक गीत सुनवा दिया जाए।
2: मत बेकरार करना इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार करना
1: आया।

0: अब तो हम भी कुछ नहीं जानते क्योंकि समय वमय रह नहीं गया है।
1: तो अब हमें चलना होगा, तो सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारी एक खास मेहमान आई हुई हैं। आप हैं जानी मानी रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा, और हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, उनके रंग यात्रा पर, उनकी टीवी यात्रा पर और उनकी फिल्मी यात्रा पर। तो प्रभा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मंदाकिनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। और ये बताइए कि विविध भारती आने पर आपको क्या लग रहा है?
2: ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने घर में आई हूँ विजिट करने। हाँ, क्योंकि मैं रेडियो आर्टिस्ट भी रही हूँ, अनाउंसर एंड कंपेयरर, ये मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: तो आपने आकाशवाणी में जाकर काम किया है?
2: जी, मैंने किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही मैं भारत भवन में सिलेक्ट हो गई थी एज एन एक्ट्रेस। तो बहुत ज्यादा काम रेडियो में नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी। 10 से 12 घंटे तक हम लोगों को वहाँ रहना होता था, और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। तो यहाँ इतनी व्यस्त हो गई कि उसके बाद फिर रेडियो करने का मतलब मौका भी नहीं था। हालांकि मैंने सीखा रेडियो से ही, वॉइसिंग रेडियो से सीखी, माइक का सेंस मुझे रेडियो से आया, जिसने मेरी बहुत बहुत सहायता की बाद में यहाँ डबिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। तो रेडियो प्ले आर्टिस्ट होने के कारण ही मैं वो आवाज के उतार चढ़ाव, कैरेक्टर में जाना, कैरेक्टर से निकलना, वो सारी चीजें मैं रेडियो की वजह से सीख पाई, जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, जिसने मुझे एक्टिंग में भी और बाद में डबिंग फील्ड में, जिसकी मैं मास्टर रही हूँ, मानी जाती हूँ। मुझे भी कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि हाँ, मैंने बहुत काम किया।
1: बिल्कुल, आपने बहुत काम किया। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रेडियो की दुनिया में आपने सबसे पहले कौन सा काम किया? आप
2: पहले जब मैं अप्रूव आर्टिस्ट हुई थी तो रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट थी।
1: अच्छा।
2: वहाँ एक रेडियो प्ले हुआ था, उसका नाम था किरचें, तो वो रेडियो आर्टिस्ट के साथ किया था मैंने। और बाद में यहाँ बॉम्बे आने के बाद भी 2-3 रेडियो सीरीज की थी
1: जी,
2: आउटसाइडर प्रोड्यूसर और वो लोग होते थे, और रेडियो

0: पे वो यहाँ ब्रॉडकास्ट होता है, तो वो मैंने एक निर्मला किया था जिसमें मैंने निर्मला प्ले किया था, कोई पंजाब बैकग्राउंड पे भी था, वो भी किया था। चूंकि ये लंबे लंबे थे, 20 एपिसोड 13 एपिसोड्स की, तो वो काम काफी महत्वपूर्ण था और वो
1: जी
0: सिर्फ रेडियो के लिए था। वैसे मैंने रेडियो वाणी के लिए भी काम किया है।
1: प्रभा जी, थिएटर आने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? कैसे नाटकों की दुनिया में आए? कैसे लगा आपको कि मुझे नाटक करने चाहिए थिएटर की दुनिया में?
0: जी वो तो बस यूं समझ लीजिए कि जैसे ईश्वर की इच्छा थी कि मैं आऊं एक्टिंग की दुनिया में, क्योंकि मैं छोटी ही थी, करीब होंगी 16 17। तो मेरे पापा के कोई फ्रेंड थे, वो एक प्ले कर रहे थे, एमेच्योर थिएटर की बात कर रही हूँ मैं। उनकी करीब हफ्ते भर पहले उसकी हीरोइन चली गई छोड़
1: अच्छा
0: के,
1: जी
0: तो वो परेशान थे, हीरोइन ढूंढ रहे थे। तो वो पापा से बोले कि आपकी लड़की तो अच्छी है, अच्छी दिखती है, तो ये करेगी क्या? तो पापा बोले अगर उसकी इच्छा है तो कर ले। उन्होंने मुझसे कहा करेगी क्या, मैंने कहा मैंने तो कभी किया नहीं है पर कर लूंगी अगर करवाना है तो। तो बोले ठीक है आ जाओ देखो। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़वाई, मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ दी पहली बार में। उन्होंने कहा आ जाओ, उनको हीरोइन मिल गई और मुझे एक एक
1: गई
0: नया जीवन।
1: जीवन मिल गया।
0: तो वो मेरी शुरुआत थी, पहला प्ले था मुल्ला नसरुद्दीन,
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जी
0: रईस हसन उसके डायरेक्टर थे, जो कि बाद में मेरे रेडियो में भी हीरो थे वो, जो उसमें डायरेक्टर थे और मैं उनको मामा जी कहती थी। आप सोचिए आवाज की दुनिया का विरोधाभास देखिए कि वो मेरे मामा हैं, मतलब मुझसे कितने बड़े होंगे, पर वो मेरे हीरो थे।
1: जो थे।
0: जी
1: तो अब
0: जी
1: तक
0: जी
1: आपने कितने नाटक कर लिए होंगे?
0: स्टेज पे तो मैंने मेरे ख्याल से 25-30 नाटक किए होंगे, क्योंकि नाटकों की दुनिया में मैं रही करीब 8-10 साल। उसके बाद वो नाटक मुझसे छूट गए।
1: तो आपने गिरीश कर्नाड का लिखा नाटक था हैवदन, उसमें आपने काम किया और जाने माने नाटककार बीवी
0: जी
1: कारंत साहब के निर्देशन में,
0: जी
1: एक
0: जी
1: बहुत बड़ी बात है।
0: जी
1: तो कैसे मिला आपको ये नाटक और क्या अनुभव रहा होगा इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का आपका?
0: जी इसके लिए तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि मेरे अभिनय की नींव, मेरे करियर की नींव, मेरे व्यक्तित्व की नींव, ये नाटक था हाय वतन। क्योंकि मैं भारत भवन में गई, रंगमंडल में, तो वहां पे ये नया नाटक ओपन हुआ था, कास्टिंग की जा रही थी। उस कैरेक्टर में कारण जी को मैं ही सबसे ज्यादा फिक्स, मतलब लगा कि उनको ये इसमें फिट होती है लड़की, नई लड़की थी मैं। लेकिन वो बहुत बड़ा नाटक था और बहुत प्रेस्टिजियस था कारण जी के लिए भी।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे बोला गया, स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई, मैंने उसे अच्छे से पढ़ा, उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की मुझ पे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी के लिए भी एक चुनौती था, इससे पहले उन्होंने एनएसडी में ये किया था और कारण जी को जाना जाता था इस नाटक से ही, और वो कैरेक्टर उसमें जो है बदन में जो मेन कैरेक्टर है वो सेंट्रल कैरेक्टर है पद्मिनी का। तो वो पद्मिनी मैंने प्ले किया था और उसके लिए जो उनको चाहिए था उसके लिए उन्होंने मेरी चाल पे, मेरी आवाज पे, मेरी आंखों के एक्सप्रेशन पे, वहां से लेके एक एक चीज पे काम किया। और वो जो उन्होंने काम किया वो मेरे जीवन भर की कमाई है, समझ लीजिए, क्योंकि वो एंड तक अब तक मेरे काम आ रही है,
1: जी
0: जो जो बताया उससे जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुए। और वो प्ले भी हमने कालिदास समारोह उज्जैन वहां भी किया, इलाहाबाद में भी किया, कलकत्ता रविंद्र नाट्य में, उसमें बॉम्बे में भी किया था, मतलब लगभग सारे भारत में उसका हम लोगों ने टूर किया था, तो सभी
1: तो
0: जगह था। दिल्ली में श्रीराम सेंटर में भी एक फेस्टिवल हुआ था, उसमें हयवदन से ओपन किया गया था। 3 दिन तक पहले हयवदन था, उसके बाद में दूसरे नाटक थे।
1: तो इस नाटक से जुड़ा कोई डायलॉग आपको याद है या कोई घटना जिसे आज भी आप याद करती हो?
0: बिल्कुल, मेरे पास घटना भी और डायलॉग भी दोनों ही कहूंगी मैं आपको। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों के दोनों, दोनों चले गए, दोनों चले गए। मरने से पहले मुझे तो याद कर लेते, मेरा क्या होगा?

0: करूं क्या करूं? अब कपिल चला गया, देवदत्त भी चला गया, तो ठीक है, इनके पीछे पीछे मैं भी चली जाती हूं।
1: इस पूरे कैरेक्टर को जीना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है।
2: बिल्कुल,
1: अभी जो मैंने दिखाया वो कितनी सच्ची लग रही है, कितनी भोली लग रही है, लेकिन उसकी चालाकी देखिए,
2: उसके अंदर क्या चल रहा है,
1: हाँ। वो यहाँ देखिए, अब ये दूसरे डायलॉग में आपको दिखाई देगा। बिल्कुल।
0: चलो चलो देवदत्त, कपिल ये क्या है? ओफो, हमें क्यों सता रहे हो? जाओ यहां से। देवदत्त मेरे राजा, मेरे कारण मेरा राजा नया आभूषण पहन के आया है। चलो देवदत्त, चलो घर लौटते हैं। सुनो देवदत्त, थोड़ा सा ठहरो। हाँ कपिल, उदास मत हो कपिल, फिर मिलेंगे, है ना? सुनो, देवदत्त के साथ जाना मेरा धर्म है, याद रखो। चाहे मैं देवदत्त के साथ चली भले ही जाऊं, पर जा रही हूं तुम्हारी ही काया के संग। फिर मिलेंगे कपिल।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आपको सामने देखकर भी वो भाव नजर आ रहा है जो उस वक्त आपने किया होगा। और चलिए अब हम आपसे आगे सवाल करें, उससे पहले आपकी पसंद का कोई एक गीत सुन लें।
1: जी जरूर, आपने गानों की बात कही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं मोहम्मद रफी की ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट फैन हूँ।
2: अच्छा जी।
1: मैं अपनी जिंदगी में मोहम्मद रफी के अलावा शायद ही कोई किसी दूसरे सिंगर को सुनती हूँ।
2: अच्छा।
1: हाँ, या तो डुएट भी होते हैं तो उनके साथ ही होते हैं। तो मेरी पसंद के ज्यादातर गाने मोहम्मद रफी के ही हैं, और डुएट हैं तो उनके ही साथ हैं। फीमेल में मैं आशा जी को ज्यादा पसंद करती हूँ। उनकी आवाज की जो एक शार्पनेस है ना, एक खनक है उनकी आवाज में, वो मुझे बहुत पसंद है।
2: जी, जी।
1: और जिस तरह से वो वेस्टर्न इंडियन सारे म्यूजिक में, क्लासिकल और सब में ढल जाती है, वेस्टर्न को जिस तरह से वो पकड़ती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। उनका रुत है मिलन की साथी मेरे यार।
2: क्या बात है।

0: प्रभा जी, आपने निर्देशक जो थे एनएसडीएन आलोपी वर्मा, उनके साथ भी कई नाटक किए हैं
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: उनके साथ कौन कौन से नाटक आपने किए, कोई खास अनुभव?
1: जी, आलोपी जी हमारे भारत भवन में सह निर्देशक थे, तो उनसे हमने बहुत सीखा। एक तो उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज हमको सिखाई थी, मेकअप का भी उन्होंने सिखाया था हमको
0: बिल्कुल,
1: और उन्होंने प्ले किया था एक मॉक डॉक्टर, उसमें मेन रोल मैंने किया था। जब मैं भी बॉम्बे आ गई थी और आलोपी जी भी बॉम्बे आ गए थे, तो हमने यहाँ पृथ्वी थिएटर में एक प्ले किया था। हमारा एक ग्रुप था कुटुंब,
0: अच्छा,
1: जिसमें अनु कपूर, आलोपी जी तो थे ही, आलोक नाथ, नीना गुप्ता और अरुण वर्मा, रवि केमू वो भी थे, पंकज बेरी वो भी थे, मैं थी, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उस समय।
0: बिल्कुल,
1: उनके साथ में हमने रोशोमन प्ले किया था, आलोपी जी ने डायरेक्ट किया था वो, तो रोशोमन में भी ये पद्मिनी जैसा ही है वो भी कैरेक्टर, तो वो भी मैंने मेन रोल किया था उनका, और ये पृथ्वी में उसका शो हुआ था।
0: तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थिएटर में काम करने के दौरान एक कलाकार को शारीरिक कहें या मानसिक कहें और तकनीकी रूप से गहन तैयारी करनी पड़ती
1: है। जी जी बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और जैसे हम कह सकते हैं कि अनुशासन, आवाज
1: जी,
0: या शारीरिक भाषा पर नियंत्रण कैसे रखे एक कलाकार
1: जी,
0: और डायरेक्टर के जो डायरेक्शन है, निर्देश है, उनका पालन करना बाकायदा
1: जी, जी।
0: और संवाद याद करना, जो सबसे मुश्किल काम हो जाता है,
1: मुश्किल
0: संवाद याद रखना, हाँ। बहुत सारी बातें जिन्हें कलाकार को ध्यान रखना पड़ता है, खुद को इन सब के लिए कैसे तैयार करता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं।
1: ये तो साधना है, मतलब अभिनय को लोग बहुत आसान समझते हैं, सहज समझते हैं कि अभिनय करना मतलब डायलॉग बोल दिए या मेकअप कर लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बस हो गई एक्टिंग। ऐसा नहीं है, ये पूरी एक साधना है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत की साधना। लोगों को लगता है गाने गाना बहुत आसान है, लेकिन पूछिए उनसे,
0: बहुत मुश्किल,
1: कि शास्त्रीय संगीत कैसे साधा जाता है। ठीक वैसे ही आर्टिस्टों को भी साधना पड़ता है, शरीर को बलिष्ठ बनाना पड़ता है, साथ में लचीला, तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आवाज को उतार चढ़ाव, साथ में दमदार, लंबे समय तक आवाज की, मतलब उसकी लेंथ भी दूर तक जाए, लय भी ना टूटे, साफ भी हो, तो ये सारी ध्यान रखनी पड़ती है चीजें, उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: और इस सब को कंट्रोल करने के लिए तो नियंत्रण तो आपने कहा वो है ही और निर्देशक के हिसाब से नहीं चलेगा आर्टिस्ट, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा।
0: बहुत मुश्किल होता है, कई बार निर्देशक की लताड़ भी खानी पड़ती है एक कलाकार को
1: कई बार नहीं बल्कि मैं कहूंगी वो तो रोज खानी पड़ती है। अगर कोई प्रोफेशनल होना चाहता है और अगर कोई वाकई अच्छा कलाकार बनना चाहता है तो उसको तो लगातार डांट खानी पड़ती है, खानी पड़ेगी ही।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे ये डांट खानी पड़ी थी, वो जो मैं आपको बता रहे थे, कारण जी की डांट खाई थी मैंने, सबसे ज्यादा उन्हीं की डांट खाई है। दो तीन चीजों पे खाई, एक तो ये कि मैं बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर है ना वो चालाक नहीं है, सहज और स्वाभाविक हूं मैं, और ये जो कैरेक्टर था ये एकदम अलग था, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, इस कैरेक्टर को, पद्मिनी के कैरेक्टर को, मैं अंदर से इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण बहुत था इसलिए मैं कर रही थी। कारण जी ने कहा है, भारत भवन में हूँ, आर्टिस्ट हूँ वहां की, तो मेरी नौकरी थी तो मुझे करना ही था। तो मैं पता नहीं क्यों, चूंकि मैंने अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो कारण जी जो चाह रहे थे कि मैं चालाक दिखूं, मैं दिखूं कि एक के साथ रहते हुए दूसरे को रिझा रही हूं, ये दिखना चाहिए मेरी हरकतों से, मेरी आंखों से, मेरी एक्सप्रेशन से, जो कि नहीं दिखता था। तो मुझे रोज डांट पड़ती थी इस बात पे। शो के बाद हम लोग मीटिंग होती थी, मीटिंग में किसने क्या अच्छा किया, बुरा किया, वो सब बताया जाता था। तो कारण जी ने मुझे, प्रभा मुझे एक बात बताओ,

0: तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम एक बात बताओ, मैंने तुमको पद्मिनी क्यों लिया? तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, क्यों लिया? आपकी पसंद, आपकी, आपको लगा होगा कि मैं पद्मिनी के लायक हूँ। तो वो मुझे बोले, क्या तुम इतनी खूबसूरत हो जैसे पद्मिनी को दिखाया गया है? सच बताऊं, मुझे नहीं लगता था कि मैं खूबसूरत हूँ। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला, फिर क्यों लिया? मैंने कहा मैं नहीं जानती, आप जानते होंगे। बोलते, तुम्हारी आंखों की वजह से। तुम्हारी आंखें वो हैं जो किसी के पास नहीं है, वो बोलती हैं, लेकिन तुम इनका यूज नहीं कर रही हो। मैं थक गया हूं तुमसे। आज 8वां 9वां शो है, तुम कर क्यों नहीं दिखता तुम्हारी आंखों से वो चालाकी? क्यों नहीं दिखता कि तुम छल कर रही हो उसके साथ? यहां प्यार में डूबी हो, वहां नहीं डूबी हो, वहां चालाकी कर रही हो, क्यों नहीं? जितना डांटा गया, उसके बाद मैंने तकरीबन 20 से 25 शो के बाद इस चीज को पिकअप किया, और तब मैंने ये आंखें घुमाना, जो कि मेरा बुनियाद में काम आया।
1: बुनियाद धारावाहिक में काम आया।
0: हाँ,
1: जी जी जी।
0: उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था और मैं नेगेटिव कैरेक्टर पसंद नहीं करती थी। उसमें मैंने जब कैरेक्टर किया ना, अपना जो कैरेक्टर पिकअप किया, तो उसमें ये था कि मैं आंखें घुमा के, चुटीला घुमा के, और मैं वो चुगलियां करती हूँ, इसको देखती हूँ, उस पे वार करती हूँ, ये सब करती हूँ। ये रमेश सिप्पी ने मुझसे कहा था। मतलब वो मुझे देख के, जब मैंने ये किया था पहली बार, ये चोटी घुमाई थी, तो उन लगे वेरी गुड प्रभा, कीप इट अप।
1: सही बात है, यानी कि वो चीज आपको वहां काम आई, और एक कलाकार के लिए हर एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं काम आता,
0: काम
1: ही
0: आता
1: है
0: जो वो सीखता
1: है।
0: महान डायरेक्टरों से उनके साथ काम करना इसीलिए बड़ी अचीवमेंट है।
1: मुझे बताइए प्रभा जी, कि मंच के लिए किसी किरदार की तैयारी का मतलब होता है कि उसके वास्तविक स्वरूप को और नाटक की कहानी के साथ हम जुड़ जाएं, है ना?
0: जी,
1: वैसे के वैसे हो जाए, समाहित हो जाएं। तो आप किसी किरदार में कैसे घुसती हैं और फिर कैसे निकल जाती हैं? आपको कभी दिक्कत आई कि किरदार में घुस गई तो घुसी रह गई और निकल नहीं पाई?
0: मुझे ये दिक्कत नहीं हुई, ये मेरे अंदर से स्वाभाविक ही हमेशा से ही रहा। जो भी कैरेक्टर मेरे सामने होता है, मैं ऐसे फील करती हूँ कि मैं यही हूँ, उसको फील करती हूँ, उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसके पर्यावरण को, सब कुछ, तो मैं वही बन जाती हूँ। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं ये नहीं हूँ। जैसे ही वो खत्म हुआ, मैं तुरंत प्रभाव हो जाती हूँ।
1: जी जी।
0: तो इसीलिए यही है कि मैं एकदम, मेरा सामने अपीयरेंस बिल्कुल अलग है और मेरा स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल अलग है। उसका कारण यही है, क्योंकि मैंने प्रभा पे कभी भी कोई कैरेक्टर हावी होने नहीं दिया। मैं प्रभा हमेशा बनी रही।
1: बिल्कुल।
0: कैरेक्टर आते हैं जाते हैं। मतलब मुझे कहते थे, ये ऐसी एक्ट्रेस है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। हाँ, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, कैंपस सीरियल जिन्होंने डायरेक्ट किया था, संजीव भट्टाचार्य नाम था उनका। तो एक बार उनके यहाँ ऑडिशन चल रहे थे, तो उस ऑडिशन में मुझे भी कॉल किया गया था। मैं वहां गई, मैंने वो ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में एक सोलोलॉकी थी, और उसमें वो जो लेडी होती है उसके अंतर्द्वंद को दिखाना था उसमें, जिसमें वो टूट जाती है। मतलब जैसे किसी एक अंधेरी सुरंग में वो बहुत दिनों से फंसी हुई है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक रास्ते की किरण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, और वो प्रार्थना करते हुए वो अपनी पुरानी बातें, अपने अंदर का संघर्ष, ये सब बताते हुए वो टूट जाती है। तो ये था, हे भगवान, कहीं कोई रोशनी की एक किरण तक नहीं, कब निकालोगे? क्या मुझे एक किरण भी नहीं दिखाओगे तुम? इस तरह से जैसे मैं उसमें फट पड़ती हूँ, तो मैं इस तरह से रोई हूँ टूट के, कि उनको लगा मैं कैरेक्टर में चली गई, अब इसको डिस्टर्ब मत करो। तो वो दो लोग थे, संजीव जी थे और एक उनको असिस्ट कर रहे थे, एसोसिएट थे। वो दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो, बेचारी टूट गई है। तो बहुत देर तक जब उन्होंने मुझे रोका नहीं, तो मैंने देखा पलट के, मैंने कहा क्या हुआ, आप कट क्यों नहीं कर रहे? आर यू ओके? ऑफ कोर्स। बोलते हमें लगा कि आप मतलब ट्रांस में चली गई हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो कैरेक्टर था, मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो मैं यू करती, जैसे आपने अभी देखा।

0: मैंने अभी आपके सामने किया।
1: बिल्कुल, यही एक कलाकार की पहचान है कि वो कब कैरेक्टर में घुसता और कब निकल आता है। तो चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: एक आशा जी का गीत सुन ले। आशा जी के गीत भी मुझे बहुत पसंद है, उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। उनका एक रेयर सॉन्ग है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया।

0: देखिए पृथ्वी थिएटर में भी आपने बहुत काम किया है और हर रंगकर्मी का सपना होता है कि पृथ्वी थिएटर में काम किया जाए। तो नाटक बगुला भगत में आपने राधा का किरदार किया था, विजय वर्मा शायद डायरेक्टर थे। तो ये सभी एनएसडी पास आउट डायरेक्टर हैं, इनके काम करने का तरीका क्या एक आम डायरेक्टर के काम करने के तरीके से कुछ अलग होता है? आपने क्या महसूस किया?
1: हाँ, एनएसडी के लोग बहुत बारीकी में चीजों को

0: इस बीच में इतना मेरे अंदर गिल्ट डेवलप हुआ, 1.5 महीने में मुझे लगे मैं कर क्या रही हूँ। अब क्या हुआ, 4-5 दिन पहले वो जयरूप जीवन बोले कि प्रभा जी अगर आप पूरा एक दिन दे दें तो हम रिहर्सल रख लें, हॉल ले लें, कॉस्ट्यूम रिहर्सल रख लेते हैं, पूरा रन थ्रू करेंगे। मैंने कहा जी जी जी, शो के एक दिन पहले। और क्या होता था उसमें, जो मेरा हीरो था मेरे अपोजिट, वो था सुशील पाराशर, काफी एड वगैरह में आते रहते हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे और कॉमेडी में तो उनका कमाल था। तो होता ये था कि वो, अब चूंकि रिहर्सल्स हुई नहीं थी तो एक दूसरे से मतलब वो नहीं हुए थे हम लोग मूवमेंट में इसमें उसमें, वो तो अच्छे एक्टर थे तो अपने आप कर ले जाते थे। तो वो कॉमेडी में ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं, ऐसे ऐसे काम करते कि मेरी हंसी छूट जाती थी। जब मैं हंसती तो जयरूप जी ने बोला एक दिन मुझे कि प्रभा जी आप हंसिए मत अगर शो में निकल गया तो। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल जाएगा, इतने सालों किया है। बोले देख लीजिए हंसिए मत नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन रिहर्सल नहीं मिली थी तो मुझे उस एक्टर के बारे में, मैं मतलब हम दोनों कंफर्टेबल नहीं हुए थे एक दूसरे से, जैसे रिस्पॉन्ड करता है एक्टर एक दूसरे को, वो नहीं हुआ था। तो उस दिन भी जिस दिन फाइनल रिहर्सल थी, कॉस्ट्यूम रिहर्सल थी, उस दिन मैं मीनाक्षी शेषाद्री का एक फिल्म कर रही थी, इसमें मीनाक्षी शेषाद्री की डबिंग कर रही थी। फिल्म थी जुर्म, महेश भट्ट उसके डायरेक्टर थे, वो मैं डब कर रही थी। और एक दिन पहले जब मैंने काम किया तो कुछ किसी कारण से रील नहीं आ पाई, कुछ हो गया, शायद 4-5 रील रह गई उसकी। उन्होंने कहा अब ये हम कल करेंगे, और रिलीज सर पे था, रुक नहीं सकते थे। और कहा कल, कल तो पूरे दिन मेरे लिए हॉल लिया गया है। मैंने कहा मैं कल नहीं आ सकूंगी। वो बोले सोच लीजिए, 9 रील हो चुकी है आपकी आवाज में। तो मैंने कहा लेकिन मैं कल कैसे आ सकूंगी क्योंकि मैं कर नहीं पा रही हूँ। बोले एक काम करते हैं 2 बजे से रख लेते हैं, सुबह आप रिहर्सल कर लीजिएगा, 2 बजे से रख लेते हैं, लेकिन हम फिर इसे टाल नहीं सकते। और मैं उस जमाने में उस फिल्म में 25,000 रुपए ले रही थी
1: उस समय।
0: तो 25,000 रुपए उस वक्त जब मतलब लोगों की सैलरी 2,000 होती थी महीने में। और वो उन्होंने कहा, महेश भट्ट के एसोसिएट डायरेक्टर थे शायद, उन्होंने मुझे कहा, वो उस दिन समझा रहे थे वो मुझे बैठ के, बोले आप एक्टिंग क्यों करती हैं, आप थिएटर क्यों कर रही हैं, आप तो टॉप डायरेक्टर के साथ कर चुकी, आपको सारे एक्सपीरियंस मिल गए, आप क्यों कर रही हैं थिएटर। मैंने बोला मुझे खुशी होती है। बोले और ये डबिंग इसमें क्या होता है। मैंने कहा ये भी खुशी होती है। तो बोले कौन सी बड़ी खुशी है, ये या वो। मैंने कहा खुशी तो एक बराबर है, लेकिन बोले क्या नहीं करके आप कंफर्टेबल होंगी। मैंने कहा थिएटर, क्योंकि इससे मेरा खर्चा चला। तो बोले तो आप सोच लीजिए आप किस चीज के लिए किसको छोड़ रही हैं। मैंने कहा ठीक है। बोले कल आप 2 बजे आ सकती हैं तो आ जाइए, वरना टाटा बाय बाय। मैंने कहा ओके। अब हुआ ये कि मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी कि मैं जयरूप जीवन को बोलूं कि मैं कल भी नहीं आऊंगी। मैंने उनको बोला कि कल हम 9 बजे से रखते हैं और हम कम से कम 4 रन थ्रू हम कर लेंगे कल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं। उन्होंने मेरे लिए थिएटर लिया। अब हुआ ये कि किसी को नहीं पता था कि मैं 2 बजे चली जाऊंगी, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये कह दूं कि मैं 2 बजे जाऊंगी। मैंने बोला सुबह 9 बजे सब लोग आ जाएं और 9 बजे से रिहर्सल करते होंगे। ठीक है, मैं 9 बजे पहुंच गई लेकिन बाकी कोई नहीं पहुंचा। जयरूप जीवन भी 10 बजे पहुंचे, 10:30। उनको लगा 9 बोल रही है, कहां 9 बजे तक आ पाएंगी। और मैं इस वजह से ज्यादा वो थी कॉन्शियस कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा था। हम वहां पहुंचे, देखा कोई नहीं आया आर्टिस्ट। अब जयरूप जीवन बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी, आर्टिस्ट आने शुरू हुए, 10 बजे से शुरू हुए, क्योंकि ये इमेच्योर थिएटर था, पेमेंट तो मिलता नहीं था किसी को। करते करते वो शुरू हुआ 11:30-11 बजे, 1 रन थ्रू हुआ, दूसरा शुरू हुआ, 2 बज गए। अब 2 बज गए वहां थिएटर ले चुके हैं वो लोग पे कर रहे हैं एक एक मिनट का
1: जी,
0: और वहां मेरा वेट हो रहा है। 1:45 बजे से मैं कॉन्शियस होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैं इधर उधर देख रही, डायलॉग भूल रही, 2 बज गए। अब मैं सोचू बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूंगी, अरे 1 रन थ्रू हुआ बार बस। जब तक मैं कुछ बोलूं कुछ करूं, जयरूप जीवन मेरे पास आए, बोलने लगे प्रभा जी प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ। 2:15 बजे बोलते क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा मेरी डबिंग है। बोले आज भी। मैंने बताया, मैंने कहा हाँ कल काम रह गया था उनका, तो मुझे आज भी

0: बुलाना है। मैंने कहा आप बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगी। 25,000 रुपए हैं, महेश भट्ट का काम है।
1: सही बात,
0: इतने बड़े उस पर मेरा नाम हो जाएगा खराब। आप कहें तो मैं छोड़ दूंगी और आप कहें तो करूं। सर पकड़ के बैठ गए, बोले मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम ये काम मत करो, कर लो। मैंने कहा और मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब मैं बहुत गिल्ट में जी रही हूँ 2 महीने से, अब मैं थिएटर नहीं करूंगी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन जब शो हुआ तो शो में वही हुआ कि मेरी हंसी छूट गई,
1: जो नहीं होनी थी,
0: जो नहीं
1: जिसका
0: होना,
1: उन्हें डर था,
0: जिसका उन्हें डर था। और वो इतना स्पॉन्टेनियस था एक्टर सुशील। अब वो लोग मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे करेक्शन करने की कोशिश कर, वो जितना संभालते मैं उतना हंसती, क्योंकि वो कुछ ऐसा था कि मैं नाराज हो जाती हूँ, झगड़ा करती हूँ और मायके जा रही हूँ तो बोलते हैं झगड़ा जा रही मायके जा रही हूँ, बड़ी तुम्हारी तमीज है मायके जाने की, ऐसा कुछ हो उनका था। मेरी हंसी छूट गई, हंसी छूटी तो वो बोलते हैं अरे हंस रही है, देखो वो ऑडियंस को बोल रहे देखो कैसी पागल लड़की है, मैं इस पे नाराज हो रहा हूँ और ये हंस रही है। और वो ऐसे ऐसे मुंह बना के बोले कि मेरी और ज्यादा हंसी, इतनी हंसी छूटी कि मेरे साड़ी का पल्लू था, मैंने पूरा पल्लू अपना मुंह में घुसार लिया, फिर भी मेरी हंसी नहीं बंद हो रही। उसमें वीएम व्यास भी थे, वो मेरे ससुर बने हुए थे और वो मेरा पति बना था। उस दिन जो स्टेज पे मेरी हालत हुई ना, वो मैंने कहा बाप रे मैं अब इस लायक नहीं हूँ कि मैं थिएटर कर सकूं, क्योंकि रिहर्सल्स मैं दे नहीं सकती हूँ पूरी, क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज है ना कि आप हर बार एक पूरी परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। एक बार हरिवदन में ये हुआ था कि हम लोग शो कर रहे थे और उसमें देवदत्त को जो मेन रोल था, आलोक चटर्जी, कितना बड़ा नाम है वो, आलोक चटर्जी ने किया था वो, आलोक चटर्जी को लूज मोशन लग गए।
1: अच्छा
0: हाँ, अब बताइए क्या करें। अब वो बेचारा एक हाथ से पेट पकड़े, एक हाथ से पूरा ये रिहर्सल, मुझे भी पता नहीं चला, बस मुझे लगे वो गायब हो रहा है, थोड़ी देर में एंट्री हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सबने बताया कि उसको डिसेंट्री हो गई थी, उल्टी हो रही थी,
1: बताइए,
0: लूज मोशन हो रहे थे, उसमें वो आ रहा था,
1: बिल्कुल
0: उसमें कर रहा था।
1: उसमें भी अगर कलाकार संभालता है तो उसकी महानता है।
0: आप सोचिए, सोचिए कितना
1: हर परिस्थिति में नाटक को एंड करना चाहता है कि नाटक एंड हो जाए,
0: शो मस्ट गो ऑन।
1: बिल्कुल सही कहा। तो चलिए हमारा भी शो चल रहा है और बताइए कौन से गीत आपको सुनवाए। अब
0: गीत आप सुना दीजिए, आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है।
1: क्या बात है।

0: प्रभा जी, सीरियल की दुनिया अब चलते हैं हम, जहां आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है और एक मुकाम बनाया है अपना। तो थिएटर की दुनिया से निकलकर जब आप टीवी की दुनिया में आई तो वो शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि वो जमाना था दूरदर्शन का।
1: जी हाँ जी।
0: तो बुनियाद सीरियल में आपने जाने माने निर्देशक रमेश सिप्पी के साथ काम किया है, उनके निर्देशन में, और बहुत ही क्लासिक विभाजन गाथा थी ये बुनियाद जो है।
1: जी, जी।
0: आपको मतलब किस तरह से चयनित किया गया, क्या ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के जरिए चुना गया, या
1: मैं आपको बताऊँ, ये जो ऑडिशन वाला चक्कर है ना, ये बाद में शुरू हुआ है।
0: अच्छा, पहले नहीं होता?
1: तब नहीं होता था, तब तो डायरेक्टर सीधे देख के और वो अपना जजमेंट होता था उनका। इसके लिए हुआ ये था कि मैं यहाँ आई थी तो मैंने एक टेलीफिल्म की थी, उसका नाम था ढहती बुनियादें। तो ढहती बुनियादें मैंने आशा शर्मा, जो बुनियाद में चायजी का रोल कर रही थी, उनसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मैंने उनसे कहा कि आज मेरी फिल्म आएगी, आप देखिएगा। उन्होंने देखा, उनको लगा लड़की तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। तो वहां एक कैरेक्टर निकला बुनियाद में, तो उन्होंने रमेश जी को बोला कि एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस आई है, थिएटर की है, नई लड़की है, आप देख लीजिए। तो आशा जी ने मुझे वहां रिकमेंड किया, रमेश जी ने मुझे बुला लिया जहां शूटिंग हो रही थी फिल्म सिटी में। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे बात की, मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह देखे, बैकग्राउंड पूछा, थिएटर बैकग्राउंड था मेरा पूरा, फिर वो फिल्म थी टेलीफिल्म, तो उन्होंने बस देखा और मुझे वो स्क्रिप्ट वहीं थी ही, उन्होंने कहा ये जरा पढ़ दो, मैंने पढ़ दिया, बस उन्होंने मुझे ले लिया।
0: जी, तो आपका इसमें रोल क्या था, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: हाँ जी, मेरा रोल था फूलमती, एक नेगेटिव कैरेक्टर था।
0: बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं यश चोपड़ा साहब, उनका एक धारावाहिक आया था डॉक्टर साहब, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रही थी, तो इसके निर्देशक परीक्षित साहनी थे।
1: जी,
0: तो प्रभा जी, दूरदर्शन के लिए एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक आया था अधिकार।
1: हाँ जी।
0: तो जानू बरुआ साहब इसमें
1: डायरेक्टर
0: थे, तो इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका कैसे मिला आपको?
1: ये तो बस ऐसी सौभाग्य समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो गई थी उनसे, प्रोड्यूसर से मिलने, वो मंजू सिंह थी ना,
0: मंजू सिंह थी,
1: तो मंजू सिंह जी से मिली। मुझे नहीं पता था कि इस एपिसोड को वो डायरेक्ट करने वाले हैं बरुआ जी, ये तो मुझे वहां जाके पता चला सेट पे कि वो जानू बरुआ जी। मैं तो जानू बरुआ जी को जानती भी नहीं थी तब तक, उतना वो नहीं था। तो उनके साथ मैंने एक चीज देखी, ये मैंने उनसे सीखा कि हम लोगों का उसमें जो रोल था वो था एक मजदूरों की लीडर का। तो उसमें क्या है, फिश का, कोल्ड स्टोरेज का, कि वहां पे वो फिश में वहां काम करती है, वो कोल्ड स्टोरेज में लेडीज, तो उनका जो शोषण होता है तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ, वो होता है। तो मैं भी वही थी, और मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। अब उसमें तो मछलियां ही मछलियां, क्योंकि वही था मेरी हालत खराब, तो वो थी उसको साफ करने वाली, वो मजदूर हैं, तो वो टोकरे भर भर के और चारों तरफ सफेद सफेद वो मछलियां ही मछलियां। अब मुझे आ रही थी घिन बहुत भयंकर, क्योंकि मैं तो कभी छुआ ही नहीं मैंने। अब मुझे उन्होंने कहा चलो करना है तो करना है। अब जब मैंने किया तो मैं ऐसे घिना घिना के छील रही उसको, ये तो मतलब मैं इस तरह से करके दिखाऊं, कैसे दिखाऊं कि जैसे कोई बहुत पढ़ी लिखी मतलब एजुकेटेड लेडी, बहुत धीरे धीरे नाखून से उठाए, उंगलियों से उठाए, धीमे से रखे, लेकिन आप मजदूर हैं, आपका डेली का काम है वो, तो आपका तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप इतनी नजाकत से उठाएंगी, इतनी नजाकत से रखेंगी।
0: सही है।

0: वो जब मैंने ऐसे किया तो जानू बरुआ मुझसे बोले कि आपने कभी मछली नहीं छुई है क्या? मैंने कहा नहीं छुई। बोले क्या बात कर रही है? मैंने कहा हाँ मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बोले यहाँ मछली साफ करने वाली मजदूर है ये, उसका जीवन मछलियों में है, वो दिखना चाहिए आपसे। मैंने कहा आप क्या करूं? मैंने कहा वो कैसा होता है मुझे नहीं पता। तो बोले इतनी टोकरी रखी थी, इतनी मछलियां आपको साफ करनी है, और उन्होंने रियल मजदूर लेके आए, वहां थे रियल मजदूर जो शूटिंग पे नहीं थे, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठिए इनसे सीखिए। मैंने उनसे सीखा, जब तक उस परफेक्शन से मैंने मछली छीली नहीं तब तक शूटिंग रुकी रही।
1: बहुत बड़ी बात।
0: और नाक मतलब मुझे ऐसे लगे मैं मर जाऊंगी उस बदबू से। तो मैंने कहा मैं नाक चढ़ रही, बोलने लगे आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका जीवन है वो, आप उन्हीं में रहती हैं, आपके चेहरे से नहीं लग रहा क्या आप फैमिलियर हैं इनसे?
1: बिल्कुल
0: ये थे जानू बरुआ। उन्होंने कहा आप ऐसा लगना चाहिए आपके जीवन है। क्या करती फिर मैं? टोकरी लेना रहेगा, कुछ नहीं हो सकता, जितना तुम ये करोगे उतना होगा। तो मैं टोकरी लेकर खूब अच्छे से, वो खुद छील छील के दिखा रहे कि इसको ऐसे छीलो, इसकी मुंडी ऐसे तोड़ो, इसमें से ऐसे धागा निकालो,
1: क्या
0: फास्ट चलना चाहिए हाथ।
1: क्या बात,
0: ये
1: मतलब वो प्रैक्टिस दिखनी चाहिए,
0: प्रैक्टिस दिखनी चाहिए, मतलब आप रियल लगना चाहिए। यही बात है मंदाकिनी जी, जो मैं कह रही थी ना आपसे कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और मैं चूंकि एपिसोडिक ज्यादा किए मैंने, इसलिए मुझे ये सौभाग्य मिल पाया। आप सोचिए कि एक तरफ रमेश सिप्पी, दूसरी तरफ गुलजार, तीसरी तरफ श्याम बेनेगल, जानू बरुआ,
1: बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर,
0: थिएटर में भी और फिल्म में
1: टॉप ग्रेड के कलाकार,
0: टॉप ग्रेड के, और आवाज में भी, डबिंग में भी फिर यही लोग थे।
1: तो चलिए आपकी पसंद का कोई गीत सुन लेते हैं।
0: हाँ जरूर, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आए।

0: डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि 1988 में धारावाहिक आया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक पर था, भारत एक खोज। तो इसके निर्देशक भी महान थे, श्याम बेनेगल साहब।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और इस धारावाहिक में आपका जो किरदार था वो प्रेमवदा का था।
1: प्रेमवदा,
0: किस तरह से आपने प्रेमवदा का ये कैरेक्टर जिया?
1: बस वही जैसे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर को जीना होता है उसको समझ के, उसके जीवन को फील करके। तो उनके साथ वो भी अगेन उतनी ही बारीकी से काम करने वाले थे कि वो मेन कैरेक्टर्स पे ही नहीं बैकग्राउंड पे भी वो उतना ही काम करते हैं। श्याम जी,
0: जी जी,
1: पर्दे को रियलिटी में कैसे आप जिए ये वो श्याम बाबू
0: सिखाते थे। आपने बहुत सारे धारावाहिक में प्रभा जी काम किया है, अगर हम यहाँ जिक्र करने बैठे तो शायद जो समय है वो पूरा हो जाएगा।
1: हाँ।
0: ब्योमकेश बख्शी थे, उसमें आपने काम किया है।
1: जी।
0: कई टेलीफिल्म्स में भी आपने काम किया है। इसके अलावा आपने शिव महापुराण की बात करें या आप बीती, कमांडर, सांच को आज, ऐसे बहुत सारे धारावाहिकों में आपने काम किया है, तारा है या एयर होस्टेस है। तो उस समय जो कहानी में गहराई होती थी, एक सामाजिक संदेश था, आज थोड़ा सा कम होता है, एपिसोड बहुत लंबे हो गए हैं।
1: हाँ, वो तो पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि आजकल कमर्शियल ही रह गया है प्रोग्राम बनाना। आजकल मतलब वो गहराई को छूना उनका उद्देश्य भी नहीं रह गया है। तो पहले जो होता था वो लोगों के दिलों में उतरना होता था।
0: जी,
1: अभी
0: जी।
1: क्या है कि खींचना है उनको ज्यादा से ज्यादा।
0: आपने फिल्म अकेला में
1: और अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिला, उसमें वो रोल था नर्स का जिसको वो फ्लर्ट करते हैं, तो फिल्म की लंबाई बढ़ गई थी तो उसकी वजह से वो रोल पूरा काट दिया गया मेरा।
0: तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और क्या आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं? बहुत सारे सीरियल्स में बहुत सारे कैरेक्टर को आपने अपनी आवाज भी दी है, जैसे कि स्मिता पाटिल हैं, मीनाक्षी शेषाद्री हैं, किमी काटकर हैं, रमैया, मुनमुन सेन और बहुत सारी अभिनेत्रियों के अलावा आपने जैसे जेम्स बॉन्ड जो फिल्म थी उसमें भी आपकी अपनी आवाज है।
1: 007 जेम्स बॉन्ड गोल्डन आई नाम था उस फिल्म का,
0: उसमें आपने अपनी आवाज दी। और धारावाहिक जो है ओम नमः शिवाय, मैं दिल्ली हूँ, रामायण और महाभारत में भी आपकी आवाज।
1: जी जी जी जी, मेरी आवाज है
0: जी।
1: और उस समय तो लगभग हर सीरियल की हीरोइन मैं ही कर रही थी और फिल्म्स भी मैंने करीब 1000 के ऊपर फिल्म्स में अपनी आवाज दी है।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: जी,
1: और उनमें से मैक्सिमम हीरोइंस के लिए मेरी आवाज मैंने दी है। तो जैसे आपने अभी बताया मीनाक्षी शेषाद्री, स्मिता पाटिल इनकी, और मतलब वो वाकई बहुत बड़ी विधा है, इसको डबिंग कहते हैं। अब तो लोग जानने लगे हैं डबिंग के बारे में, उस वक्त लोग नहीं जानते थे। डबिंग क्या है? एक्टिंग है विद लिमिटेशन।
0: तो स्मिता पाटिल के लिए आपको आवाज क्यों देनी पड़ी?
1: स्मिता जी की डेथ हो गई थी तो कुछ फिल्में थी जो तैयार थी और स्मिता जी नहीं रही, तो उनकी आवाज को मैच करती हुई कोई आवाज चाहिए थी, तो ये मेरी थी पेट पाप और प्यार। इसमें अगर आप देखेंगी ना, मैं गारंटी देती हूँ आपने, मैं खुद नहीं पहचान पाती उस फिल्म को। मैं देखती हूँ, सोचती हूँ ये वाकई मेरी आवाज है या स्मिता पाटिल की है।
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं?
1: देखिए, मैंने जब तक एक्टिंग की उसके बाद में मैंने अपना पूरा फोकस वॉइसिंग पे शिफ्ट कर दिया। वॉइसिंग का मतलब है आवाज की हर विधा।
0: अच्छा।
1: उसमें कार्टून भी आते हैं, कार्टून नेटवर्क है, उसमें फिल्में भी आती हैं, डबिंग आती हैं, डिस्कवरी है, पीबीसी है, इसकी वॉइस ओवर है, विज्ञापन है, फिल्म्स हैं, ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, करती आ रही हूँ पिछले 20 साल से कम से कम।
0: जी जी।
1: तो सिर्फ आवाज कर रही हूँ और यही सारा काम मैं कर रही हूँ।
0: कार्टून फिल्म का कोई एक डायलॉग याद है अगर आपको?
1: ऐसे एकदम पर्टिकुलर तो नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कार्टून में कैसे तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, बनाते हैं, सब आर्टिफिशियल आवाजें बनाने की, जैसे कि क्या कहाँ से आ रहा है तो क्या बताऊ, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मैं नहीं आ सकता, समझो समझो समझो करो समझो करो, कैसे छोड़ दूंगा।
0: हाँ, बात को
1: ऐसे आवाज।
0: चलिए गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: तुझे जीवन की डोर से बांध
0: दिया है।

0: प्रभा जी, आज आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया और इतना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के विविध भारती के स्टूडियो में आप आई, आपने अपनी अभिनय यात्रा हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तकनीकी सहायक समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: आज के मेहमान।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।
2: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी सखी काजल सोनी का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि सभी सकुशल होंगे और अपने घर परिवार के साथ खुशहाल होंगे। श्रोताओं, घर हर इंसान के लिए सबसे अहम व प्यारी जगह होती है। घर को एक पवित्र स्थान माना जाता है, एक ऐसी जगह जहां हम सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। घर केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, मूल्यों और जीवन शैली का प्रतिबिंब है। हम अपने घरों को जिस तरीके से सजाते हैं ना श्रोताओं, वह हमारे मूड, व्यवहार और यहाँ तक कि हमारे समग्र व्यक्तित्व को भी काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। तो आज क्यों ना इसी विषय पर अपनी बहनों से बात करने की, घर की सजावट कैसे आपके व्यक्तित्व को उभार सकती है या फिर इन दोनों के संबंध को उजागर कर सकती है। श्रोताओं, रंगों से हमारा व्यक्तित्व झलकता है। अगर हमें चटक रंग पसंद है, जैसे चमकीले रंग या नारंगी, लाल आदि, तो ऊर्जावान और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को दिखाते हैं ये, जबकि नर्म या न्यूट्रल रंग शांत और अंतर्मुखी स्वभाव को दर्शाते हैं। गहरा काला या गहरा रंग आत्मविश्वास और कलात्मकता का प्रतीक है। यदि आपका घर अव्यवस्थित व बिखरा बिखरा सा रहता है, ये आपकी उलझन भरी मनोस्थिति व असफलता को दर्शाता है, साथ आपकी लापरवाह स्वभाव की ओर भी इशारा करता है। जबकि यदि घर व्यवस्थित है तो आप अनुशासित है। पुरानी वस्तुओं का सजावट में उपयोग परंपरा और इतिहास के प्रति आपका प्रेम दिखाता है। कितने घरों में हम जब जाते तो हमें दिखाई देता है कि कहीं बहुत ही पुरानी चीजों से सजाया हुआ होता है, तो यह आपकी पुरानी चीजों और अपने इतिहास के प्रति लगाव को दर्शाता है। श्रोताओं, घर में रखी तस्वीरें, यात्रा के दौरान खरीदी गई वस्तुएं या हैंडमेड कलाकृतियां आत्मसम्मान और एक अनूठी व्यक्तिगत कहानी को दर्शाती है। दीवार पर लगी पेंटिंग्स या हैंगिंग आपके रचनात्मक और कला के प्रति प्रेम को उजागर करती है। इसी तरह घर के कोनों में पौधे या शांत स्थान जैसे पूजा घर और आध्यात्मिक प्रकृति व प्रेम शांत स्वभाव को दर्शाता है। श्रोताओं, रचनात्मकता का उपयोग करके हम कम बजट में कुशन और पुरानी वस्तुओं के साथ सजावट करना भी हमारे व्यवहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण को उजागर करता है। अपनों से मिले उपहार या पुरानी विरासत से जुड़ी चीजें, यात्रा की यादें, रंगों का चयन, ये आपके जीवन की कहानियों से सजा कोना आपकी रचनात्मक बताने के साथ साथ आप कौन हैं, कैसे हैं और आप जीवन को कैसे देखते हैं, इस बात का परिचायक होता है। श्रोताओं, अगर हम सारांश में कहें तो घर की सजावट सौंदर्य से कहीं अधिक है। ये हमारे व्यक्तित्व और जीवन शैली का प्रतिबिंब है। रंग, साज सज्जा, व्यक्तिगत स्पर्श और लेआउट के संबंध में हमारे द्वारा किए गए सभी चुनाव हमारे घरों के वातावरण में योगदान करते हैं, हमारी भावना और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अपने रहने के वातावरण को संवारते हुए हमें अपनी पहचान व्यक्त करने और अपने कल्याण को बढ़ाने का अवसर मिलता है। इसीलिए हमारे घर हमारे व्यक्तित्व का सच्चा प्रतिबिंब होना चाहिए। श्रोताओं, एक ऐसी जगह जहां हम फल फूल सके और सबसे अधिक सहज महसूस कर सके, ना कि अपने घर में आते खुद को ही बोझिल बोझिल सा लगे। अपने घर को अपने व्यक्तित्व का आईना बनाएं कि जब भी आप उसमें प्रवेश करें आपको एक सुकून और शांति से महसूस हो। अपने घर को प्रकृति से जोड़े और खुद भी जुड़े, इससे आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाएंगे। वैसे भी श्रोताओं, आज देश समाज ने कितनी तरक्की कर ली है कि चांद पर लोग घर बसाने की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन इसी तरक्की ने हमें बहुत सारी मुसीबतों में भी डाल दिया है। आजकल साइबर अपराध तेजी से फैल रहा है। आए दिन खबरें आती हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ और भी न जाने क्या क्या। डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी का हिस्सा है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के समय घबराए नहीं, ये एक साइबर फ्रॉड है। आप कभी ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत कॉल करें, क्योंकि कोई भी असली पुलिस या सीबीआई अधिकारी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करता है। जालसाज डर का माहौल बनाकर पैसे ठगते हैं। ऐसे में तुरंत साइबर क्राइम गवर्नमेंट इन पर ऑनलाइन

शिकायत दर्ज करें। अपने बैंक को कॉल करके तुरंत खाता फ्रीज कराएं। अगर पैसे कट गए तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें। अपना ओटीपी, पिन या बैंक विवरण किसी भी अनजान से साझा न करें। अनजान लिंक से स्काइप या अन्य ऐप डाउनलोड न करें। तुरंत अपने करीबी या परिवार के सदस्यों को सूचित करें। याद रखें कि पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, नहीं वीडियो कॉल पर पैसे मांगती है। इसलिए थोड़ी सी सतर्कता हमें बहुत बड़े स्कैम से बचा सकती है। श्रोताओं, ये तो हमने अपने श्रोताओं के साथ जानकारी साझा की कि कैसे हम अपने आप को डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम से बचा सकते हैं। अब हम संक्षिप्त जानकारी साझा करते हैं आपके साथ कार्बन नेगेटिव देश के बारे में। श्रोताओं, भूटान विश्व का पहला और एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है, जिसका अर्थ है कि ये CO2 जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उससे कहीं अधिक अवशोषित करता है। कारण, इसकी 70% से अधिक भूमि वनों से आच्छादित है। भूटान के संविधान में यह अनिवार्य है कि इसकी कम से कम 60% भूमि वनों से आच्छादित है। इसके वन में एक प्रमुख कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। लकड़ी पर निर्भरता कम करने के लिए वहां की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को मुफ्त बिजली प्रदान करती है। श्रोताओं, भूटान बड़े पैमाने पर पर्यटन के प्रभाव को रोकने के लिए पर्यटकों से विकास शुल्क वसूलता है। ये थी संक्षिप्त जानकारी कार्बन नेगेटिव देश के बारे में। आज हमने अपने श्रोताओं से अपने घर को व्यवस्थित किया और साथ ही हमने जानकारी साझा की कार्बन नेगेटिव देश के बारे में। अब फिलहाल तो समय हो चला है आपके मनोरंजन का, तो अपनी बातों को देते हैं विराम और करवाते हैं आपका मनोरंजन इस मधुर गीत के साथ, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अभी हमारे श्रोताओं ने सुना ये गीत और आशा करते कि हमारे श्रोताओं को गीत पसंद आया होगा। श्रोताओं, आज हमने अपने कार्यक्रम के दौरान बात की कि डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम से बचाव के बारे में। श्रोताओं, डिजिटल युग ने बच्चों के व्यवहार में भी काफी परिवर्तन ला दिया है। उनके इस बदलते व्यवहार व उनके समाधान जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती हेमलता गुप्ता जी को। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। विषय है डिजिटल युग में बच्चों का बदलता व्यवहार और उसके समाधान। वार्ताकार है श्रीमती हेमलता गुप्ता।
2: सखियों, कल शाम मैं कॉलोनी के पार्क में बैठी थी। वहाँ एक बेंच पर 3-4 बच्चे बैठे थे। ताज्जुब की बात जानते हैं क्या थी? चारों के हाथ में मोबाइल थे। चारों एक दूसरे से बात करने की बजाय उस छोटी सी स्क्रीन में खोए थे। उनके बीच सन्नाटा था, लेकिन उनके अंगूठे स्क्रीन पर बड़ी तेजी से चल रहे थे। सखियों, तभी मुझे ख्याल आया, क्या हमने मैदानों की रौनक को मोबाइल के पिक्सल में कैद कर दिया है? तो सखियों, आज का हमारा विषय यही है, डिजिटल युग में बच्चों का बदलता व्यवहार। यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं है, यह बदलाव हमारे आने वाली पीढ़ी की सोच और उनके संस्कारों का है। सखियों, आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सुबह की शुरुआत सूरज की पहली किरण से नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी से होती है। आज के इस विषय को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक 8 साल का बच्चा था। उस बच्चे के पास दुनिया के सबसे महंगे गैजेट थे, लेटेस्ट टैबलेट था। उसके माता पिता दोनों काम में व्यस्त रहते थे, तो उन्होंने बच्चे को समय देने की बजाय उसे व्यस्त रखने के लिए उसे डिजिटल दुनिया सौंप दी। वह बच्चा घंटों अपने कमरे में बंद रहता, न वह किसी से ज्यादा बात करता, न उसे बाहर खेलने का शौक था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। अगर कभी इंटरनेट बंद हो जाता तो वह चिड़चिड़ा हो जाता, चीजें फेंकने लगता। एक दिन उसके दादाजी गांव से शहर उसके साथ कुछ दिनों के लिए रहने आए। उन्होंने देखा कि वह बस पूरे दिन स्क्रीन से चिपका रहता है। एक दिन दोपहर में दादाजी ने पुराना अखबार निकाला और उसका कागज का हवाई जहाज बनाया। दादाजी ने उसे उड़ाया तो वह बच्चे के टैबलेट के ऊपर जाकर गिरा। उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उस बच्चे

चिढ़कर उसे हटाना चाहा, लेकिन दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा क्या तुम्हारा यह टेबलेट इस जहाज को आसमान की सैर करा सकता है। उस बच्चे ने दादाजी की ये शब्द सुनकर पहली बार टैबलेट से नजर हटाई और फिर अगले एक घंटे तक दादाजी के साथ खेलता रहा। दादाजी ने उसे कागज की कश्ती बनाना सिखाया, पतंग उड़ाना सिखाया और मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी में छोटे छोटे घर बनाना सिखाया। उस दिन उस बच्चे को एक बात समझ आई कि जो मजा चीजों को महसूस करने में है वो क्लिक करने में नहीं। जब वह शाम को मिट्टी से सने हाथों के साथ घर के अंदर आया तो उसके चेहरे पर वो चमक थी जो हजारों लाइक मिलने पर भी नहीं आती। सखियो, यह सिर्फ एक उस बच्चे की कहानी नहीं है, ये ऐसे लाखों बच्चे की कहानी है जो हमारे बीच में है। क्यों, सही कहा ना मैंने? कुछ ऐसी ही कहानी हमारे घर में भी है। सखियों, आपने भी यह महसूस किया है ना कि इस डिजिटल युग में उनके व्यवहार में बड़े बदलाव किए हैं, जैसे संवाद की कमी। आजकल बच्चे अपनी बात शब्दों में कहने की बजाय इमोजी में कहने लगे हैं, इससे उनके अंदर भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता कम हो रही है। सखियों, पहले जब हम अपनी माँ के साथ छुट्टियों में नानी के घर जाते थे तो पुराने मोहल्ले में सबको पता लग जाता था कि बच्चे छुट्टियां बिताने नानी के घर आए हैं, लेकिन आजकल घर में मेहमान आकर चले भी जाते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनमें संवाद करने की आदत ही नहीं है। बच्चे अपने विचार माता पिता से साझा करने के बजाय सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सही समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप हमें समझते नहीं है। दूसरा हमारा आता है नींद और चिड़चिड़ापन। सखियो, ब्लू लाइट यानी नीली रोशनी, इसके संपर्क में रहने से बच्चों की नींद प्रभावित हो रही है। इसका असर उनके स्वभाव पर भी पड़ रहा है, उनके स्वभाव में आक्रामकता बढ़ रही है। इसके साथ साथ उनमें धैर्य की भी कमी देखने को मिलती है और इसी कमी के कारण बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्रिएटिविटी का अंत। सखियो, डिजिटल युग में बच्चों के बदलते व्यवहार का एक कारण क्रिएटिविटी का अंत होना भी है। जब सब कुछ बच्चों को रेडीमेड वीडियो के रूप में मिलता है तो बच्चों की अपनी कल्पना शक्ति, सोचने समझने की शक्ति दम तोड़ने लगती है। वे सोचते ही नहीं है, बस देखते हैं। बच्चों को जब भी स्कूल में होमवर्क मिलता है या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, खुद से उसे पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। सखियो, स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। सखियो, ये तो हमें मालूम ही है कि लगातार स्क्रीन के सामने बैठने से न केवल बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि बच्चों के कमर दर्द और उसके साथ साथ उनकी एकाग्रता भी प्रभावित हो रही है। पांचवा हमारा बहुत ही गहरा पॉइंट आता है, साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य। सखियो, जब हम व्यवहार में बदलाव की बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही गंभीर विषय भी आता है, साइबर बुलिंग और प्राइवेसी। पहले के समय में अगर बच्चा बाहर किसी से झगड़ कर आता था तो परिवार वालों को पता चल जाता था, लेकिन आज बच्चा अपने कमरे में बैठा है फिर भी वह किसी अनजान व्यक्ति के मानसिक दबाव या ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हो जाता है। परफेक्ट दिखने की होड़। सखियो, डिजिटल युग में बच्चों का व्यवहार इसलिए भी बदल रहा है क्योंकि वे एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन गए हैं जहां परफेक्ट दिखने का दबाव बहुत ज्यादा है। बच्चों में हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं वे इस युग में पीछे ना छूट जाएं। थोड़ा सा पीछे हटना उनके तनाव में उन्हें ला देता है। सखियो, आज के बच्चे की खुशी इस बात पर टिकी है कि उसकी फोटो पर कितने हार्ट या लाइक आए। अगर कम लाइक मिले तो उनका आत्मविश्वास जगमगाने लगता है। किसी रील या वीडियो पर दोस्त को ज्यादा और उनको कम लाइक या फॉलोवर्स रकम रह गए तो भी उनका आत्मविश्वास कम होने के साथ साथ बच्चे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। सखियो, अब आप सोच रही होंगी कि समस्या तो बहुत सारी और बहुत गहन है, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि हम बच्चों से फोन छीन लें? नहीं, यह समाधान नहीं। समाधान है डिजिटल अनुशासन, नो टच जोन। सखियो, हमें घर में एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां फोन वर्जित हो, जैसे डाइनिंग टेबल, बेडरूम आदि। सवालों के जवाब खुद दें। सखियो, जब कभी बच्चा आपसे कुछ भी पूछता है तो हम उसे कह देते हैं, फोन में देख लो, गूगल से पूछ लो। क्यों, ऐसा बोलते हैं ना? अब आप हाँ में सर हिला रही होंगी, लेकिन ऐसा कहने की बजाय आप खुद उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भले ही आपको गूगल से देखकर समझाना पड़े, यकीन मानिए आप बेहतर ढंग से समझा पाएंगी। उदाहरण बने, अगर हम खुद फोन में डूबे रहेंगे

0: बच्चा कभी किताब नहीं उठाएगा। याद रखें, बच्चे अनुकरण करते हैं, बच्चे हमें सुनते कम हैं, हमें देखकर ज्यादा सीखते हैं। इसलिए कोशिश करें जब बच्चा स्कूल में हो उस समय ही आप मोबाइल से जुड़े हुए अपने सारे काम पूरे कर लें। वह जब घर में हो तो हमारे हाथ में मोबाइल ना देखे। सखियों, अभिभावक होने के नाते भी हमारी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। हमें यह समझना होगा कि हमें उनके लिए घर पर ही एक ऐसा सेफ स्पेस यानी सुरक्षित जगह बनना होगा। याद रखें, बनाना नहीं बनना होगा, जहां वे बेझिझक आकर कह सकें, मम्मी इंटरनेट पर आज मुझे किसी ने बुरा कहा। इस चर्चा को सुनने के बाद क्या हम एक प्रयोग कर सकते हैं? आज जब आप घर जाएं या अगर आप घर पर ही हैं, तो अपने 2 घंटे के लिए अपने फोन से उपवास ले लें, यानी डिजिटल उपवास करें, और वह 2 घंटे आप अपने परिवार को दें। अपने पुराने एल्बम खोलें, बच्चों को बताएं कि बचपन में आपके पास स्मार्टफोन नहीं थे, फिर भी मुस्कुराहट कितनी असली थी। सिर्फ फोन में फोटो अच्छे आए इसलिए उन्हें झूठी हंसी हंसनी नहीं पड़ती थी। सब कुछ ओरिजिनल था, सब में वास्तविकता थी, कुछ भी बनावटी नहीं था। आज बच्चों व परिवार के साथ बैठकर कोई खेल खेल सकती हैं, जैसे लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी आदि, या फिर आप आउटडोर गेम भी खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट। इससे बच्चों का शारीरिक विकास होगा और वह स्वस्थ भी रहेंगे। या फिर सखियों, आप उन्हें अपने बचपन के कुछ कहानी किस्से भी सुना सकती हैं, जिसे वे बड़े ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे भी। आप विश्वास कीजिए, बच्चा हमसे फोन नहीं मांग रहा है, दरअसल बच्चा हमसे हमारा समय और ध्यान मांग रहा है। जब घर में उसे भरपूर प्यार और अटेंशन मिलेगा तो वह फोन की दुनिया को भूलने लगेगा। याद रखिए, बचपन को डाउनलोड नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। आखिर में चलते चलते बस इतना ही कि तकनीक को इंसान ने बनाया है, इंसान को तकनीक ने नहीं। तकनीक एक नौकर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मालिक बहुत ही बुरा। बच्चों को तकनीक का गुलाम मत बनाइए। बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य सुरक्षित रहे। सखियों, हमें यह याद रखना है कि मोबाइल का अगर चार्जर खो जाए तो वह मिल सकता है, लेकिन बचपन खो जाने पर नहीं मिल सकता।
1: अभी हमारे श्रोताओं ने सुनी वार्ता, डिजिटल युग में बच्चों का बदलता व्यवहार और उसके समाधान। वार्ताकार थी श्रीमती हेमलता गुप्ता। तो फिलहाल तो वक्त हो चला है हमारे श्रोताओं के मनोरंजन का। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, इससे पूर्व लीजिए आप सुनिए मधुर गीत।

आशा करते हैं कि श्रोताओं को गीत पसंद आया होगा। हमारी महिला श्रोताओं का सबसे अधिक समय बीतता है रसोई में, लेकिन आजकल एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या यूं कहें कि चिंता रहती है कि पता नहीं गैस सिलेंडर कब खत्म हो जाए और हमारी डिश अधूरी ना रह जाए। इसलिए हमने सोचा कि आज हम अपने श्रोताओं के साथ विचार साझा करें इंडक्शन कुकिंग के बारे में। श्रोताओं, इंडक्शन एक आधुनिक कुकिंग तकनीक है जो बिजली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके सीधे बर्तनों को गर्म करती है, न कि स्टोव की सतह को। ये पारंपरिक गैस का इलेक्ट्रिक चूल्हों की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और ऊर्जा कुशल होती है। ये पानी या भोजन को पारंपरिक चूल्हे की तुलना में तेजी से गर्म करती है। चूंकि सतह खुद गर्म नहीं होती, इसलिए जलने का खतरा भी कम होता है। तापमान को तुरंत कम या ज्यादा किया जा सकता है। गर्मी सीधे बर्तन में उत्पन्न होती है, इसलिए ऊर्जा भी कम बर्बाद होती है। इंडक्शन चूल्हे पर आप स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन और इंडक्शन बेस वाले नॉनस्टिक बर्तनों को काम में ले सकते हैं। ये खाना बनाने के लिए पूर्णतया सुरक्षित है, खासतौर पर इसे गर्मी के मौसम में, क्योंकि इसकी हीट बाहर नहीं आती, इसलिए रसोई का तापमान कम रहता है। श्रोताओं, बातें करने का बहुत मन है, लेकिन क्या करें, स्टूडियो की घड़ी ने इशारा कर दिया कि आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो इजाजत दीजिए अपनी सखी काजल सोनी का। बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम युववाणी और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे कनिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ, आज आपका मुझे पता है, आज आपका फेवरेट फोन इन सेगमेंट प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। तो चलिए बिना किसी देरी के जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से और जानते हैं उनकी कौन सी फरमाइश है, वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो, फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्कार, आपका नाम?
1: मेरा नाम पंचम लाल चतुर्वेदी
0: जी। कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम
0: जी। आपने कहाँ से कॉल किया है?
1: बसवा जिला दौसा से। मैं नियमित श्रोता हूँ आपकी आकाशवाणी का।
0: क्या बात है, तो आपको काफी पसंद है रेडियो सुनना।
1: मैं अलवर से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी। धन्यवाद। तो आइए आपकी फरमाइश का गाना हम सुनते हैं। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज की फरमाइश है उपकार फिल्म का, सब तो वादे प्यार वफा बातें हैं।
0: जी, आपकी फरमाइश को हम अभी कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में
1: आदरणीय
0: स्वागत है आपका।
1: आदरणीय बहन जी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपका नाम?
1: मेरा नाम उदयलाल टेलर है और मैं उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: जी, तो आज आपकी कौन सी फरमाइश है, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म दोरा से ये रेशमी जुल्फे सरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी।
0: चलिए, आपकी फरमाइश को हम अभी पूरा करते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में स्वागत है आपका।
1: मेरा नाम खुशीराम प्रजापति आलापुर से बोल रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मैडम ठीक है, आप सुनाओ।
0: जी मैं भी एकदम ठीक हूँ, और बताइए
1: मैडम। और क्या है, तापमान ज्यादा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है।
0: जी बिल्कुल। तो आप कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं ऐसी गर्मी में?
1: छाछ रबड़ी खा रहे हैं मैडम, छाछ रबड़ी।
0: जी बहुत अच्छी बात है, ऐसे अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए और
1: हाँ
0: हल्का
1: मैडम,
0: खाना खाना चाहिए। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हद कर दी आपने मूवी का टाइटल सॉन्ग।
0: चलिए आपकी फरमाइश को हम अभी पूरा करते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप जी?
1: मैं
0: पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: सूरज बोल रहा हूँ।
0: सूरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? माला खेड़ा से। क्या फरमाइश है, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? नो एंट्री का कौन सा गाना सुनेंगे? ओके, कोई सा भी गाना हम आपको नो एंट्री मूवी से सुना दे, तो मैं आपको मेरी पसंद से कोई गाना सुनाती हूँ। जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: just love me.
1: हेलो
2: हेलो,
1: फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में स्वागत है आपका। आपका नाम बताइए।
2: मेरा नाम विनय है।
1: विनय, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं राजगढ़ से बात कर रहा हूँ।
1: राजगढ़ से कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: मैं गाना सुनना चाहूँगा मत आजमा रे।
1: मत आजमा रे जी, आपकी फरमाइश को हम अभी पूरा करते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

दोस्तों, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कैसा लगा आपको? आई होप आपने काफी इंजॉय किया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी समय बिंदास बोल के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, आपकी हुसन दोस्त आरजे कनिका को नमस्कार।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवी के ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना होगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीकी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नान ताऊ मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत और वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा प्रणालियों की खरीद को बढ़ाने का भी निर्णय लिया। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद 3रे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको अवगत करा दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर में अर्थात 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे 6:30 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। साय 7 कार्यक्रम ग्राम भारती, 7:30 पर फिल्म संगीत। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या का समय रहेगा रात्रि 8:45। तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9:00। रात 9:15 से 11:00 तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 11:00 होंगे हिंदी में समाचार और हमारी आज की सभा संपन्न होगी रात 11:05 पर।

कल की सभा में आपसे मुलाकात होगी प्रातः 5:56 पर। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। 6:35 पर कार्यक्रम रामचरित मानस गान। कार्यक्रम संगीत सरिता का समय रहेगा 6:45।

प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर, 7:30 पर फिल्म संगीत। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात आप सुनेंगे प्रातः 8 बजे, 8:15 पर सुगम संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग प्रातः 8:30 पर। आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे प्रातः 9 बजे,

ये थी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

क्योंकि इस फिल्म से सुना आपने ये गीत आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की, समीर के गीत और हिमेश रेशमिया का संगीत।

अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल स्वर में अभी आपने सुना बॉर्डर फिल्म से ये गीत। गीत जावेद अख्तर का था, संगीत अनु मलिक का।

आशी की फिल्म में अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को। समीर का गीत था और संगीत नदीम श्रवण का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: पनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज दोपहर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद हस्ताक्षरित किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और ताओ नान मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है।
1: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवित रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मीसोन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
0: संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शिरकत करेंगे। दो दिन के सम्मेलन का विषय नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता रखा गया है। ये आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आधुनिक युद्ध प्रणालियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सेना की क्षमताओं को बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को गति देना है। प्रदेश के जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक ने कहा है कि जनगणना में पहली बार नागरिकों को स्वगणना का विकल्प देकर सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका दिया गया है। ये प्रक्रिया बहुत सुगम और सहज है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री मलिक ने कहा कि डिजिटल माध्यम से स्वगणना करने पर डेटा संग्रहण में त्रुटियों की संभावना कम होती है और समय की भी बचत होती है। इसके लिए नागरिकों को निर्धारित पोर्टल पर लॉगिन कर मकान और परिसंपत्तियों से जुड़ी आवश्यक जानकारी भरनी होगी। उन्होंने बताया कि स्वगणना का काम 5 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकता है।
2: स्वगणना कि हर नागरिक को पहली बार एक अवसर दिया गया है कि वो अपनी गणना डिजिटल मोड में पोर्टल में जाके वो कर सकता है, खुद ही कर सकता है। उसके बावजूद भी प्रगणक उनके घर आएंगे और वो जो ऐसी आईडी जिसको स्वगणना आईडी अपन बोलते हैं वो उनको उपलब्ध कराएंगे। एक बार वो प्रगणक को उपलब्ध कराते ही प्रगणक उनके सारे डेटा जो भी उन्होंने क्वेश्चन के आंसर्स भरा है उसको उनके सामने वो सत्यापित करेगा और उसके बाद उसको वो अपलोड करेगा।
0: मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दूसरी बार के लिए 15 मई से शुरू होगी। ये परीक्षाएं 21 मई तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि परीक्षा के सफल और सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षा के लिए राज्य में 1300 स्कूलों के करीब 21,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इन्हें प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र किन्हीं 3 विषयों में दूसरी बार की परीक्षा में शामिल होकर अंक सुधार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार ने शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। श्री वेम्पति कार्य संभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। उन्होंने प्रसून जोशी का स्थान लिया है जिन्हें प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री वेम्पति को मीडिया प्रसारण और सार्वजनिक संचार के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली में श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। नई श्रम संहिता के तहत शुरू की जा रही इस योजना का उद्देश्य 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्य कार्यक्रम बसई दारापुर स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही देश के 11 अन्य ESIC अस्पतालों में भी

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सकीय उत्पादों के क्षेत्र में कई समझौते हुए। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कल से जयपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सम्मेलन में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का कल शुभारंभ करेंगे और एचपीवी टीकाकरण के मामले में राजस्थान देश भर में पांचवें पायदान पर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिज, चिकित्सा उत्पाद, सार्वजनिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापन

0: इस पहल की शुरुआत होगी। योजना के तहत खतरनाक या जोखिम भरे कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए उम्र की सीमा के बिना स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रखी गई है। इसके माध्यम से कामगारों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का व्यवस्थित रखरखाव किया जाएगा, जिससे बीमारियों का समय पर निदान और निवारक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी। देश भर में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए चलाए जा रहे HPV टीकाकरण के मामले में राजस्थान देश भर में पांचवें पायदान पर पहुंच गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि कुछ दिन पहले इस टीकाकरण की रफ्तार धीमी थी और प्रदेश टीकाकरण में 11वें नंबर पर था। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से इस बारे में लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इससे अभियान में तेजी आई है और प्रदेश में अब तक करीब 81,000 बालिकाओं को HPV का टीका लगाया जा चुका है। श्री सिंह ने बताया कि राज्य में रोजाना टीकाकरण के लगभग 1,000 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।
1: ये एक ऐसा वैक्सीन है जो कि कैंसर की रोकथाम में पूर्णतया कारगर है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। शुरू के अंदर राजस्थान में वैक्सीनेशन की गति काफी कम रही थी क्योंकि एक नया वैक्सीन था, पब्लिक को इसके बारे में उतना पता नहीं था, कुछ भ्रांतियां भी थी और पब्लिक के अंदर कुछ डर भी था। धीरे धीरे हमने उनको समझाया, उनसे संपर्क किया और स्कूलों में जाकर के बच्चों को समझाया, टीचर्स का सहयोग लिया, धर्म गुरुओं का सहयोग लिया और जो लोकल इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका सहयोग लिया। अब राजस्थान के अंदर इस वैक्सीन को लगवाने के लिए अभिभावक और बच्चियां खुद ही आगे आ रहे हैं और अब तक हमने 80,960 के करीब डोजेज बच्चियों को लगा चुके हैं।
0: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर द्वारा अपने विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमोद येवले ने बताया कि दुर्लभ बीमारियों, स्वास्थ्य नीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर ये राशि दी जाएगी। श्री येवले ने बताया कि RUHS ऐसा पहला मेडिकल विश्वविद्यालय होगा जो इस तरह के कार्यों के लिए सम्मान के साथ साथ स्कोरिंग अंक भी देगा।
2: हमारे यूनिवर्सिटी के अंडर 597 एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस है और उसके अंडर जो हमारे फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में अप्रूव टीचर से उसके उनसे हम प्रपोजल मंगवाएंगे। प्रपोजल आने के बाद में उनका हम स्क्रीनिंग और इवैल्यूएशन करेंगे और उसके हिसाब से उनको हम रिसर्च फंडिंग देंगे। रिसर्च पीरियड जो रहेगा नियर अबाउट 2 to 3 years रहेगा और उसमें एक यूनिवर्सिटी की मॉनिटरिंग कमेटी भी रहेगी और जैसे जैसे उनका 6 monthly प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है उस हिसाब से हम अमाउंट रिलीज करेंगे।
0: और अब मौसम। प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई आंधी बारिश की गतिविधियों से गर्मी से मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात के तापमान में 2 से 3 degrees Celsius तक की गिरावट आई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2-3 दिनों तक भरतपुर संभाग और उत्तरी राजस्थान के जिलों में दोपहर बाद कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जोधपुर संभाग में कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चल सकती हैं।
3: पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 9 से 11 मई के दौरान एक नया हीट वेव का दौर भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान में हालांकि फिलहाल हीट वेव की संभावना कम है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 9 से 11 मई के दौरान एक हीट वेव का स्पेल देखा जा सकता है।
0: कोटा रेल मंडल में वंदे भारत ट्रेन का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर किया गया स्पीड ट्रायल सफल रहा है। रेलवे के अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन यानी RDSO की देखरेख में ये परीक्षण कोटा चौहमेला रेलखंड पर आयोजित किया गया। ट्रायल के दौरान ट्रेन की ब्रेक प्रणाली, इंजन की क्षमता और सुरक्षा मानकों का गहन मूल्यांकन किया गया। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा निर्मित इस अत्याधुनिक ट्रेन ने सफलतापूर्वक अपनी अधिकतम गति हासिल की। इससे पहले इसका 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर परीक्षण किया गया था। ये स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 से कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। श्री गहलोत ने आज चूरू जिले के बुधवाली में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों से संवाद करते हुए ये बात कही। उन्होंने

अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से पहुंचाया जाए। इस अवसर पर उन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर और लैपटॉप प्रदान किए। इसके बाद उन्होंने झुंझुनू के मंडावा पहुंचकर नांद ग्राम पंचायत में ग्राम रथ अभियान कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सकीय उत्पादों के क्षेत्र में कई समझौते हुए। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कल से जयपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सम्मेलन में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे और एचपीवी टीकाकरण के मामले में राजस्थान देश भर में पांचवें पायदान पर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख साकेत गोयल ने तैयार किया है। सिरोही जिले में पिछले दिनों विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियां संपन्न हुई। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जनापुर क्षेत्र में प्रस्तावित चंदन वन की साइट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत प्रदेश में चंदन वन विकसित किए जा रहे हैं। सिरोही जिले को भी इस महत्वपूर्ण योजना में शामिल किया गया है। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को चंदन वन के संरक्षण और विकास को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं चंदन का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और वन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों अवैध खनन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और जिला पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में पुलिस प्रशासन और खान विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी और मैसनरी स्टोन के परिवहन तथा भंडारण पर रोक लगाई। इस दौरान कई FIR दर्ज की गई और कई वाहन जब्त किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों साप्ताहिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित हुई। इनमें संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों, बजट घोषणाओं और विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की परिवेदनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और विभागीय योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू किया जाए। जिले में आशान्वित जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा और समाज कल्याण विभागों की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने ड्रॉप आउट बच्चों, पलायन और शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए नवाचार आधारित योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए मई महीने में रात्रि चौपालों के आयोजन की घोषणा की गई है। इन चौपालों में प्रशासन सीधे ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेगा और मौके पर समाधान का प्रयास करेगा। साथ ही अटल जनसेवा शिविरों के माध्यम से भी आम जन की परिवेदनाओं का निस्तारण किया जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने और सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। आबू रोड, पिंडवाड़ा और शिवगंज क्षेत्रों के विभिन्न सड़क मार्गों के सुधार कार्यों पर विशेष चर्चा हुई। प्रशासन ने राहवीर योजना और PM राहत योजना के अधिकतम प्रचार प्रसार पर जोर दिया। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की भी पिछले माह बैठक हुई। इसमें पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। नगर परिषद को श्वानों की जन्मदर नियंत्रण और मृत पशुओं के निस्तारण के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पशु क्रूरता के मामलों में सख्त कार्रवाई करने और जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। सिरोही जिले में भी जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 मई तक लोग संबंधित पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। जनगणना में दी गई सभी जानकारी गोपनीय और सुरक्षित रखी जाएगी। इसके बाद 16 मई से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इससे पहले पिंडवाड़ा में जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला कलेक्टर ने सुपरवाइजरों और प्रगणकों को जनगणना कार्य की महत्ता बताते हुए कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं का आधार होती है और इसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

0: जिले में पिछले दिनों कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हुए। इनमें जिलेवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान मंदिरों में सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या और प्रसादी कार्यक्रम रखे गए। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की और मंगल कामनाएं मांगी। अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में शुभ कार्यों, विवाह समारोह और धार्मिक आयोजनों की विशेष रौनक देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक लोक संस्कृति और सामाजिक मेल मिलाप का वातावरण बना रहा। वहीं अबूझ सावा होने के कारण संभावित बाल विवाहों को देखते हुए प्रशासन सतर्क रहा। इसके साथ ही सिरोही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत और वियतनाम बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिज और इलाज रा उत्पादों जुड़िया विनियमन रा हलका मायके करार करीचिया। फौज रा तीनों अंगा रा कमांडरा रा सम्मेलन रो दूजो संस्करण काल जयपुर मायसर उफैला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही इनमाय शिरकत करण सारू जयपुर पधारेला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया काल देश भर रा मजूरा सारू सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच पहल री शुरुआत करेला। और HPV टीका लगावन रे मामला माय राजस्थान देश माय पांचवी ठौड़ माथे पुग्यो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। भारत और वियतनाम बीच आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, चुकारारा डिजिटल तरीका और संस्कृति और सैर सपाटारा हलका मायके करार माथे सही करीची। इनु पहले आज नई दिल्ली माय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम रा राष्ट्रपति तो लाम बीच एक दूजारा भला और दुनियारी दूजी हलचल रे बारा माय बातचीत हुई। इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो के भेली विरासत ने जीवित रखन सारू भारत वियतनाम री जूनी चंपा सभ्यता रा माई सोन और ताओ नान मिंद्रा ने बेहतर बनावन रा काम करा रियो है।
2: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
1: फौज रा तीनों अंगा रा आला अहलकारा रो दो दिन रो सम्मेलन काल जयपुर माय सरू फैला। इनमाय शिरकत करण सारू रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ही जयपुर पधारेला। इस सम्मेलन रो मुद्दो नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता राखी चियो है। वो आयोजन ऑपरेशन सिंदूर री पहली वर्षगांठ रे मौके राख्यो चाहियो है। सम्मेलन में भारत रा सशस्त्र बलानी रणनीतिक प्राथमिकतावां, ऑपरेशनल तैयारियां और मिलर युद्ध लड़बार बारा में चर्चा करी जावेला। राज्य रा जनगणना निदेशक विष्णु चरण मल्लिक कहो है कि जनगणना में जनता री सक्रिय भागीदारी तय करण सारू पहली दफा स्वय गणना रो सुबितो मुहैया कराई चियो है। आकाशवाणी समाचार जयपुर सागे आज खास बातचीत में श्री मल्लिक कहो के डिजिटल तरीकों स्व गणना करण पर जानकारियां भेड़ी करण रकाम माए गलतियां री संभावना कम है वन सागे टेम री बचत फैला। इसारो आप निर्धारित पोर्टल माथा जार मकान नु जुड़ी जानकारियां भर सको हो। जनगणना निदेशक बतायो के स्व गणना रो काम 5 मिनट कम बगत माए पूरो करियो जा सके है।
3: स्वगणना कि हर नागरिक को पहली बार एक अवसर दिया गया है कि वो अपनी गणना डिजिटल मोड में पोर्टल में जाके वो कर सकता है, खुद ही कर सकता है। उसके बावजूद भी प्रगणक उनके घर आएंगे और वो जो SC ID जिसको स्वगणना ID अपन बोलते हैं वो उनको उपलब्ध कराएंगे। एक बार वो प्रगणक को उपलब्ध कराते ही प्रगणक उनके सारे डेटा जो भी उन्होंने क्वेश्चन के आंसर भरा है उसको उनके सामने वो सत्यापित करेगा और उसके बाद उसको वो अपलोड करेगा।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का न्यू मौजूदा शिक्षा सत्र में दूजी दफा ली जा रही मैट्रिक परीक्षा 15 मई शुरू फैला। बोर्ड रा परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम

0: भारद्वाज बतायो कि 21 मई ताई चालन वाली परीक्षा सारू राज्य री 1300 स्कूलों रा करीब 21,000 विद्यार्थी नाम मंडाया है। ध्यान जोग है कि बोर्ड री परीक्षा माए पास हुआ विद्यार्थी किन्हीं तीन विषया माए दूजी दफा परीक्षा देर नंबर माए सुधार कर सके है। परीक्षा सारू विद्यार्थियों ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया चिया है। श्री शशि शेखर वेम्पति ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC रा नुआ अध्यक्ष बनाई चिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन बाबत अधिसूचना जारी करती नी है। श्री वेम्पति कामकाज संभाल बारी तारीख हूँ 3 साल ताई ई ओहदा माथा सेवा देवेला। वे श्री प्रसून जोशी री ठोड़ लेवेला जन प्रसार भारती बोर्ड रा अध्यक्ष बनाई चिया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा श्रमेव जयते नजरियारे मुजब देश भर रा मजूरा ने हर साल मुफ्त स्वास्थ्य जांच रो सुबितो मुहैया करायो चावेला। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया काल नई दिल्ली में इनरी शुरुआत करेला। नुआ श्रम कानून रा तेज चलाई जा रही इन योजनाओं 40 साल और 32 उम्र रा मजूरा ने बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा सकेला। वो कार्यक्रम नई दिल्ली रा बसई दारापुर ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सागे देश रा 11 और ESIC अस्पताल में चलायो चावेला। योजना रा तेज खतरनाक या जोखिम रा काम माए लाग्योड़ा मजूरा सारू उम्र री सीमा बगैर स्वास्थ्य जांच कराई जा सकेला। टाबरिया ने सर्वाइकल कैंसर री बीमारियों बचावन सारू HPV टीका लगावन रे मामला माए राज्य देश माए 5वीं ठौड़ माथे आग्यो है। हाल ताई राजस्थान ई मामला माए 11वां नंबर माथे हो। टीका लगावन रा परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह आकाशवाणी ने आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि राज्य माए हाल ताई करीब 81,000 टाबरिया रे टीका लगा दिया चिया है। डॉक्टर रघुराज सिंह बतायो कि राज्य में टीका लगावन सारू रोजीना करीब 1,000 सत्र रखा जा रहा है।
1: ये एक ऐसा वैक्सीन है जो कि कैंसर की रोकथाम में पूर्णतया कारगर है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। शुरू के अंदर राजस्थान में वैक्सीनेशन की गति काफी कम रही थी क्योंकि एक नया वैक्सीन था, पब्लिक को इसके बारे में उतना पता नहीं था, कुछ भ्रांतियां भी थी और पब्लिक के अंदर कुछ डर भी था। धीरे धीरे हमने उनको समझाया, उनसे संपर्क किया और स्कूलों में जाकर के बच्चों को समझाया, टीचर्स का सहयोग लिया, धर्म गुरुओं का सहयोग लिया और जो लोकल इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका सहयोग लिया। अब राजस्थान के अंदर इस वैक्सीन को लगवाने के लिए अभिभावक और बच्चियां खुद ही आगे आ रहे हैं और अब तक हमने 80,960 के करीब डोजेज बच्चियों को लगा चुके हैं।
0: इबीच HPV टीका लगावन रा काम ने और तेज करण सारू पाली माए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंडिया रोड कानियो स्कूला माए 14-15 साल उम्र ताई नी टाबरिया ने HPV टीका रे बारा माए जानकारी दीरी जी। कोटा रेल मंडल माए वंदे भारत रेलगाड़ी ने परीक्षण रा तौरू कोटा चौमहला बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तारू कामयाबी सागर चलाई ची है। इस दौरान गाड़ी रा ब्रेक, इंजन रा बूता और हिफाजत जुड़िया मानका माथे परख करी ची। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कान्यू बनाई ची आ गाड़ी 32-32 स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार दौड़ी। इनु पहली इनने 160 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार चलाई ची ही। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज भीलवाड़ा जिला रा सहाड़ा विधानसभा हलका माए राखी जिया ग्राम रथ अभियान कार्यक्रम माए शामिल थी। वे विकास रा कामारी शुरुआत की नी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। दिया कुमारी ब्यावर जिला रा जालिया माए राखी जिया ग्राम रथ अभियान माए शामिल थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू जिला री नांद ग्राम पंचायत में राखी जिया ग्राम रथ अभियान कार्यक्रम में शामिल भैर गांव वालों बातचीत कीनी। वे चूरू जिला रा बुधवाली में राखी जी सांध्य चौपाल माई गांव वाला ने बतलाया। इस मौके मंत्री नौजवाना और किसानाओं खुदरे पान उबाभेवन और ग्राम रथ रे जरिए विकसित राजस्थान मनावन सारू राय देवन री अरज कीनी। सवाई माधोपुर जिला री मुई और शामोली ग्राम पंचायत माई आज ग्राम रथा रे जरिए जनता रा भलारी सरकारी योजनावा और ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम रे बारा माई जानकारी दी री जी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर का न्यू आरा विद्यार्थियां शिक्षक।

0: अर्शोध करण वाला ने माली मदद दी चावेला। विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर प्रमोद येवले बतायो के घना कम लोगा ने भेवन वाली बीमारियां स्वास्थ्य नीति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिकित्सा शिक्षा रा हलका माय बेहतर काम करण वाला ने आ मदद दी चावेला। श्री येवले बतायो के RUHS एड़ी पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी वेला जो एड़ा कामा सारू मान सागे स्कोरिंग अंक ही देवेला।
1: हमारे यूनिवर्सिटी के अंडर 597 एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस है और उसके अंडर जो हमारे फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में अप्रूव्ड टीचर से उसके उनसे हम प्रपोजल मंगवाएंगे। प्रपोजल आने के बाद में उनका हम स्क्रीनिंग और इवैल्यूएशन करेंगे और उसके हिसाब से उनको हम रिसर्च फंडिंग देंगे। रिसर्च पीरियड जो रहेगा नियर अबाउट 2 to 3 years रहेगा और उसमें एक यूनिवर्सिटी की मॉनिटरिंग कमेटी भी रहेगी और जैसे जैसे उनका 6 monthly प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है तो हिसाब से हम अमाउंट रिलीज करेंगे।
0: अरबे मौसम प्रदेश रा लंकाऊ और लंकाऊ उगनी हल्का माए लाडला 24 घंटा माए आंधी बारिश रे कारण गर्मी में थोड़ी साता मिली। मौसम विभाग रे मुजब दिन और रात री बगत पारो 2-3 degrees सेल्सियस ताई उतरियो है। इन बीचे आज सिरोही जिला माए आबू रोड और स्वरूपगंज समेत कई ठोड़ा मिर्खा रा समाचार है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के आवता 2-3 दिन ताई भरतपुर संभाग और रजरा उत्तराध हल्का माए दोपहर पाछे कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और बादलों ने गाज सागे बारिश फेवन रा आसार है। जदक जोधपुर संभाग माए कठे कठे आंधी चालन री संभावना है।
2: पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 9 से 11 मई के दौरान एक नया हीटवेव का दौर भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान में हालांकि फिलहाल हीटवेव की संभावना कम है लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 9 से 11 मई के दौरान एक हीटवेव का स्पेल देखा जा सकता है।
0: पाली माए महिलाओं की हिफाजत रा काम ने और मजबूत बनावन सारू ऑल वुमेन PCR वैन चलाई ची है। SP मोनिका सेन आज आ खास गाड़िया ने हरी झंडी बता रवाना कीनी। आ गाड़िया माए तैनात महिला पुलिसकर्मी स्कूल कॉलेज पार्क और जनता रे आवन जावन री दूजी ठोणा लगातार निगरानी रखेला। हेल्पलाइन नंबर 1090 या 112 माथा शिकायत मिलता ही आ टीम तुरंत मौके पर जरूरी कार्रवाई करेला। हेल्पलाइन नंबर ओजु सुन ले राव सा 1090 या 112। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ले राव। भारत और वियतनाम बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिजा और इलाज रा उत्पादों जुड़िया विनियमन रा हल्का माए के करार करीचिया। फौज रा तीनों अंगारा कमांडरा रा सम्मेलन रो दूजो संस्करण काल जयपुर माए सरू फैला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही इन माए शिरकत करण सरू जयपुर पधारेला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया काल देश भर रा मजूरा सरू सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जाँच पहल री शुरुआत करेला। और HPV टीका लगावन रा मामला माए राजस्थान देश माए 5वीं ठौड़ माथे पुग्यो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: आकाशवाणी अलवर का ये सदीस का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को जगदीश की ओर से गणी गणी राम राम साहब। तो देखो किसान बहन भाइयों, आज हम ग्राम भारती कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा करेंगे गर्मियों में पशुओं की देखभाल कैसे करें। इसके अलावा आपको सुनाएंगे एक भेंट वार्ता और देंगे जानकारी दुधारू पशुओं में लोग के प्रकोप से कैसे बचाएँ और बाजार भाव और

मौसम की जानकारी, इसके अलावा करवाएंगे आपका मनोरंजन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गर्मियों में पशुओं की देखभाल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी पशुपालक भाई जानते हैं कि गर्मी के मौसम में पशुओं को अपने शरीर का जो तापमान है सामान्य बनाए रखने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हीट स्ट्रेस के कारण जब पशुओं के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फारेनहाइट से 102.8 फारेनहाइट तक बढ़ जाता है तो इसमें पशुओं को बहुत परेशानी आती है। हीट स्ट्रेस के दौरान गायों में सामान्यतः तापक्रम बनाए रखने के लिए खान पान में कमी, दूध उत्पादन में 10 से 25% की गिरावट, दूध में वसा की प्रतिशत में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी और प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। पशुओं को स्वस्थ रखने और उनके उत्पादन के स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए पशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करते हैं गर्मियों में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले है पशुओं को दिन में समय सीधी धूप से बचाएं और उन्हें बाहर चराने ना ले जाएं। इसके अलावा हमेशा पशुओं को बांधने के लिए छायादार या हवादार स्थान का ही चुनाव करें और पशुओं के पास पीने के पानी का हमेशा रखें और पशुओं को हरा चारा खिलाएं। यदि पशुओं में असामान्य लक्षण नजर आते हैं तो नज़दीक पशु चिकित्सक से संपर्क करें और यदि संभव हो तो डेयरी शेड में दिन के समय कूलर, पंखे आदि का भी इस्तेमाल करें। पशुओं को संतुलित आहार दें और अधिक गर्मी की स्थिति में पशुओं के शरीर पर पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मी में पशुओं के लू के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में, तो सबसे पहले हम पशुओं के लू के लक्षण के बारे में जानेंगे कि देखिए पशुओं में तेज बुखार आना, हांफना या मुंह से जीभ बाहर निकलना, मुंह के आसपास झाग का जाना, आँख व नाक का लाल हो जाना, इसके अलावा नाक से खून का बहना और पतले दस्त होना और श्वास कमजोर पड़ जाना, पशु की हृदय धड़कन तेज होना, ये प्रमुख लू के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस लक्षण के दिखाई देने के बाद हमें किस प्रकार से पशुओं को उपचार करना चाहिए, तो देखिए लू से पशुओं को बचाने के लिए कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले पशुओं का जो आवास इस प्रकार का बनाएं कि सभी जानवरों के लिए उचित स्थान हो ताकि हवा को आने जाने के लिए जगह मिले और ध्यान रखें कि शेड खुला हवादार होना चाहिए। इसके अलावा पशुओं को रोजाना 1 से 2 बार ठंडे पानी से नहलाने चाहिए और पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पशु आवास में पंखे, कूलर और फव्वारा सिस्टम भी लगा सकते हैं। दिन के समय पशुओं को अंदर बांध करके रखें और लू से चपेट में आने से पर पशु को तुरंत चिकित्सक से दिखाएं। इसके अलावा पशुओं को गर्मी में स्केलेटल एनर्जी का भी देनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं लू से बचाव के बारे में, तो देखिए गर्मी, धूप व लू से पशुओं को बचाने के लिए पशु आवास मुख्य द्वार पर खस या जूट के बोरे का पर्दा लगाएं। शयन के आसपास छायादार वृक्षों की मौजूदगी में पशुशाला के तापमान को कम करने में सहायक होती है। पशुओं को छायादार स्थान पर बांधना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में साफ सुथरा ताज़ा पीने का पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। गर्मी में कम से कम 3 से 4 बार पशुओं को ताज़ा ठंडा पानी पिलाना चाहिए। भैंसों को गर्मी में 3 से 4 बार और गायों को कम से कम 2 बार नहलाना भी चाहिए। इसके अलावा पशुओं को नियमित रूप से खुरेरा करना चाहिए। खाने पीने की नांद को नियमित रूप से चूना कलिस करते रहना चाहिए। इसके अलावा रसोई की झूठन और बासी खाना पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाले जैसे खाद्य पदार्थ जैसे आटा, रोटी, चावल पशुओं को नहीं खिलाने चाहिए। पशुओं को संतुलित आहार दाना में चारे का अनुपात 40 और 60 का रखना चाहिए। पशुओं को इस मौसम में गलघोंटू, खुरपका, मुखपका, लंगड़ी बुखार जैसी बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण जरूर करना चाहिए जिससे वे आगे आने वाली बरसात में इन बीमारियों से बच सकें। इन पशुओं को नियमित रूप से इलेक्ट्रोल एनर्जी अवश्य भी देनी चाहिए। इसके अलावा गर्मियों में मौसम में पैदा की गई जो ज्वार की जो जहरीले पदार्थ हो सकता है वो पशुओं के लिए हानिकारक होता है, अतः इस मौसम में यदि बारिश नहीं हुई है तो ज्वार खिलाने से पहले खेत में दो से

तीन बार पानी दें, उसके बाद ही ज्वार खिलानी चाहिए। तो इस प्रकार किसान बहन भाई पशुओं का ध्यान रखेंगे तो पशु अधिक उत्पादन देंगे और गर्मी में अच्छे ढंग से आपको लाभ देंगे। तो ये तो थी आपको गर्मियों में पशुओं की देखभाल, और अब इसके बाद आपको सुनवा देते हैं एक जरूरी संदेश।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हाँ तो देखो किसान भाई, ये तो सुना आपने जरूरी संदेश, और हम आपको सुनवा देते एक भेंट वार्ता। गर्मियों में पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, डॉक्टर राजू मित्तल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी अलवर से। तो ये भेंट वार्ता सुनिए।
3: किसान भाइयों, राम राम। देखो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव मित्तल, आप वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, अलवर में कार्यरत हैं। आज इनसे जानकारी लेते हैं गर्मी के मौसम में पशुओं को कैसे स्वस्थ रखें। अपने जो किसान भाई हैं वो खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं, और बदलते मौसम, जैसे अब गर्मी का मौसम है इसमें लू चलेंगी और तेज तापक्रम रहेगा, ऐसे में पशुओं का दुग्ध उत्पादन काफी प्रभावित होता है। तो ऐसे कैसे पशु को स्वस्थ रखें और कैसे उसके उत्पादन को बनाए रखें, इसके लिए डॉक्टर साहब से जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी।
4: नमस्ते जी। नमस्ते।
3: देखो डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपन बात करें, जैसे गर्मी का मौसम है तो ऐसे में आवास प्रबंध कैसा रखें अपने किसान भाई, जो पशु को स्वस्थ भी रहे और अपना पशु सुरक्षित उत्पादन में पूरी तरह प्रभावित ना हो।
4: पशुपालक भाई, एक तो ये जान लें कि जो गर्मी का मौसम है, हल्की गर्मी है, तो उसमें तो आप केवल जो है हल्की चादर जो है चारों तरफ से अपने बाड़े में लपेट करके, और जो सीधे जो लू की स्थिति बनती है या सीधे गर्म हवा आती है उससे बचाव करें। अगर तेज गर्मी पड़ने लगे तो फिर आप उसमें जो आपने बनाई है चादर वगैरह जो लपेटा है उस पर आप पानी की छिड़काव देकर के भी उसको जो बाड़ा है उसको आप ठंडा बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको पशुओं को जो है पानी का जो सबसे बड़ा जो है ना वो रोल है। अगर पानी की मात्रा गर्मी में क्या है कि जो ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल कम होती है, और उसकी वजह से पशु के शरीर में जो पानी की मात्रा है वो बहुत कम होने लगती है। तो आपको पशुओं में विशेष रूप से 5 से 6 बार अच्छा जो मटकी, एक जो कोरी मटकी आप 1-2 मटकी बोलें, और वो जो ठंडा पानी और ताज़ा पानी आप पिलाओगे तो उससे पशुओं का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। तो वो जरूर ध्यान रखना है, गर्मी से बचाना है आपको, सीधे गर्मी जो हवा, गर्म हवा है उससे बचाना है, और इसके अलावा ताज़ा पानी 5 से 6 बार अवश्य पिलाना है।
3: अगर पशुओं के पास कच्चा बाड़ा हो तो उसमें क्या पानी का छिड़काव भी नीचे कर सकते हैं पशुपालक भाई?
4: हाँ बिल्कुल, कच्चा बाड़ा है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, उसमें आप आराम से उसमें जो है बीच बीच में आप जब भी टाइम मिले उस हिसाब से आप 4-5 बार सुबह और दिन में जो है विशेष रूप से जो है उसमें छिड़काव करें ताकि वो ठंडक बनी रहे।
3: जी जी डॉक्टर साहब, ये तो देखो आपने बताया आवास के बारे में, आवास के अलावा आहार प्रबंधन का इसमें विशेष महत्व होता है, तो आहार प्रबंधन कैसा उसमें रखा जाए, कितना सूखा चारा दिया जाए, कितना हरा चारा, और ये मिनरल मिक्सर वगैरह कितनी मात्रा में दी जाए जिससे अपना पशु दूध उत्पादन भी अच्छा बना रहे और स्वस्थ भी बना रहे।
4: पशुपालकों में ये भ्रांति होती है कि गर्मी की ऋतु आने पर जो है हमारे पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पशु को बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे प्रबंधन आप रखेंगे, ताज़ा पानी पिलाएंगे, गर्म हवा से बचाएंगे या उसको संतुलित पशु आहार देंगे, तो निश्चित रूप से मान के चलो कि उसमें गर्मी का कहीं कोई प्रकोप नहीं होगा और पशु दुग्ध जो उत्पादन है उसका बढ़िया बना रहेगा। मैं पशुपालकों को संतुलित पशु आहार के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो अच्छे जागरूक पशुपालक हैं वो जो संतुलित पशु आहार है वो घर पर ही तैयार करते हैं, और इसके तैयार करने के लिए एक अपन एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि हम 100 किलो अगर संतुलित पशु आहार बना रहे हैं तो उसमें 35 किलो यानी 35वां जो हिस्सा है वो मोटे अनाज की होनी चाहिए। जो भी मोटा अनाज है, मक्का, जो गेहूँ, बाजरा, ग्वार, जई, जो भी पशुपालक के पास उपलब्ध है वो मोटे अनाज को जो है थोड़ा सा फरेरा कर लें, हल्का कर लें, क्योंकि साबुत जो अनाज होता है वो हम पशु को नहीं देते। इसके अलावा 35वां हिस्सा यानी कि 35 किलो मात्रा ही आपको खल की जो है उसमें मिलानी है। खल जो भी पशुपालक भाई के पास उपलब्ध है, मूंगफली की हो, सरसों की, तिल की, बिनोला की, सोया खल, जो भी उपलब्ध है वो उसमें मिलाएं। इस कार से 70 किलो 100 किलो में इस कार से अनाज और खल हमें मिलानी है, और बाकी का हमारा

0: जो 30% हिस्सा है 30 किलो का, उसमें 27 किलो का हमें चूरी या चापड़ मिलानी है। चूरी चापड़ जो भी उपलब्ध है, गेहूं, जो चना, मूंग, उड़द, कोई भी दाल की चूरी या चावल की चूरी अगर पशुपालक के पास उपलब्ध है तो वो 27 किलो उस 100 किलो में जो संतुलित पशु आहार है उसमें हमें मिलानी है। बाकी बचे हुए 3 किलो में हमें 2 किलो मिनरल मिक्सचर अच्छी कंपनी का कोई भी आप ले सकते हैं, पशुपालक भाई किसी भी अच्छी दुकान से खरीद सकते हैं, या सरकारी जो निजी पशु चिकित्सा सरकारी अस्पताल है वहाँ से भी ले सकते हैं। और इसके अलावा 1 किलो साधारण नमक, जो सफ़ेद नमक है जो हम खाते हैं खुद, उसी को मिलाना है, न कि मोटा नमक आपको बाजार में सस्ते दाम पे खरीदना है। अच्छा साधारण नमक 1 किलो मिलाना है। 2 किलो कोशिश करें कि मार्केट का एक अच्छी कंपनी का आप मिला पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस प्रकार से ये 100 किलो संतुलित पशु आहार मिल जाता है, उसमें आवश्यकता अनुसार अपना जो है मिक्स करके रख लें और इसको जो है आवश्यकता अनुसार जो
1: भी दिन में जितनी भी डाइट उनको पशु को देनी है उसके उत्पादन के हिसाब से
0: बाट या दलिया बना करके उसको खिलाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, के गर्मी के मौसम में ऐसी रहती है भाई बाजरा का जो ये दलिया होता है ये कम मात्रा में दें तो इसकी क्या कुछ है क्या?
0: ऐसा नहीं है, आप पशुपालक भाई चाहें तो बाजरे का दलिया भी उस समय दे सकते हैं, उसकी मात्रा कम रख सकते हैं, गेहूं का अपन ज्यादा रख सकते हैं। तो जो भी उपलब्ध है पशुपालक देंगे तो वो उसमें नुकसान गर्मी में वो भी नहीं करेगा, अत्यधिक मात्रा में तो जहाँ गेहूं हो या बाजरा हो वो नुकसान करेगा।
1: जी जी डॉक्टर साहब, और इस समय एक और पशुओं में चारे की बहुत मोटी समस्या है, जैसे नया चारा अभी गेहूं का जो भूसा है एकदम पशुपालक भाई उसको खिला देने से पशु बीमार हो रहे हैं, तो इसके बचाव के लिए क्या करें और क्या सावधानी अपने पशुपालक भाई रखें?
0: पशुपालक भाइयों को ये चाहिए कि नया चारा हमें खिलाना तो है, लेकिन हमें ये नहीं कि पुराना चारे को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दें और नए चारे पर सीधे पशु को ले आए। पशु को सीधा ही नया चारा जब हम देंगे तो उसमें सबसे प्रमुख समस्या अपच की आ जाती है, उसमें डाइजेशन जो है वो पुअर हो जाता है, और वो डाइजेशन की अगर अच्छा नहीं होगा तो पशु जो है पतला गोबर करने लगेगा, और पतला गोबर करते ही पशु कम जब चारा चरेगा तो निश्चित रूप से दुग्ध उत्पादन बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आपको जब भी नया चारे का इस्तेमाल करना है तो शुरू में थोड़ा सा पुराना चारे को बचा के रखें, और पुराना चारा जो है 3/4 हिस्सा लें और 1/4 हिस्सा अपन नए चारे की मिलाएं। एक सप्ताह तक चलने के बाद उसके बाद इसकी मात्रा नए चारे की आप धीरे धीरे बढ़ाएं, उसको आधा जो है नया चारा और आधा पुराना जो है सूखा तूड़ा जो है हम लेके आएं और उसमें मिला करके बनाएं, और ऐसे करते हुए हम उसे 1 महीने के अंतराल में नए चारे पर पूरी तरीके से लाएंगे तो पशु उसको अच्छी ढंग से पाचन क्रिया भी कर पाएगा और दुग्ध उत्पादन भी बना,
1: हाँ स्वस्थ भी बना रहेगा। साथ में डॉक्टर साहब, एक जो आता है कृमिनाशक जो अपने पशुओं को दी जाती है, इनके क्या फायदे हैं और कब कब इनको पशुओं को ये कृमिनाशक दवा देनी चाहिए?
0: देखिए, कृमिनाशक का निश्चित रूप से एक फंडा है कि आपको हर 3 महीने पे जो बड़े पशु हैं गाय भैंस उसमें 3 महीने तक ये गोली काम करती है, तो आप गोली के रूप में या लिक्विड के रूप में कोई भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय से आजकल फ्री सब कुछ मिलता है तो उसमें आप ले करके उसको दे दें एक बार, और सुबह भूखे पेट आपको देनी है। और छोटा पशु है तो छोटे पशु में अगर बिल्कुल छोटा है 2-3 महीने का है तो उसमें 1 महीने के अंतराल में उसको दवाई देनी है। तो ये हमारा फंडा, चाहे गर्मी हो या सर्दी, उसमें डीवर्मिंग जो है अगर पेट के कीड़ों की दवाई पशुपालक भाई ध्यान रखेंगे तो उससे न तो पाचन में दिक्कत आएगी और जो नया चारा है वो भी अच्छे ढंग से पचेगा, जब पुराना चारा है वो भी पाचन में दिक्कत नहीं आएगी, और पाचन जब क्रिया सही रहेगी तो दुग्ध उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं।
1: जी डॉक्टर साहब, और अब जैसे देखो आप गर्मी का मौसम है और आगे लू भी चलने वाली है, तो ऐसे में अपने पशु में जो लू लग जाए या बुखार हो जाए तो क्या पशु में क्या लक्षण दिखते हैं और उसके उपचार के लिए पशुपालक भाई क्या करें?
0: देखिए, गर्मी में अगर पशु को लू लग रही है और पशु परेशान हो रहा है तो निश्चित रूप से वो उसका आप जब भी हाथ लगाओगे तो उसमें देखोगे कि पूंछ का हिस्सा या कान आप पकड़ के देखोगे तो वो गर्म दिखेगा और उससे और पशु उन्मना सा और बेचैन रहेगा, तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि पशु गर्मी की या लू की चपेट में आ गया है। तो ऐसे मामले में सबसे पहले तो आप नॉर्मल मटके का पानी लेके उसमें सूती कपड़ा भिगो के और अच्छी ढंग से निचोड़ के उसको माथा और गर्दन तक के हिस्से को आप बार बार पोंछेंगे, जैसे बच्चे का, हम छोटे बच्चे का बुखार जब हम उतारते हैं तो पट्टी बार बार बदलते हैं, तो उसी हिसाब से ऐसे पोंछेंगे और फिर दोबारा 10 मिनट बाद दोबारा पोंछे को उसको पानी में डुबो के फिर निचोड़ के पोंछेंगे। तो ऐसा कम से कम आधे घंटे तक शुरुआत में वो पशुपालक भाई करे। और इसके अलावा घर में पहले से ही गर्मी के ऋतु में गोली जो आती है बुखार की, मेलोक्सिकेम की, पैरासिटामोल की गोली आती है जो

0: हमारे पशु चिकित्सालय में भी उपलब्ध रहती है, या मार्केट से भी पशु पालक अगर खरीदना चाहे तो खरीदे, तो उस हिसाब से वो ला करके पहले ही रख लें। और बड़े पशु हैं तो उसमें दो गोली दे दें, और छोटा पशु अगर है तो उसमें एक गोली पर्याप्त रहती है।
1: हाँ जी डॉक्टर साहब, पहले से अपने ऐसे में ध्यान रखें कि पशु को लू लग जाए तो बुखार की गोली उनको अवश्य देनी चाहिए। जैसे
0: ये बुखार की गोली देने से पशु को तुरंत आराम आएगा, और ये पहुंचने का जो पानी से पहुंचने का क्रम है वो बंद ना करें। वो उसके बाद पहले दिन तो आपको 3 से 4 बार पहुंचना है, 3 3 4 4 घंटे के अंतराल में, और उसके बाद अगले दिन फिर आप इसको सुबह शाम अवश्य करें। 2 3 दिन आप पहुंचने का क्रम जारी रखें, पशु स्वस्थ रहेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी अपने पशुपालन विभाग दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हाँ तो देखो किसान बहन भाइयों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, गर्मियों में पशुओं के स्वास्थ्य का कैसे रखें ध्यान, डॉक्टर राजू मित्तल के द्वारा, और एक जरूरी संदेश। और देखियो किसान बहन भाइयों, अब आपका हो गया है मनोरंजन का समय, तो आपका करवा देते मनोरंजन और सुनवा देते एक लोकगीत। तो सुनिए ये लोकगीत।

हाँ तो देखिए, अभी आपने ये सुना लोकगीत झुक जा रहे हरिया पोदीना, तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अब आपको दे देते हैं जानकारी। जानकारी में आज हम देंगे आपको दुधारू पशुओं को लोग के प्रकोप से कैसे बचाएं। तो देखिए किसान बहन भाइयों, मई और जून के महीने में अत्यधिक गर्म मौसम और गर्म हवाओं का चलना शुरू हो जाता है, और जरा सी असावधानी और बदलते मौसम के कारण पशुधन व उसका उत्पादन में गिरावट होने लगती है। इस भीषण गर्मी से बचाव प्रबंधन में जरा सी भी लापरवाही से पशु को लू लगने से बीमार हो सकता है। तो लू के क्या लक्षण हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, लू से जो प्रभावित पशु को तेज बुखार हो जाता है, इसके अलावा पशु सुस्त होकर के खाना पीना बंद कर देता है। शुरू में पशु की श्वास व नाड़ी तेज हो जाती है और कभी कभी नाक से खून भी बहने लगता है। इसके अलावा समय पर उचित उपचार पर ध्यान नहीं दिया जाए तो पशु की श्वास गति धीरे धीरे कम होने लगती है और पशु चक्कर खा करके बेहोश हो जाता है, और इस दशा में पशु मर भी सकता है। तो इस तरीके से ये लू के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं कि लू से लगने पर पशु को कैसे बचाएं। तो देखिए क्या प्रबंध करें। सबसे पहले है सुरक्षित पशु आवाज। तो देखिए, पक्के निर्मित पशु आवास की छत पर सूखी घास या कड़वी रख देनी चाहिए, जिससे छत के गर्म होने से बचाया जा सके। दूसरा, पशु आवास ना हो तो पशुओं को घनी छाया वाले पेड़ों के नीचे बांधना चाहिए। पशु आवास में गर्म हवाओं को रोकने के लिए लकड़ी के फंटे या बोरी के टाट लगानी चाहिए। इसके अलावा पंखे कूलर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रात्रि में पशुओं को खुले स्थान पर बांधना चाहिए। अब बात करते हैं समुचित आहार की व्यवस्था की। तो देखिए, गर्मियों के मौसम में पशुओं को हरा चारा अधिक मात्रा में खिलाना चाहिए। इससे दोहरे लाभ हैं। एक तो पशु हरे चारे को अधिक चाव से खाता है, और दूसरा, हरे चारे में 70-90% तक पानी की मात्रा होती है, जो पशुओं को पानी की कमी से बचाता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में हरे चारे का अभाव रहता है, इसलिए पशुपालक को गर्मी के मौसम में हरे चारे हेतु मार्च अप्रैल में मूंग, मक्का, चावला आदि की बुवाई कर देनी चाहिए, जिससे इस मौसम में पशुओं को हरा चारा आसानी से मिलता रहे। इसके अलावा इस मौसम में पशुओं को भूख कम लगती है और प्यास अधिक लगती है, इसके लिए पशुओं को दिन में 3-4 बार पानी जरूर पिलाना चाहिए और कम से कम 1-2 बार नहलाना चाहिए। पशुओं को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक या आटा मिला करके पिलाना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि पशुओं को लू लगने पर क्या उपचार

प्रचार करें। तो देखिए, पशुओं को प्याज की पौधकर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा प्याज का रस भी पिला सकते हैं। पशुओं को पानी में ग्लूकोज अथवा नमक या शक्कर का घोल भी मिलाकर के पिला सकते हैं। लो लगने पर पशुओं को ठंडे स्थान पर बांधना चाहिए और माथे पर बर्फ और

मिलता रहे। इसके अलावा इस मौसम में पशुओं को भूख कम लगती है और प्यास अधिक लगती है, इसके लिए पशुओं को दिन में 3 से 4 बार पानी जरूर पिलाना चाहिए और कम से कम 1-2 बार नहलाना चाहिए। पशुओं को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक या आटा मिला करके पिलाना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि पशुओं को लू लगने पर क्या उपचार करें, तो देखिए पशुओं को प्याज की पौध का सेवन करना चाहिए, इसके अलावा प्याज का रस भी पिला सकते हैं। पशुओं को पानी में ग्लूकोज अथवा नमक या शक्कर का घोल भी मिला करके पिला सकते हैं। लू लगने पर पशुओं को ठंडे स्थान पर बांधना चाहिए और माथे पर बर्फ़ और ठंडे पानी की पट्टियां भी रखनी चाहिए। इसके अलावा तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम दूध देने वाले पशुओं को लू के प्रकोप से बचाएंगे तो गर्मी में होने वाले दूध की कमी से हम उसको आसानी से बचा सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी दूधारू पशुओं में लू के प्रकोप से कैसे बचाएं। अब आपको दे देते हैं आज के अलवर मंडी के बाजार भाव के बारे में। तो देखिए गेहूं का बाजार भाव रहा 2425 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का भाव रहा 2000 से लेकर के 2300 रुपये प्रति क्विंटल, चने का भाव रहा 5000 से लेकर के 5150 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का भाव रहा 6400 से लेकर के 7000 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरे का भाव रहा 1900 से लेकर के 2100 रुपये प्रति क्विंटल और गंवार का भाव रहा 4500 से लेकर के 5100 रुपये प्रति क्विंटल। और अब आपको दे देते हैं आज के मौसम की जानकारी। तो देखिए आज के मौसम में हम अधिकतम तापमान की बात करें तो देखिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। इसके अलावा आसमान साफ रहने की भी संभावना है। अगर हम कल के मौसम की बात करें तो कल तापमान बढ़ने की संभावना है और मौसम भी साफ रहने की संभावना है। इसके अलावा देखिए इस कार्यक्रम के जो प्रस्तुतकर्ता हैं हमारे नीरज भगत हैं। और देखिए हमारा कार्यक्रम रोज किसान बनवाई सुनते रहें, इसी समय आपको हम इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार की रोज नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। तो किसान बहन भाई हैं हमारा ये कार्यक्रम रोज सुनते रहें। और अब देखिए हमारे किसान बहन भाई हैं वो इस कार्यक्रम को रोज सुनते रहें जिससे हम आपको नई नई जानकारी देते रहें। अब आप देखिए किसान बहन भाइयों हमारी जो घड़ी इस छोटी की घड़ी है वो दे रही है इशारा कि हम आपसे ले इजाज़त। वैसे तो हम बात करते रहे लेकिन हमारा समय अब कार्यक्रम का होने जा रहा है समाप्त, तो लेते इजाज़त। जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

खामोशियाँ, इस फिल्म से सुन रहे थे आप ये गीत, आवाज़ अरिजीत सिंह की। सईद गात्री का गीत था और संगीत जीत गांगुली का।

बत्ती गुल मीटर चालू। इस फिल्म में आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान को। मनोज मुंतशिर का गीत था, संगीत नुसरत फतेह अली खान का।

बदलापुर, इस फिल्म में आपने सुना आतिफ असलम को। प्रिया सरिया का गीत था और संगीत सचिन जिगर का।

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म में आप सुन रहे थे पलक मुछाल को। मनोज मुंतशिर का गीत था और संगीत अमाल मलिक का।

मैरी कॉम। इस फिल्म में आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। संदीप सिंह का गीत था और संगीत शिवम पाठक का।

तमाशा। इस फिल्म में अभी आपने सुना अलका याग्निक और अरिजीत सिंह को। इरशाद कामिल का गीत था और संगीत ए आर रहमान का।

अमाल मलिक और साथियों को आप सुन रहे थे एयरलिफ्ट फिल्म में। कुमार का गीत था और संगीत अमाल मलिक का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत, और इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।

0: अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विद्युत हलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नई युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नाडियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाए।

0: उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई, जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
2: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
3: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू LPG सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
4: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू LPG उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग LPG का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% LPG सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू LPG और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा

0: अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित परागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमरीका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. India and Vietnam agree to enhance trade, investment and technological partnership. Prime Minister Narendra Modi and visiting Vietnamese President Tho Lam announce several measures to keep shared heritage of the two countries alive. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. Swearing-in ceremony of BJP government in West Bengal to be held on Saturday at Brigade Parade Ground in Kolkata. US and Iran reported to be close to an agreement to end conflict and relax movement through Strait of Hormuz. And Indian boxers ensure 27 out of 30 medals at Asian Boxing Under 15 Championships in Tashkent. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
3: Culture.

शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में रफू चक्कर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत पाप और पुण्य फिल्म से मुकेश और कंचन की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपके लिए की अगली प्रस्तुति। ये अगला गीत कोरा कागज फिल्म से हमने लिया है। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। एमजी हशमत रचनाकार हैं और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।
1: रूठे रूठे

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19650, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए, और इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, गुलशन बावरा के शब्द, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

हाथ की सफाई। इस फिल्म से अभी आप गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गुलशन बावरा के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए अब यहीं संपन्न हुआ। आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो साथी पूजा नरानिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

1 मई 1988 को ये स्टार पैदा हुई थी बेंगलोर में। अनुष्का की पैदाइश बेंगलोर की है, लेकिन उनके माता पिता का ताल्लुक गढ़वाल उत्तराखंड से है। उनके पिता आर्मी ऑफिसर हैं और पोस्टिंग की वजह से उन्हें कई स्थानों पर रहना होता है, इसलिए अनुष्का की स्कूली पढ़ाई आर्मी स्कूल में पूरी हुई और आर्ट्स में विशिष्ट विषय के साथ उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ बेंगलोर में। मुंबई तो अनुष्का पहुंची पढ़ाई पूरी करने के बाद, जहां उन्हें निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में साइन किया और वो फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान के साथ।

रब ने बना दी जोड़ी अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म है। और यह भी आपको बताएं दोस्तों कि आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में यशराज फिल्म्स के बैनर के अंतर्गत अनुष्का को 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अनुबंधित किया था और ये वादा उन्होंने निभाया भी। दोस्तों अनुष्का दरअसल फिल्मों में आने की क्रेजी बिल्कुल नहीं थी, वो एक सुपर मॉडल बनना चाहती थी और इसी सिलसिले में फिल्मों में

प्रवेश से पहले अनुष्का रैंप पर उतरी एक बड़ी कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए सन 2007 में। उनका मॉडलिंग का ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन रव ने तो जैसे उनकी जोड़ी खास तौर से फिल्मों के साथ ही बनाई थी, सो अनुष्का बन गई एक्टर।

ये गाना फिल्म बदमाश कंपनी का था, बिल्कुल ठीक पहचाना दोस्तों आपने। सन 2008 में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने जो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके तहत अनुष्का की ये दूसरी रिलीज थी। बदमाश कंपनी में अनुष्का के हीरो थे शाहिद कपूर और ये साल था सन 2010। सिलसिला आगे बढ़ा, सुनहरे पर्दे पर अनुष्का की चमक भी रफ्ता रफ्ता सुनहरी होती जा रही थी। लोगों ने उनके काम को गंभीरता से लिया और फिल्म क्रिटिक ने भी उनके संजीदा और सटीक अभिनय की तारीफों के पुल बांध दिए। रब ने बना दी जोड़ी के लिए सन 2009 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अनुष्का को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकित भी किया गया।

और सन 2010 में ही आई फिल्म बैंड बाजा बारात, जिसमें अनुष्का के नायक बने उस समय के नवोदित अभिनेता रणवीर सिंह। दोस्तों, यहां ये बात काबिले जिक्र है कि निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ अनुष्का शर्मा का 3 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था फिल्म बैंड

बैंड बाजा बारात फिल्म के लिए सन 2011 में अनुष्का शर्मा को नामांकित किया गया फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए और स्टार स्क्रीन अवार्ड के तहत एक बार फिर से बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। पुरस्कार भले ही उन्हें ना मिला हो दोस्तों, लेकिन प्रशंसकों का प्रतिसाद बेहद मिला और चल पड़ी फिल्म बैंड बाजा बारात बड़ी धूमधाम।

पटियाला हाउस के सभी मेंबर्स को लोगों ने पसंद किया और अनुष्का ने एक और कदम आगे बढ़ाया रणवीर सिंह के साथ। फिल्म आपने जरूर देखी होगी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल। काटे

जहां तक अवार्ड्स की बात है तो वैसे अनुष्का के लिए सबसे पहले काम ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको बताना चाहेंगे जब तक है जान फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्का को मिल चुका है।

तो ये गाना आपने सुन लिया। और ये भी याद दिला दें आपको कि 2013 में रिलीज मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म में भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं अनुष्का शर्मा ने।

0: सन 2014 में रिलीज पीके फिल्म में भी अनुष्का शर्मा ने बेहतरीन काम किया और मुख्य जो इसके नायक हैं वो तो हैं आमिर खान।
1: तुझे तक तक तक तकते रहना, तेरी बक बक बक सुनते रहना।

सन 2015 में अनुष्का शर्मा ने NH10 फिल्म में काम किया, जो आप जानते हैं कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और इसको प्रोड्यूस भी अनुष्का शर्मा ने ही किया।

0: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था प्रोड्यूसर और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जिंदगी में रूमानियत बहुत जरूरी है। इंसान वही रूमानी हो सकता है जिसमें एहसास का मादा हो, जिसमें जज्बात हो। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का एक डायलॉग है, बाबू मोशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। देखिए ना, मैं भी यही सोचती हूँ। तुम मेरे जीवन का वही कोना हो जहां मैं जिंदगी को खुलकर रूमानियत के साथ जीना चाहती हूँ। डरकर नहीं, मरकर नहीं।

प्यार में शर्तों का कोई काम नहीं है ना। हमारी सादगी में बसी है रूहानी मोहब्बत। दिखावे की दुनिया से दूर हम सादगी का लिबास ओढ़े बैठे हैं। देखो ना, दिल चाहता है चांदनी रात हो और महबूब का साथ हो, महकती हवा और चांद तारों की छांव हो। तुम मेरे साथ हो ना तो मन मयूर कह उठ रहा है, ये रात कभी खत्म न हो। हाँ, ये रात कभी खत्म न हो।

दिन की भागदौड़ और बेचैनियों को अगर रात का आसरा न हो तो जिंदगी ख्वाब देखने को भी तरस जाती है। ख्वाब के प्याले से होकर नींद जब आंखों में पिघलती है, बिखरी हुई रात आसमां से यूं आहिस्ता आहिस्ता उतरती है। मैं आंखें बंद करती हूं, लगता है मैं किसी खूबसूरत सपने में जी रही हूं। ओह, ये रात बहुत हसीन है, तुम्हारे पास होने से ये सपनों की रात बन गई है जैसे।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मोहब्बत की किताब का यही फायदा है कि इसके अक्षर पढ़ने के लिए उजाले का होना नितांत गैर जरूरी है। देखो ना, तुम्हारा स्पर्श मुझे ऐसी जकड़ लेता है जैसे उदासी भरी दीवारों पर चढ़ती हूँ लताएं। जब मन में प्यार पनपता है तो बाहर का मौसम भी हसीन लगता है। हवाएं प्यार का संगीत घोल रही होती हैं और बादल बूंदों के रूप में अपना प्रेम बरसाने लगता है। और प्यार में तो शाख से गिरे सूखे पत्तों से भी आती है मरमरी धुने। हाँ, मरमरी धुने।

कभी कभी आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे रात के अंधेरे में घुस आते हैं तो आपको सोने नहीं देते, लेकिन प्यार में डूबी मेरी अखियां सिर्फ तुम्हें तलाशती हैं, सारा दिन बेचैन रहती हैं, तुम्हारे कदमों की आहट की तलाश रहती है इन्हें। चांदनी रात में खुशबूदार फूलों का मेरे जोड़े पर गजरा सजाना, आह आज भी रूह में महकता है तुम्हारा वो अंदाज़े मोहब्बत निभाना।

रात की खामोशी में जब तुम मेरे साथ होते हो तो लगता है जैसे खुदा ने मुझे अनमोल पल उपहार में दिए हैं। सिर्फ तुम्हारी इबादत के खाब के साथ तुम्हारे आगोश में हूँ अंतिम पड़ाव जीवन का। ओह, कितनी रूहानी है ये प्रेम की अनुभूति।

0: साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता

0: सकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और $अरबों के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है।